ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई सन 2026 सुबह

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। रविंद्र सिंह ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे। उसके बाद आप सुनेंगे 8:02 पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। गौतम गौड़ आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने 9:02 पर। वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10:02 पर। लिपिका दास आपके साथ रहेंगी।

बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन सकते हैं 11:02 पर रंजन अनेजा के साथ। इसके बाद होगा बिंदास बोल 1:02 पर। आशियाना कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:02 पर। श्वेता शर्मा ये कार्यक्रम लेकर आएंगी। हमारे श्रोता सुन सकते हैं रेडियो डॉक्टर 3:00। शैली भंशांजलि ये कार्यक्रम आपके बीच लेकर आएंगी। और 4:02 पर आप सुनेंगे अल्फा जैन। इसके बाद आप सुनेंगे सिटी लाइट कार्यक्रम 5:02 पर। मैसेज मसाला मिक्स आप सुन सकते हैं 6:02 पर वीर दमन सिंह के साथ।

श्रोता सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम 7 बजे। देवाशी रावत ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आप सुनेंगे म्यूजिक मस्ती 8:02 पर।

विनीता बेदी लेकर आएंगी 9:02 पर कार्यक्रम आपकी याद आती रही, और इसके बाद आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक 10:02 पर। रंग की महफिल होगा 11:02 पर। विनीता बेदी के साथ आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं।

तो साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 6 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

और अब पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को भी रवाना करेंगे। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज एनडीए की बैठक होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी किया। 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की। उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत की बड़ी उपलब्धि, 1 अरब से ज्यादा लोग कवरेज के दायरे में आए। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अब तक 26 लाख से अधिक गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए गए। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच फिर तनाव बढ़ा। अमेरिका ने ईरान के नए ठिकानों को निशाना बनाया, वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। और अब खेल समाचार। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। और अंत में कार्डिफ में दूसरे 1 दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर। श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: तो दोस्तों, सुबह का कार्यक्रम सुनने के लिए आप हमेशा बेताब रहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी घड़ियां भी होती हैं, कुछ ऐसे पल भी होते हैं जिनसे हमें आपको रूबरू कराना होता है। और ये वक्त जो है सुबह सुबह की कुछ ऐसी बातों को लेकर होता है जिससे दिन जो है हमारा और खुशनुमा बन जाए, ऐसी ही कुछ उम्मीद हम आपसे करते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो लुत्फ उठाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि गीत पुराने भी होंगे और कुछ गीत नए भी होंगे, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो हमारे और आपके दिल को छूती होंगी। लेकिन उससे पहले आपको सुनना है एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, जो एक वचन के बारे में आपको बताएगा। तो चलिए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन।

0: प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
1: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव, आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु ने वैसे तो कई अद्भुत कार्यों को भीड़ के सामने करके ये साबित किया कि लोग जिसके आने का इंतजार बरसों से कर रहे थे वही मसीहा प्रभु यीशु है। दोस्तों, प्रभु यीशु द्वारा किए गए कुछ खास आश्चर्य कर्मों में से एक था चार दिन के मरे लाजर को ये कहकर कि हे लाजर बाहर निकला, और लाजर जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल आता है। तबीता नाम की लड़की को भी प्रभु ने ये कहकर जिला दिया कि तलीता कूमी, जिसका अर्थ होता है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और इतना सुनकर उस लड़की के शरीर में जान आ जाती है और वो उठकर चलने फिरने लगती है। और इसके अलावा प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली को लेकर स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद दिया, और उन 5 रोटी और 2 मछली को चेलों को वो देता रहा, और उससे 5,000 पुरुषों ने अपना पेट भरा और 12 टोकरी भोजन बच भी गया।

जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार एक बार प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे, तभी आंधी और तूफान आया, जिससे वो नाव जिसमें प्रभु सफर कर रहे थे डूबने लगी। ये देखकर प्रभु के शिष्य डर जाते हैं। उनको डरा देख प्रभु ने आंधी और तूफान को डांटा और आंधी तूफान तुरंत शांत हो गया। दोस्तों, ये आश्चर्य क्रम देखकर प्रभु के शिष्य कहने लगते हैं कि हमारे प्रभु की आज्ञा तो आंधी तूफान भी मानते हैं, जीवन और मृत्यु भी प्रभु के वश में है। अपने शिष्यों की बातों को सुनकर प्रभु ने उनसे कहा, परमेश्वर के पुत्र को ये सब अधिकार दिया गया है, इसीलिए ये सब आश्चर्य क्रम होते हुए तुम सब देखने पाते हो।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ प्रभु लोगों के बीच आश्रय क्रम करते थे। उनके द्वारा किए जा रहे इन अद्भुत कामों और प्रभु की बातों की चर्चा हर तरफ होने लगी। हजारों की भीड़ प्रभु के पीछे पीछे चलने लगी। प्रभु के मात्र कपड़ों को छू लेने से लोगों को उनकी बीमारियों से शिफा मिल जाती थी। एक ऐसी ही महिला का जिक्र बाइबल में किया गया है जिसे कई सालों से खून बहने का रोग था और वो चुपके से प्रभु के कपड़ों को छू लेती है और तुरंत उसका बरसों पुराना रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, प्रभु के द्वारा किए जा रहे इन अद्भुत कार्यों को देखकर उस समय के धर्म गुरुओं को अपनी चिंता सताने लगी और वे सब परमेश्वर की योजना के अनुसार ढूंढने लगे प्रभु को पकड़ने का मौका। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे मैसेज या फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारे नंबर हैं 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। आप इन नंबरों पर बेहिचक फोन या मैसेज कर सकते हैं।

तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: हाँ जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। आज हार्दिक अभिनंदन करते हैं भाई, सुबह की सुनहरी किरणों के साथ आप सभी का बहुत बहुत बहुत अभिनंदन। आपका पसंदीदा कार्यक्रम है सुप्रभात और मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त रविंद्र सिंह, है ना। तो चलिए भाई साहब, आज के विचार हम समझ लेते हैं। कहते हैं कि भाई हर सुबह आती है कुछ खास लेकर, ऐसे विचार जो सिर्फ आपके दिन को नहीं बल्कि आपकी सोच को भी खूबसूरत बना देते हैं। तो भैया दोस्तों, हर सुबह अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। आज का दिन भी बिल्कुल नया है, ना ये कल जैसा है, ना ये बीते हुए किसी पल की परछाई है। ये एक नया मौका भाई साहब, नया अवसर है, नई उम्मीद है, और सबसे बड़ी बात ये आपके जीवन को एक नई दिशा देने का एक सुनहरा मौका है, है ना। और कहते ना कि सूरज हर दिन इसलिए नहीं निकलता कि दुनिया को रोशनी मिले, बल्कि इसलिए निकलता है ताकि हर इंसान अपने सपनों को फिर से रोशन कर सके। और देखिए ना, खिड़की खोलिए, है ना, पर्दा हटाइए, मुस्कुराइए और बाहर देखिए सामने कौन है। ये प्यारी सी धुन कुछ कह रही है कि सामने कोई है, नजरिया बदलो सब बदलेगा। बनाओ इस खूबसूरत को अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ, जाओ शीशे के सामने और मुस्कुराओ, क्योंकि एक खूबसूरत इंसान, प्रकृति के खूबसूरत देन आपके सामने है।

तो जब आपने खिड़की खोली तो आपको ये एहसास तो हुआ ही होगा कि सामने कौन खड़ा है। बस शीशे के सामने जाकर मुस्कुराना है और कहना है खूबसूरत प्रकृति की खूबसूरत दिन जो है शीशे के सामने है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सुबह सुबह मुस्कुरा रहा है और आपकी मुस्कुराहट हमें भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है भाई साहब। लेकिन अगर कुछ इधर उधर की बातें सोच रहे हैं या आप थोड़ा सा भी उदास हैं तो भाई हम भी उदास होंगे। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए अपने आसपास देखिए तो, सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों का मधुर संगीत, खिलते हुए फूल और आसमान में फैलती हुई सूरज की रोशनी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि प्रकृति कभी यह नहीं सोचती कि कल क्या हुआ था? नदी हर सुबह उसी उत्साह के साथ बहती है भाई साहब, फूल हर सुबह उसी मुस्कान के साथ खिलते हैं, सूरज हर सुबह उसी ऊर्जा के साथ निकलता है। याद रखो, ये प्रकृति हमें हर दिन यही सिखाती है कि नई शुरुआत करने के लिए किसी विशेष दिन का इंतजार मत कीजिए, है ना। दो बातें, दो पल कि ये जिंदगी जो है ना, इसमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि दो पल की जिंदगी है, इसे जीने के लिए दो उसूल बना लो भाई, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। सुबह सुबह की ये सुबह एक संदेशा लाती है, ऐसा ही कुछ ये गीत कह रहा है ना। धीमे धीमे, हौले हौले, आहिस्ते आहिस्ते दिल में उतरेगा ये गीत, क्योंकि इस सुबह का जो संदेश है ना वो यही गीत बताता है, और उस पर ओस या बारिश की बूंदें हो तो बस मजा ही आ जाता है। सुनिए जरा।

तो भाई भीगी सी है, लेकिन हम भागे भागे से रहते हैं, तो बस भीगी और भागी इसलिए बन जाता है ना। मुस्कुराइए ना, मेरी कोशिश ये है कि भाई आप मुस्कुराते रहिए। देखिए ना, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई खुद पर भरोसा करो तो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हो जाता है, लेकिन दूसरों के भरोसे पर चलोगे तो खुद धोखा खा जाते हैं ऐसे लोग, है ना। खुद से ज़्यादा दूसरे को ज़्यादा समझदार काहे को समझते हो भाई? जब तक तुम खुद समझदार नहीं होगे तो तुम्हें जीवन में भटकते ही रहोगे अपने, है ना। ऐसी ऐसी बातें लिख दी जाती हैं जो बड़े काम की होती हैं। वैसे ये जिंदगी के अनुभव हैं जो हम अपने शब्दों के जरिए बयां कर सकते हैं, है ना। भाषा भी क्या चीज होती है बढ़िया, जो हमारे दिल के एहसास आपके दिल तक पहुंचाती है। इसीलिए तो हमारी बातें उतरती हैं आपके दिल में, क्योंकि यहां भी बातें होती हैं दिल से दिल तक। और सोच रहे होंगे हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। दरअसल हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हर दिन नई शुरुआत करने की ताकत रखो। और ये ताकत कौन देता है? ये प्रकृति देती है, ये हमारे अंदर का आत्मविश्वास देता है इसीलिए। लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच नहीं होती ऐसी। हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई अगले सोमवार से शुरुआत करूंगा, अगले महीने से बदलूंगा, नए साल से अच्छे रेजोल्यूशन के साथ अच्छी आदतें अपनाऊंगा। लेकिन भाई साहब, जीवन की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हैं? नई शुरुआत करने के लिए कैलेंडर नहीं, हौसला बदलना पड़ता है। आज अभी यही पल आपकी नई शुरुआत का पहला कदम बन जाता है ना। बेसब्रियां नहीं होनी चाहिए, और आप ये सोचें कि इन बेसब्रियों के तहत आगे बढ़े, तो भाई पेशेंस रखिए। सब होता है, पहला कदम छोटा ही होता है, लेकिन इन छोटे छोटे कदमों से हम कई किलोमीटर की यात्रा तय कर लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से, एफर्ट्स से आप जिंदगी

बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं। एक प्लान तो बताइए और बेसब्रियां छोड़िए। बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी हुए हैं जो हमें सीख दे गए, चलते रहो, एक ना एक दिन तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे भाई। फिर लोग कहेंगे

कोई बात नहीं, हर इंसान में ऐसा कुछ तो होता ही है जब हम बेचैन होते हैं और हमारे अंदर एक बेसब्री होती है कुछ कर गुजरने की, कुछ पाने की या किसी को पाने की। पाना क्या है? पाना है वो लम्हा जो हमारा अपना हो, पाने हैं वो एहसास जो हमारे अपने हों, पाने हैं वो लोग जो हमें अपनों जैसे लगे हैं, है ना। लेकिन उसके लिए आपको किसी को अपना बनाना पड़ता है, और वो किसी को में सबसे पहली चीज है वो है आप खुद। तो जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक बाकियों को कैसे जानोगे भाई, है ना। जिंदगी है, एक छोटा सा सवाल पूछते हैं हम आपसे। अगर आज सुबह भगवान आपके सामने आकर कहे कि मैं तुम्हें एक बिल्कुल नया दिन दे रहा हूं, तो क्या आप उसे शिकायतों से भरेंगे या मुस्कुराहटों से? सोचिए सोचिए सोचिए भाई साहब। हर सुबह हमें 24 घंटे का एक नया उपहार मिलता है, इस उपहार को कैसे जीना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। इसलिए सबसे पहली अगर कोई बात हमारे सामने आती है तो वो है अच्छा महसूस करना।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: भाई साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, सुप्रभात। और हमने आज का विषय इसीलिए चुना है कि हर दिन नई शुरुआत करने की जो ताकत है वो आपको कैसे मिलती है और कैसे लाओगे और कैसे अपने दिन को बेहतर बनाओगे बीते हुए कल से, है ना। अब देखिए सोच सोच की बात है कि हम किस तरह से ज़िंदगी को लेते हैं। गंभीरता से लेंगे तो गंभीर होंगे और इसको हंसते हंसते खेलते खेलते एंजॉय करते हुए चलते हैं तो फिर कहने क्या, ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसे कुछ लोगों की भी अभी हम बात करेंगे। होता है ना कभी कभी जीवन बदलने के लिए बहुत बड़े फैसलों की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ नहीं, सुबह उठिए, पेरेंट्स को मुस्कुराकर प्रणाम कीजिए, घर की बालकनी में 5 मिनट ताज़ी हवा लीजिए, एक गिलास पानी पीजिए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, खुद से कहिए आज मैं अपने कल से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। बस इतनी सी बातें, इतनी सी बातें धीरे धीरे आपके पूरे कैरेक्टर को, पूरे व्यक्तित्व को बदल देते हैं, है ना। और कहते ना कि नजर बदलो नजरिया बदल जाएगा। हम एक उम्मीद के साथ जीते हैं, ऐसी उम्मीद के साथ कुछ लोग जीते हैं, जैसे ये भाई साहब जिनका गीत हम आपको बजाने जा रहे हैं, तो ये थोड़ा मुस्कुराने पे भी मजबूर करेगा और ये इस बात का भी एहसास कराएगा कि इस समय कैसा भी हो एक उम्मीद आंखों में रहनी चाहिए, क्योंकि यही तो जिंदगी में आगे बढ़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार है। भाई साहब चले सुनते हैं और एनर्जेटिक हो जाते हैं थोड़ा सा।

हम भी सही बोलता भाई, हम भी सही बोलता, लेकिन सुनने का ना। और कहते हैं कि हमारा लाइन वहां से शुरू होता है जहां से हम खड़ा हो जाते हैं। तो आपको भी वही करना, आपको लाइन अपना अपनी तरफ से शुरू करना है ना भाई साहब। आज मैं बातें तो बहुत कर चुका हूं, है ना। अब हम कुछ संकल्प ले लेते हैं। संकल्प बड़ा टफ शब्द है, संकल्प, है ना। कुछ डिसाइड करते हैं जीवन में कि कैसे शुरू किया जाए, क्या क्या बातें मैं सोचनी चाहिए। तो भाई तीन चीजें हम आपको बता देते हैं। पहली बात, आपको आज पूरे दिन मुस्कुराना है। जैसे कहते हैं ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो वो ऑल इज वेल कहना है, मुस्कुराना है ना। क्योंकि कहते हैं कि भाई मुस्कान वो भाषा है जिसे हर इंसान समझता है। दूसरा, दूसरी चीज डिसाइड करिए कि आज कम से कम एक व्यक्ति की तो आपको दिल से तारीफ करनी है, प्रशंसा करनी है आपको, है ना। चाहे किसी के काम की, किसी की व्यवहार की, या आप लगते बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही बोल दीजिएगा ना। सामने वाला खुश होगा तो आप भी खुश होंगे, ठीक है। और खुशियां बांटने से कम नहीं होती भाई साहब, बढ़ती हैं। और तीसरा, आज रात सोने से पहले एक डायरी में सिर्फ तीन अच्छी बातें लिखिए जो आज आपके साथ हुई। सच बताऊं, कुछ ही दिनों में आपकी सोच बड़ी बेटर हो जाएगी। आज तुसी भी बेटर बेटर लगने लगोगे और सब कुछ शुभ मंगल लगने लगेगा। एक बात और आपको बता दें कि इतने रिश्ते हैं, इतने झमेले हैं, इतनी बातें हैं कि हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। उलझ ही नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी भाई साहब ऐसे ही हमें उलझाती है। और हमें जीवन की डोर को सुलझाते हुए आगे बढ़ना। देखिए कितना प्यारा सा गीत है, बप्पिता की आवाज में ऐसे कह रहे हैं। बजाइए बजाइए बजाइए जोर से, ताकि हमारा आज का दिन थोड़ा शुभ हो जाए, मंगल हो जाए। लेकिन हर चीज से सावधान भी रहना है ना। सुनिए जरा।

हम तो भैया यही कहते हैं, देखिए यही तो बात बोल रहा था मैं, कुशल मंगल रहे, कुशल मंगल रहे, कुशल मंगल रहे। लेकिन भाई साहब आप लोग अगर अपने नाम ही कुशल और मंगल रख लेंगे तो ऐसे थोड़ी ना कुछ होना है, अंदर से सोचना भी पड़ेगा आपको कि भाई आपको कुशल होना भी है, लेकिन उससे पहले मुस्कुराना है, एक प्यारा सा विचार लाना है और उसके बाद खुद से कहना ऑल इज वेल, सब कुछ चलता है भाई। कल का झटका आज का है लें भाई, आज हमको नए दिन की शुरुआत नए तरीके से नई मुस्कान के साथ नए लोगों के साथ करनी है, क्योंकि जीवन चलने का नाम, तभी तो हम पहुंचेंगे बुलंदियों पर भाई साहब। तो कार्यक्रम शुरुआत था और सुबह सुबह नई ऊर्जा के साथ कैसे खुद को आगे बढ़ाना है, हर दिन नई शुरुआत करने के लिए आपको ऊर्जावान रहना पड़ेगा भाई साहब। इतनी सारी बातें इतनी देर तक हमने आपको बता दी, 60 मिनट में 60 बातें है ना, अब ठाठ से रहना है ना आपको, तो इन सारी बातों का आप मिक्सचर बना के घोट लीजिए दिमाग में, अपनी ड्राइविंग सीट पे आइए, दूसरे क्या कह गए इससे क्या फर्क पड़ता भाई साहब। अगर वाकई आप बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं तो रविंद्र सिंह की सुप्रभात में सुनी हुई बातें याद रखिए और सुनिए। अगर आप गौरव अर्जित करना चाहते हैं ना तो गौर से गौरव को सुन लेना, वरना समझ रहे ना, बहुत सारी जानकारियां लेकर आ रहे हैं हमसे, गौतम है वो, मैं गौरव गौरव कर रहा हूँ, अरे गौतम मेरा गौरव है भाई, आप चिंता मत करिए। तो आने वाले हैं गौतम है ना, और मुझे वो गोविंदा बोलते हैं, तो हम गौतम गोविंदा की जोड़ी बढ़िया है। चलिए आप बुलंदियों पर पहुंचे हमारी ये कामना है, इस प्रोग्राम में इतनी सी बात हमें कहनी थी और इतनी सी बात कह के अब हम जा रहे हैं, क्योंकि फिर एक घंटे बाद आपसे मुलाकात होगी, तब तक गौतम स्टूडियो में आ चुके हैं प्यारी प्यारी बढ़िया बढ़िया जानकारियां लेकर। बाय बाय, सुनिए ये गीत।

नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को भी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशन के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज एनडीए की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी किया है और 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की। उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत की बड़ी उपलब्धि। 1 अरब से ज्यादा लोग कवरेज के दायरे में आए और केरलम में आज से रामायण माह शुरू हो रहा है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अब तक 26 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी और अगले 5 वर्षों में नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर। श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

वेल मेहरबानी नहीं, तुम्हारा प्यार मांगा है, तुमको है पसंद, इसी तो इसीलिए तो यार मांगा है। वेल ये प्यार इसी तरीके से परवान चढ़ता रहेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल, दिस इज योर होस्ट संदू आरजे गौतम आपकी खिदमत में हाजिर है। और कहते हैं कि हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां ये नया दिन के खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए, जैसे हम आपके दीवाने हैं। हर सुबह नई रोशनी नया ख्वाब लाती है और सपनों को पूरा करने की एक नई राह दिखाती है। फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, चमकते सूरज की तरह दमकते रहो। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर 102.6 एफएम। और कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हो, ये सोचना कि अकेले ही काफी हो।

वैसे तो देखिए हर दिन खास होता है, हर दिन एक नया एहसास लेकर आता है, लेकिन आज का दिन क्यों है खास मैं आपको बता दूं जरा। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस आज है, यानी कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं होता बल्कि यह हर इंसान के सम्मान, अधिकार और समानता की बुनियाद है। और इसी सोच को दुनिया भर में मजबूत करने के लिए हर साल 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। यह दिन 1998 में अपनाए गए रोम स्टेट की वर्षगांठ की याद दिलाता है, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई। तो आइए न्याय, मानव अधिकार और शांति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। एंड कहा जाता है कि किसी के साथ की आवश्यकता नहीं मुझे,

खुद में संपन्न हूं, मेरा खुद पर विश्वास है। ये शुरुआती दौर में मैंने आपसे कहा था ना कि आप अकेले ही काफी हो, और मैं रहता हूं शांत स्वभाव में क्योंकि मुझे पता है मेरा क्रोध विनाश है। पेशेंस, शांति के साथ स्वभाव, ऐसा दिन जाएगा आपका इतना बढ़िया जाएगा जब आप सबसे मुस्कुरा कर मिलेंगे। एंड यही कहूंगा कि खड़े हो जाओ और नई शुरुआत करो। सोने के लिए जिंदगी बड़ी है, एक दिन रात करो। लोगों से बहुत कर ली, लेकिन अब खुद से बात करो। मार के थापी ऊपर दोनों हाथ करो और बोल दो भगवान से हम गोड़े नहीं टेकेंगे, मेहनत की आग में हाथों को सेके। 102.6 FM, दिल से दिल तक, मेरे दिल से आपके दिल तक।

कल मूड तो भयंकर हो ही जाएगा जब ऐसे एनर्जेटिक गाने हम आपको सुनाएंगे, आपको थिरकने पे मजबूर कर देंगे। वैसे मूड और भी बिंदास हो जाता है जब आपको पता होता है फ्राइडे है, सैटरडे संडे यानी कि छुट्टी, एंजॉय करूंगा, सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, पाव भाजी खाऊंगा और कहो ना प्यारे देखूंगा। वेल, मुझे वहां से पढ़िए जहां पर मैं खामोश हूं। ऐसा मैं पता है किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि आज है 17th of July, वर्ल्ड इमोजी डे, यानी कि आपको बना देते हैं मनमोजी। ये है प्यारे प्यारे इमोजी, है ना, लवी डवी जो आप कहीं ना कहीं चैट में यूज करते हैं बिना एक शब्द लिखे भी। ये छोटे छोटे इमोजी हमारी भावनाओं को बयां कर देते हैं। और आज 17th of July विश्व इमोजी दिवस भी है, एक ऐसा दिन जो डिजिटल दुनिया की इस खास भाषा का जश्न मनाने के लिए भी मनाया जाता है।

जज्बात है जनाब, कहीं से भी पढ़े जा सकते हैं। और आपको भी इमोजी काफ़ी आते होंगे ना, या आप भी काफ़ी सारे लोगों को भेजते होंगे। एंड इमोजी सिर्फ चैट को रंगीन नहीं बनाते, बल्कि मुस्कान, प्यार और धन्यवाद और अपनापन भी एक क्लिक में पहुंचा देते हैं। आपको ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन याद रखिए, असली भावनाओं की जगह कोई इमोजी नहीं ले सकता। वो तो फिर आपके खुद के जज्बात हैं, और उन जज्बातों को बयां करना सीखिए। मतलब ग्रेटिट्यूड लाइफ में होना ही चाहिए। गुड मॉर्निंग डेली NCR सुन रहे हैं आप, और जाग जाइए, फ्राइडे है, कल ऑफ होगा, आज नहीं, आज तो काम करना ही पड़ेगा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
6: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
7: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
8: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
7: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
8: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
11: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
12: सुन रहे हैं FM रेनबो और जीवन में रंग भरना काफी जरूरी है। अर्ज किया मैंने, लिखा है कि किसी के चुभने वाले बोल, फीफा में गोल और बॉस का कॉल, ये दुनिया हिला देता है ना। दुनिया बेशक से कितनी हो गोल, लेकिन अंतर मन में नहीं होना चाहिए कोई झोल। मैं तो कह रहा हूं वीकेंड आ गया है तो बजने दो ढोल। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, सुन रहे हैं आप 102.67 दिल से दिल तक। और देखिए, एक नई सुबह, एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नई सोच, एक बार फिर आसमान छूने की कोशिश, कामयाब होने की चाहत, सुबह की पहली किरण के साथ।

खाने में पनीर रोल, और आप भी करते रहते होंगे दिन भर रील को स्क्रोल, है ना। क्या खाने पीने की बातें कर रहा हूँ, सुबह सुबह हेल्दी हेल्दी खाओ यार, हेल्दी। एंड वेल, स्क्रोलिंग से याद आया, ट्रोलिंग वो आपको याद होगी, जहां पर वो डायलॉग याद होगा, यहाँ ईमानदारी चलत बा बाबू, नहीं तो घर जाके सुत्ती। वो रील आपने भी देखी होगी। अरे बाबू, इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ बिकॉज आज है रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला जी का जन्मदिवस, यानी कि भारतीय फिल्म अभिनेता ये हैं, और उन्हें रवि किशन शुक्ला के नाम से भी जाना पहचाना जाता है, किंतु उनकी मुख्य पहचान रवि किशन नाम से ही है। रवि किशन हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में सक्रिय हैं, और 2019 के लोकसभा चुनावों से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। बस यही कहना चाहूँगा कि बाबू हैप्पी बर्थडे टू यू, और आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपके किसी मित्र का, किसी रिश्तेदार का, या अंबाले वाले फूफा जी या बुआ जी का भी जन्मदिवस है ना, तो बता दीजिए कमेंट करके, यानी कि मैसेज करके, और आप तो विश कर ही दीजिए, बिकॉज वो भी तो कहीं ना कहीं आपको हर रोज विश कर रहे हैं ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ये सारे मैसेज ग्रुप में आते होंगे। वेल, हवाओं के रुख को मोड़ दूंगा और सारी परेशानियों को पीछे छोड़ दूंगा। हवाओं ने क्या कहा है, दिल्ली की हवा है, कभी ठंडी तो कभी गर्म, ऐसे ही जीवन में भी है।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना।

मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। ये ऐसी चीज है जो हर किसी के हिस्से में नहीं आती, लेकिन अगर हमारे और आपके हिस्से में आई है तो कहूंगा कि साथी

वेल गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सुन रहे हैं आप 102.6 एफएम दिल से दिल तक। और कहा जाता है ना कि लड़कियां एक नारी सौ पे भारी, और निभा रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने देश के लिए भी। जी हाँ, जिनके जैसा नहीं है कोई दूजा, आज उनका जन्मदिवस है, जिनका नाम है पूजा। पूजा सिहाग भारतीय महिला फ्रीस्टाइल पहलवान है। उन्होंने बर्मिंगम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। और पूजा सिहाग ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती में के 76 किलोग्राम वर्ग में ये पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की नाओमी के खिलाफ जीत हासिल की। हरियाणा से आने वाली पूजा सिहाग का जन्म हांसी शहर में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पहलवान बनने का सपना उनके पिता ने ही देखा था। क्या बात है, मुश्किल रास्तों पर भी आसान ये सफर लगता है, और माँ बाप की दुआओं का असर। दुआएं अपना काम करती है, बस आप अपना काम कीजिए, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है।

अमा आपका अलार्म भी काफी करता होगा हर रोज सुबह सुबह, कोशिश करता होगा कि मालिक एक बार तो जाग जाओ, थोड़ा तो सपोर्ट करो। वेल, सूरज हर रोज नया सबक सिखाता है, अंधेरों के बाद उजाला जरूर आता है, हौसला रखिए अपने इरादों पर, सपनों का सफर एक दिन रंग जरूर लाता है। लेकिन आप में अगर वो सनक है ना, तो लोगों को वो भनक नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर किसी काम को करने का बीड़ा आपने उठाया है तो फिर देवी शक्तियां भी आपकी सहायता के लिए आएंगी। लेकिन आपको साहसी बनना पड़ेगा, आपको दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा, और उस सफर में जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मर्फी लॉ में बोला गया था, इंटरस्टेलर अगर आपने देखी हो तो। वेल क्या बात है, मतलब आप भी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की मूवीज के फैन होंगे, लेकिन लेकिन लेकिन लाइफ में भी कहीं ना आपको अपना एक्शन हीरो बनना पड़ता है। वो सना किस लिए जरूरी है, बिकॉज अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, कुछ करना चाहते हैं, तो उससे पहले फिर सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, क्या अपना है, क्या पराया, क्या पाया, क्या खोया, सब कुछ। और एक दिन उस कहानी में आपका जिक्र जरूर होगा, जिस कहानी के जिक्र के साथ आज आपकी फिक्र बरकरार है। टेंशन छोड़ो और खुशी से नाता जोड़ो। गुड मॉर्निंग दिल्ली से।

दुनिया गोल है और क्रिकेट में नो बॉल है, लेकिन जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर विराट कोहली खड़े होते हैं। मतलब क्या कहें, कोहली यार, मतलब एक ही दिल कितनी बार जीतोगे। इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हरा दिया और कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में कई रिकॉर्ड बने और दिलचस्प घटनाएं भी देखने को मिली। विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना 50+ स्कोर बनाकर वेस्टइंडीज के सर विवियन रिचर्ड्स की बराबरी कर लिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 8,000 रन की साझेदारी का आंकड़ा भी पार कर लिया है। और दूसरी ओर श्रेयस अय्यर का एक शॉट मैदान पर बैठे मतलब लोगों को काफ़ी पसंद आया। और बस यही है कि विराट कोहली, आप इसी तरीके से करवाते रहें क्रिकेट में बोलबाला, आपका इसी तरीके से बरकरार रहे और मतलब फिटनेस फ्रीक है। कहीं ना कहीं अगर बात करें ना, मतलब दिल्ली का लड़का और इतने साल हो गए छोले भटूरे से काफी दूर, आप भी दूर रहिए।

0: ओ मैं तो चले आ जी हाँ, जाने का समय आ गया है, लेकिन आपका दिल जिनके आने से करता है ट्रिंग ट्रिंग। आ गए हैं स्टूडियो में रविंद्र सिंह और सिंह इज किंग। पाजी तुसी ग्रेट हो, और पाजी आ गए तो मुझे जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेके आए, लेकिन फिर मुलाकात होगी दिल के तराने गाने नए पुराने में। साइन आउट कर रहा हूँ अभी।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

और अब आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशन के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित किया। उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया है। केरलम में आज से रामायण माह शुरू हो रहा है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अब तक 26 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया गया। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए की स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और अब बात खेल जगत से। हॉकी इंडिया देशभर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। और अंत में कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर। श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, हार्दिक अभिनंदन है आपका कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। मैं हूँ आपका दोस्त और ये इस कार्यक्रम का होस्ट रविंद्र सिंह। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि हमारी और आपकी हो रही है मुलाकात। तो फिर चलते हैं, क्योंकि हमें आपसे और आपको हमसे थोड़ी थोड़ी आस, तो इसी आस के सहारे, इसी प्यार के सहारे, इन्हीं एहसासों के सहारे शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। भाई बात मुलाकातों के दौर का है। इस मुलाकात में खूबसूरत खुशनुमा सी सुबह को हम आत्मसात कर

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

तो ये मुलाकात एक बहाना है और हमें पूरे पूरे पूरे पूरे अभी भी 52 मिनट तक एक दूसरे का साथ निभाना है भाई साहब। और ये मौसम जो है ना, बस यही साथ नहीं देता, कभी कभी हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता और ये मौसम हल्का सा बदल जाता है। इसीलिए मौसम के मिजाज पर मत जाइए, अपना मिजाज सही रखिए, समझे भाई साहब। क्या कहता है दिल्ली का मौसम, अपडेट दे देते हैं फटाफट भाई साहब। तो आज यानी 17 जुलाई 2026 को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। दिन के समय बादल छाए रहने का अनुमान और दोपहर या शाम के समय कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले की उम्मीद है। और उम्मीद पे तो भाई साहब दुनिया कायम है, बस आप रहिए तैयार, क्योंकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 दिन थोड़ा सा गर्मी आपको सता सकती है, लेकिन आप टेंशन मत लें, उमस थोड़ा होती है और हम तो सब झेल देते हैं, मिजाज की तरह हम भी बदल जाते हैं, बदलिए है। लेकिन हल्की सी भी बारिश होती है तो बड़ा खूबसूरत मौसम होता है और पूरी धरा जो है वो प्यारी सी लगती है, खूबसूरत लगती है। और दिल्ली वाओ प्यारी, ये गाना कहता है कि भाई अगर बारिश होती है और मौसम में जो खुशनुमा माहौल बनता है उसके बाद हम यही गीत गाते हैं कि तुम कितने खूबसूरत हो।

तो भाई साहब, खूबसूरती तो हमारी नज़र में होती है, हम जिस चीज़ को देखते हैं खूबसूरत हो जाती है। और दिल्ली अगर खूबसूरत बन जाती है तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि सुविधाएं तो बहुत हैं, रास्ते भी बेहतर हैं, लेकिन हमें जब नियमों का उल्लंघन ठीक से नहीं करना होता, बस तभी ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस वाले भाई जो है ना, वो हमेशा आपको समझाते रहते हैं कि भाई ध्यान से चलिए, नियमों का पालन करिए, लेकिन लेकिन ट्रैफिक ट्रैफिक बढ़ रहा है धीरे धीरे, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ से हमें गुजरना होता। तो चलिए, हम ट्रैफिक अपडेट तक आपको लाना चाहते थे, इसलिए हम इधर उधर की बात करते हुए सीधे आपको बता देते हैं कि भाई आज क्या रहने वाला है ट्रैफिक में। लेकिन हाँ, जहाँ भी जाएँ, जहाँ से होकर गुजरें, आप बस नियम ध्यान रखें कि इस नियम का उल्लंघन आपको नहीं करना है। तो फिलहाल 3 दिन के लिए, यानी कि 14 से 17 जुलाई तक जो दिल्ली में भारत टैक्स का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसकी वजह से कुछ रास्तों पर रुकने के लिए आपको सख्त मना किया कि उन रास्तों पर आपको रुकना नहीं है, और ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसलिए उसको तो आपको अपडेट रहना है। दिल्ली पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है, उसके जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें जो भारत टैक्स 2026 के मद्देनज़र ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है, तो सबको पता होने जरूरी है। हालांकि 2 दिन से जो लोग जा रहे होंगे उसका पालन ज़रूर कर रहे होंगे। सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक मथुरा रोड, भैरव मार्ग और जो आसपास के इलाके हैं, उसमें किसी भी वाहन को रुकने या पार करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। यानी

आपको आज और थोड़ा सा परेशानी होगी, और अगर आप गाहे बगाहे ना चाहते हुए भी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो भाई साहब ध्यान रखिए, आपके जो वाहन है ना, अगर आपने पार कर दिया तो टो उसको करके भैरव मंदिर के सामने स्थित ट्रैफिक पिट में ले जाया जाएगा, और वहां पर जो मालिक हैं, जो भी आपकी वाहन है, उसके फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलें, वहां पर अपने वाहन को पार्क ना करें। और ट्रैफिक पुलिस ने यह भी एडवाइस दी है कि भाई मथुरा रोड और जो भैरव मार्ग उससे बचें, आप और वैकल्पिक मार्ग जो है जैसे रिंग रोड का आप उपयोग कर सकते हैं। और ये भी सलाह दी गई है कि जो सार्वजनिक परिवहन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन, ISBT और हवाई अड्डे पर जो जाने वाले लोग हैं, वहाँ अगर आपको जाना है तो भाई समय लेकर निकलिए, क्योंकि अगर समय लेकर नहीं निकलेंगे तो हो सकता आप फंस जाए, है ना। फिर जब फंस जाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना लगे मन। इसलिए मन लगा रहे, हमने आपको पहले से अपडेट दे दिया, उस अपडेट के साथ अगर आप अपडेट रहेंगे और चलेंगे, नियमों का पालन करेंगे और उस एडवाइजरी का ध्यान रखेंगे तो भाई मन तो लगेगा, बट

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

भाई साहब, खूबसूरत सा गीत, खूबसूरत सी सुबह, खूबसूरत सी बातें, खूबसूरत सा ऐसा सब कुछ खूबसूरत खूबसूरत लग रहा है। बताएं, आज बहुत खुश हूँ। दिल एकदम गार्डन गार्डन हमारा हो रखा है और हमारे दिल में खिले इस गार्डन की वजह है भैया, आज जो है ना नीट यूजी का रिजल्ट निकल गया और 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया। तो भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये परीक्षा दी, और जानता हूँ कितना पसीना, कितना दिमाग और कितनी रातें आपने जाग कर यूटिलाइज़ की है और उस पर मेहनत की है, और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ था तब आप यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बहुत खुश हूँ। आपकी ये खबर सुनकर हम एकदम, हमारी सुबह जो है ना बहुत खूबसूरत हो गई, वाकई बहुत खूबसूरत हो गई। तो बता देते हैं आपसे जल्दी, जो एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का जो रिजल्ट फाइनल किया उसमें 20 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, 11 लाख से ज़्यादा, 11.21 यानी 11,21,000 लोगों ने क्वालिफाई किया, और इनमें करीब 58% फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और हाई स्कोर पाने वालों में 17 से 19 वर्ष के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं। वाह, क्या बात है, नई जनरेशन, सैल्यूट भाई। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी में संघर्षों को करना पड़ता है, ढिचके हो, है ना। गीत हम आपको प्यारे प्यारे सुनाते रहेंगे, लेकिन ये खबर जो आपने खुशखबरी वाली दी, हम वाकई हमारा मुंह मीठा हो गया। चलिए एक और प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कदम और आगे। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र।

भैया कोई आए ना, हम तो यहाँ पे बैठे हुए आपसे बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, ढेर सारी जानकारी दे रहे हैं, हमारे देश में क्या कुछ नया हो रहा है ये भी बता रहे हैं, और बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, हमें खुशनुमा कर रहे हैं हमारी सुबह को ये भी बता रहे हैं, और हमारे दिल के तार जो है ना आपके दिल से जुड़े जा रहे हैं, क्योंकि जब हम प्यारे से नगमे बजा रहे हैं ना तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता है। और यदि और बढ़िया बात हम आपको बताने वाले हैं, और भी बढ़िया है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं और दिल्ली एनसीआर के लोग भाई बिंदास जबरदस्त है ना। चलिए बताते हैं बड़ी खूबसूरत सी बात, एक और खूबसूरत की खूबसूरत सी जो खबर है वो हमारे तक पहुंची, तो मैंने सोचा चलिए आपसे साझा कर ही देते हैं, क्योंकि बात जिंदगी के सफर की होती है तो वो तो खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से हम लोग हाईटेक हो रहे हैं ना, हमारा देश जबरदस्त, सारे रास्ते खूबसूरत हो गए, जहां से गुजरिए बस बड़े बड़े रास्ते, ट्रेनें, उनमें सफर बहुत आसान हो गया है। बस एक चीज नहीं समझ में आती कि जब ये सुविधाएं हमें मिलती तो हम क्यों नहीं बदलते, हम काहे को उनको नुकसान पहुंचाते। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं उनको और खूबसूरत बनाना है, तो बस साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखिए जहां भी रहें। फिलहाल हम एक और प्राउड मोमेंट शेयर करने जा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे होंगे। जानते हैं इसके साथ ही भारत जो है उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। ये ट्रेन जींद सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। सोचिए कितना सुहाना सफर हो जाएगा, हाइड्रोजन ट्रेन, दुनिया के चुनिंदा देशों में हम शामिल हो जाएंगे। 10 कोच वाली होगी ये ट्रेन और ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन होगी और शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। एक बात बताऊं आपको, चीन, जर्मनी, फ्रांस यहां भी चलती है हाइड्रोजन ट्रेन, लेकिन अभी ये ट्रायल ही कर रहे हैं। उनके पास अगर कोच भी हैं तो पता है कितने हैं, 2 से 3 कोच हैं, लेकिन हमारे पास 10 कोच की ट्रेन है जो आज से शुरू हो जाएगी। सबसे खास बात पता क्या, इसकी शुरुआत हो जा रही है छोटे छोटे प्यारे स्कूली बच्चों से। ये जानकारी मिली कि हाइड्रोजन ट्रेन की जो पहली यात्रा होने जा रही है वो 200 स्कूली बच्चों को सफर कराएगी और इसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिक भी इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बन सकेंगे, है ना, कितनी खूबसूरत बात।

0: के चुनिंदा देशों में हम सुविधाएं बढ़ रही हैं, और आज देखते ही देखते दिल्ली कितनी बदल गई है, हमारा सफर कितना बढ़िया हो गया, हमें भी तो बढ़िया बनना होगा, है ना। फिलहाल तो बात ट्रेन की है, गीत भी ट्रेन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। सुपर डुपर हिट गीत है।
1: दें या ना दें, हमारी गाड़ी तो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी आएगी।

अब भैया रेलगड्डी की तो हमने बात कर ली और हमारी वह गड्डी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास समय है, क्योंकि अभी हम अपने अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं और गंतव्य पहुंचने से पहले अभी हमें कई पड़ाव तय करने हैं और उन पड़ाव पर जाकर हमें आपसे ढेरों जानकारियां साझा करनी है भैया। तो इस सफर में आपका अगर साथ है तो ये साथ तो खूबसूरत होना ही है। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं आगे कुछ और जानकारी के साथ। तो भाइये चलिए छात्रों की बात कर लेते हैं। जो लोग IPO में ऑफलाइन काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो आज उनके लिए अच्छा मौका है। IPO के जो BA BEd प्रोग्राम है उनकी पहली ऑफलाइन काउंसलिंग जो है आज द्वारका कैंपस में आयोजित होने जा रही है। आप थोड़ा सा तैयार रहिए क्योंकि इस दिन सीटों का भी आवंटन कर दिया जाएगा और जो भी इच्छुक आवेदक हैं, यानी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जाइए www.ipo.ac.in पर और इसके साथ ही www.ipo.admission.nic.in पर जानकारियां देख सकते हैं। भाई साहब हम तो बताए नहीं, लेकिन आपको भी और डिटेल अगर चाहिए तो वहां पर क्लिक तो करना होगा। थोड़ी सी तो एफर्ट कर लीजिए, थोड़ी सी तो मेहनत कर लीजिए। आप क्या भाई, आप हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगता है जब आपके प्यारे संदेश हम तक पहुंचते हैं। एक और बात वो ये है कि जो DTU में BSc और MSc के 7 इंटीग्रेटेड कोर्स है ना, उसमें ऑनलाइन पंजीकरण 30 जुलाई तक होंगे। इसमें मैथ्स, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस,

लाइट स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में दाखिले के लिए पंजीकरण आप कर सकते हैं। CUET स्कोर से दाखिले होंगे भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान रखिए और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी पक्का। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ज़िंदगी के सफ़र में उस मुकाम तक पहुंचना है जिसके बारे में आपने सोच रखा और वो आपका जुनून है, उसके लिए आपने जोश बचा के रखा है, तो बस उस जज्बे के साथ लग जाइए और इस सफ़र को प्यारा, खूबसूरत, खुशनुमा बनाना है तो वो मैं हूँ ना आपके साथ, प्यारे प्यारे गीत के साथ। क्योंकि इस तरह की खबरें जब हमारे पास मिलती हैं तो हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, है ना, ओ लाला।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल

0: बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: Oh my God, this is original.

0: भाई साहब मकान आप कहीं लो,
1: घर कहीं लो, सफर के लिए ट्रांसपोर्टेशन सही होना चाहिए, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। इसीलिए कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो हम आप तक पहुंचा देते हैं। अगर आप अपने सफर को और सुहाना बनाना चाहते हैं, खासकर ट्रेन के सफर की बात करें, तो भाई साहब इस पर भी आपको अपडेट रहना होगा, क्योंकि ये अपडेट भी कहीं कहीं से आपको मिलता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल पाता उनको बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। तो हम चलिए हम इस पर भी अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि कुछ दिल्ली के एंड से जो लोग सफ़र तय करते हैं दूरी का ट्रेन के ज़रिए, खासकर मैं बताना चाहता हूँ, वो भाई 3 माह तक कुछ ट्रेनें ऐसी हैं, लगभग 8 ट्रेनें ऐसी हैं जो नहीं रुकेंगी, यानी कि दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन को जो अपग्रेडेशन का यहाँ पर चूंकि काम चल रहा है, इसलिए दिल्ली जाने वाली गरीब रथ और आश्रम एक्सप्रेस सहित 8 ट्रेनों का दिल्ली कैंट स्टेशन पर जो अस्थायी ठहराव था उसको फिलहाल रोक दिया गया है। अब उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से ये जानकारी हासिल हुई कि जुलाई से अक्टूबर 2026 तक अलग अलग जो अवधि है उसके दौरान ये लागू रहेगी। दिल्ली कैंट स्टेशन पर जो ट्रेनें हैं उनको भी हम बता देते हैं, बांद्रा टर्मिनस और दिल्ली सराय रोहिला गरीब रथ एक्सप्रेस 16 जुलाई से 12 अक्टूबर तक, साबरमती दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस 16 जुलाई से 13 अक्टूबर, भुजबरेली आला हजरत एक्सप्रेस 16 जुलाई से 13 अक्टूबर तक, उदयपुर सिटी योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक स्पेशल 22 जुलाई से 7 अक्टूबर, अजमेर योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल 16 जुलाई से 8 अक्टूबर और जोधपुर दिल्ली सराय रोहिला राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 19 जुलाई से 11 अक्टूबर, ओखा शकुर बस्ती स्पेशल 22 जुलाई से 7 अक्टूबर और साबरमती हरिद्वार स्पेशल 21 जुलाई से 13 अक्टूबर ये ट्रेनें शामिल हैं। यानी 8 ट्रेनें जो हैं इन पर कुछ समय तक रोक लगेगी, और जो भी यात्री यहां से यात्रा करना चाहते हैं तो पहले से इस बात की जानकारी जुटा लें और कंफर्म कर लें चीज़ों को, उसके बाद ही अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस सफ़र को तय करें और जानकारी हासिल करने के बाद ही आप आगे निकलें, तो आपका सफ़र बिंदास हो जाएगा, चाहे आप ट्रैवल करके कहीं भी जा रहे हों। फिलहाल इस सफर को तो हम खूबसूरत बनाए रहे, प्यारे प्यारे गीत चल रहे हैं, बातें हो रही हैं, ढेर सारी कार्यक्रम चल रहा है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र।

0: तो भैया ऐसा हमारा प्यार है तो हम उसी प्यार की तो बात कर रहे हैं कि हमारे और आपके दिल के तार दिल से जुड़े रहने चाहिए, है ना। अच्छा इस समय इंडियन टीम के कोच कौन है, नाम याद है? अरे गौतम भाई, हमारे अगले घंटे के कोच भी वही रहने वाले हैं और वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करेंगे आपसे। और जानते हैं क्या लेके आएंगे, नॉन स्टॉप जैसे 2020 चल रहा है ना वैसे यहाँ पर वो बस घंटी बजा देंगे इतनी कि मज़ा आ जाएगा, आप नाचने में मजबूर हो जाएंगे। आवाज़ सुनेंगे, हेलो।
1: हेलो एंड आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी लिसनर्स हैं ना उनके दिलों की घंटी बज जाती है। ट्रिंग ट्रिंग गाते हैं जब रविंद्र सिंह सिंह सिंग इज किंग।
0: वाह, तो सिंग करें हम चलिए हम सिंग कर दें। इसके बाद ये दमदार आवाज़ आप सुनेंगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर आ रहे हैं गौतम, और हम एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि हमारा सफर आज का यहीं समाप्त होता है। फिर किसी दिन होगी मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।

नमस्कार, समय हो गया है मुख्य समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरला में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशन के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का

उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा का परिणाम घोषित किया और उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंक रोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। केरला में आज से रामायण माह शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। इस योजना पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा अब से कुछ देर बाद फिर से शुरू होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध से बचाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की है। हॉकी इंडिया देशभर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। कार्डिफ में दूसरे 1 दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर। श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। और थिरकने पर मजबूर कर देंगे हम, बिकॉज हम हैं तो फिर क्या गम है। दिल के तराने, गाने नए पुराने, और थोड़ा सा बेशरम होना बनता ही है ना जब डांस की बात आए। तो फिर मैं भी अपने मोहल्ले का ऋतिक रोशन हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप भी काफी थिरकते होंगे आईने के सामने। लेकिन आ जाइए जरा डांस फ्लोर पर, क्योंकि बैक टू बैक सुपर हिट सॉन्ग्स

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
5: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने।
6: जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। एक मुंडा पंजाबी, बाकी आपको बताइए। 102.6 FM, दिल के तराने, गाने नए पुराने।

सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, राजी गौतम और टाइम फॉर द ओल्ड क्लासिक सॉन्ग। उषा उत्तुप की आवाज में हर किसी को थिरकने पर मजबूर करने

अगर वफा का रंग सफेद होता ना तो नमक हर जख्मों की दवा होता। दवा छोड़िए, लेकिन हवाओं का रुख जरूर आपकी तरफ चलेगा। बस इरादों को मजबूत रखिए, बिकॉज लकी आपको बनना पड़ता है। लक भी तभी आता है जब आप हिम्मत रखते हैं। दिल के तराने, गाने नए पुराने सुन रहे हैं आप 102.6 FM।

दिल से लगा लो तो मजा ही मजा, और दिमाग को चढ़ा लो तो फिर सजा ही सजा। लेकिन सजा और मजा, ये रजा है 102.6 FM, दिल से दिल तक। और मुझे पता है जब जाने का समय होता है तो आप कहते हैं तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना, लेकिन मैं जाऊंगा, तभी तो लिपिका आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक लेकर। तो जेंटलमैन, This is the day you will always remember that you almost got Captain Jack Sparrow. Now Captain Jack Sparrow और RJ Gautam is signing out. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, because अभी तो बहुत कुछ है आपके लिए। Friday और फिर नाचना तो बनता ही है। Weekend vibes आगे भी जारी रहेंगी।

प्यार में मिलने का मौसम आ गया. नॉट टुडे, नॉट टुमारो, बट मे बी नेक्स्ट वीक. हियर इज द वेदर अपडेट डियर लिसनर्स. वेरी वार्म एंड वेरी ह्यूमिड डे टुडे एट 38 डिग्रीज. द वीकेंड दिल्ली विल बी वेरी वार्म, वेरी ह्यूमिड. That's nothing new. With a mix of cloudy skies and a chance of intermittent showers. Now, daytime highs will hover around 36 to 37 degrees this weekend, with temperature feeling much hotter due to high humidity levels. The good news is that this upcoming week is expected to bring widespread rainfall, which could offer some relief. Rain or no rain, my dear listeners, please do take care of yourself.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: का संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: Your company means a lot. Time now for another tiny break. Stay with us.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के

दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: That was Muhammad Rafi in a song from the movie Kashmir Ki Kali featuring Shami Kapoor, one of my favorites. Here's a message from Bangalore, and this is Samantha who writes, I'm Samantha from Bangalore. I'm enjoying your program to the last drop. Your voice, your choice of songs is just superb, and your voice modulation also. Thank you very much, Samantha, for this lovely compliment. And after a long time, we see Nirja Lal tuning into my program. She writes, hi, Lupika, enjoying the program. What a great playlist. Wonderful to find the matchless music are back. But where are the former RJs? Andrew, Sunil Verma, Subhadra and Rajesh Lake. They all are doing fine. Andrew is enjoying his retired life. Rajesh Lake comes for news and other programs. So does Sunil Verma and also Subhadra. Thank you, Nirja, for tuning in. Well, everybody, time now for another and the last tiny break.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
2: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब

0: सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनें।

एफएम स्टूडियो घड़ी में समय हो गया है 11:05। लीजिए पेश है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशन के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित किया। उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। केरल में आज से रामायण माह शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। इस योजना पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा

और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा आज फिर से शुरू। आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध से बचाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की। हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और आर्टिफिशियल और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। और कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर। श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। तो ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और प्रोग्राम शुरू हो गया है। बॉलीवुड ट्रेल्स, फ्राइडे का दिन है यानी कि शुक्रवार, और शुक्रवार को आप जानते हैं कि फिल्मी दुनिया के लिए बड़ा खास दिन होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मूवीज आर रिलीज्ड ऑन दिस डे। तो अगर आप भी फिल्मों के शौकीन हैं और फिल्मों से जुड़ी खबरों के अंदर दिलचस्पी रखते हैं या फिर स्टार्स की जिंदगी में ताक झांक करना चाहते हैं तो दूर मत जाइए, आप सही स्टेशन पर हैं। एंटरटेनमेंट की लहरें जहां पर लगातार निरंतर चल रही हैं 90 सालों से, वो है आकाशवाणी रेनबो।

कॉकटेल टू से आपने गाना सुना लहर। ये आजकल मेरी फेवरेट टॉप 10 लिस्ट के अंदर वन ऑफ द टॉप मोस्ट सॉन्ग है, क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं ये गाना सुनता हूँ तो बस मैं सुनता ही चला जाता हूँ। अभी स्टूडियो की तरफ आते हुए भी रास्ते भर मैं ये गाना सेम गाना लूप पर चलाते हुए सुनता हुआ आ रहा था, और बहुत कुछ जज्बात मन में उठते हैं जब आप देखते हैं लहर और समंदर किनारा, बीच किनारा आप जानते हैं। इफ़ यू रियली लाइक यू नो सी शोर, तो आप ये कह सकते हैं कि शी सेल्स शेल्स ऑन द शोर ऑफ द सी शेल्स, ऐसा कुछ है ना। तो ये टंग ट्विस्टर करते रहिए, आपकी ज़ुबान साफ़ होती रहेगी। अब देखिए, दिल साफ होना हो, ज़ुबान साफ होनी चाहिए, क्योंकि ज़माने की ये बहुत बड़ी आजकल रिक्वायरमेंट है। और बॉलीवुड के अंदर तो लोग देखिए मुखौटे लगाने के लिए जाने जाते हैं, और जो वो होते हैं वो दिखते नहीं, जो दिखते हैं वो होते नहीं, जो कहते हैं वो उन्हें कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो कह जाते हैं वो हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग उनके फैंस हैं। और आज बहुत समय के बाद न्यूज़ में जो आए हैं वो हैं विवेक ओबेरॉय, एंड ये नहीं बताने आ रहे कि आप किस तरह से एक्टिंग करें, तो ही इज़ अ गुड एक्टर, आई नो। उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और फिर धीरे धीरे एज अ डांसर, एंड फिर वो फिल्मों में डायरेक्शन में भी उन्होंने हाथ आजमाया एज अ यू नो एडी असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, एंड देन प्रॉब्ली उनकी जो बिगेस्ट हिट है वो है साथिया। और अब वो एक नई न्यूज़ लेके आए हैं, लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइस। देखिए, ये फाइनेंशियल एडवाइस मैं नहीं कहता कि आप उनकी बात माने, बट वो ये कहते हैं कि हर किसी को पैसे के लेन देन को लेकर सतर्क होना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि जीवन में पैसे का क्या मूल्य है। तो अगर भी पैसे को लेकर आप थोड़े से नादान हैं तो यू नो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स सोनू निगम की आवाज में, अपने समय का ब्लॉकबस्टर गाना साथिया।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड रील्स आकाशवाणी रेनबो पर और अपने 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली और आसपास, इसके अलावा ढेरों फ्रीक्वेंसीज पर पूरे भारतवर्ष में आप हमें सुन सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, बेफिक्र रहिए, हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहेगा। अरे, इस बात से मुझे याद आया कि आपको बॉलीवुड सरताज के लिए भी तो सवाल बताना है, क्योंकि आप बड़े उत्सुक रहते हैं। तो हमारा आज का सवाल है करीना कपूर को लेकर कि उनकी वैसे तो बहुत सारी फिल्में आई हैं, बट अचानक मेरा मन किया क्यों नहीं उनकी एक कुछ समय पहले आई फिल्म कमबख्त इश्क मूवी से आपको ये जानना है कि करीना कपूर ने उसके अंदर जो रोल अदा किया था उस कैरेक्टर का नाम क्या। बस इतना सा है, लिख के भेज दीजिए 9868107070 पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है अपने नाम के साथ, और हो सकता है आप आज बन जाएं बॉलीवुड सरताज।

अनुष्का शर्मा, बहुत दिनों से कुछ खास बड़ा प्रोजेक्ट दिखे उसका इंतजार है फैंस को, लेकिन अनुष्का और विराट कोहली हम दोनों हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, बॉलीवुड का आसमान हो, या फिर लंदन का कोई बढ़िया सा मैदान हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनुष्का शर्मा भी हाल ही में लंदन में थी और जहाँ वो मिली किसी स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल गुरु से जिनका नाम है कृष्णदास। तो देखिए, इसके लिए स्पेशली लंदन गई हैं, अच्छी बात है। और वैसे हमने उन्हें पहले भी देखा है कि वृंदावन की गलियों से होते हुए अब लंदन तक का ये सफर। तो अनुष्का नॉर्मली विराट और अनुष्का रहते हैं खबरों में अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालते हुए स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हुए। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर।

शाहरुख खान के फैंस के लिए बहुत से ऐसे सपने होते हैं, उनमें से एक सपना है जो उनकी मन्नत है, वो ये है कि वो शाहरुख खान के घर मन्नत के सामने खड़े हों और उन्हें वो आइकॉनिक पोज बनाते हुए देखें। लेकिन अभी इसमें थोड़ा व्यवधान है, बिकॉज उनका जो घर है रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन के अंडर है। और ये क्यों न्यूज़ में है ये भी बताऊंगा, पहले ये गाना तो सुन लीजिए। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर, मैं हूं आपके साथ रंजन। हम आप तक पहुंच रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से, 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो के माध्यम से।

0: दूर जा।
1: जी विलेत को क्यों जाएंगे, बहुत से लोग हैं जो देश विदेश से शाहरुख खान साहब के ढेर सारे फैंस हैं, जो स्पेशल मौक़ों पर, स्पेशली ईद हो या शाहरुख बर्थडे हो, घर के बाहर तब तो बाकायदा ऐसी भीड़ वहाँ पे होती है कि लाठी चार्ज भी कई बार हो जाता है। सॉरी, आई फील सॉरी फॉर द फैंस, बट ये रियलिटी है। बट हाँ, वो नॉर्मली एक वन ऑफ द लैंडमार्क है, अगर आप मुंबई जाते हैं एज अ टूरिस्ट, घूमने जाते हैं देश से या विदेश से, तो एक ये आइकॉनिक जगह है। लोग मन्नत के बाहर खड़े होकर अपनी सेल्फी लेना, फ़ोटोज़ खिंचवाना कि हम शाहरुख के घर का रास्ता तय किया है, हम खड़े हुए हैं दीवानों की तरह और वेट किया है उस आइकॉनिक पोज के लिए। अब मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका जब घर बन रहा है तो किसी ने पीएल फाइल की, क्योंकि ऐसा कानून होता है कि समंदर किनारे या कुछ और ऐसे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स जिनके घरों के आसपास होते हैं, दिल्ली में ऐसी बहुत सी कॉलोनी है जिन्हें आप बहुत ऊंचाई तक अपने घर की लंबाई नहीं ले जा सकते, इट इज अंडर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। तो ऐसा ही किसी ने पीएल दाखिल की थी, जहां माननीय कोर्ट ने शाहरुख को बाकायदा एक इजाज़त दे दी है कि वो 6 माले तक तो अपना घर बना सकते हैं। वो घर बन रहा है, हमें इस सब से कोई मतलब नहीं है। हम फैन लोग क्या चाहते हैं कि जब नया घर बने तो ये आइकॉनिक पोज के लिए जैसा स्ट्रक्चर आपने पहले वो लोहे का जंगला सा लगा रखा है ना, इससे बेहतर कुछ बनाइएगा ताकि हम फैंस को आपके दर्शन होते रहें, होते रहें, होते रहें। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन, आकाशवाणी रेनबो पर।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स. मैं हूं आपके साथ रंजन और हमारे साथ आप यूं ही बने रहें क्योंकि आपको यहां पर मौका मिलता है बॉलीवुड सरताज बनने का. उसके लिए छोटा सा हमारा सवाल है जिसे आपने सही आंसर देने पर आपका मौका लग सकता है, आपका चांस लग सकता है. और हमारा सवाल आज का है कि कमबख्त इश्क जो एक मूवी आई थी, आई थिंक 2009 के आसपास कभी आई होगी. सो उस मूवी में करीना कपूर का जो नाम था, जिस कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया, वो कैरेक्टर का क्या नाम था बता के हमें झटपट लिख के भेजिए आकाशवाणी रेनबो के व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070. और आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज.

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन, और आज है 17 जुलाई 2026, और हम आज मना रहे हैं रवि किशन साहब का जन्मदिन। 17 जुलाई 1969 को वो जन्मे थे, और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। स्पेशली प्राइमरली ही स्टार्टेड ऑफ विद भोजपुरी, और वहाँ पर वो उन्होंने बाकायदा सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त किया। उसके बाद हिंदी फिल्मों में भी काम करते रहे। उनकी कुछ एक परफॉर्मेंसें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, फिर हेरा फेरी में बड़ा कॉमिक रोल किया, उसके अलावा उनकी मूवी रावण में उनका रोल था, एजेंट विनोद में, बुलेट राजा में भी, आई थिंक आई हैव सीन दिस मूवी एज वेल, और ऐसी बहुत सी अनगिनत मूवी हैं। बिग बॉस के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और आजकल वो जाने माने राजनीतिज्ञ हैं, ही इज़ अ पॉलिटिशियन एज वेल। सो रवि किशन साहब, आपको आज जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आकाशवाणी की तरफ से।

0: गुरु रंधावा की आवाज में ये तुकबंदी जो आपने सुनी, बम है तू बम्बे तेरा शहर कुरे, मतलब लिखने की बात है भाई। जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं वो ये भूल ही गए हैं कि बॉम्बे इज नो मोर बॉम्बे, इट्स मुंबई। तो यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, आप सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स। और सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे सरताज का, और बहुत जल्द किसी एक को बनाएंगे बॉलीवुड सरताज, कहीं मत जाइएगा, आप जुड़े रहें हमारे साथ।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मंगल भवन मंगल हारी
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन। और अब आपको थोड़ी खबर बता दें कि हमारी जो फ्राइडे को फिल्में रिलीज होती हैं वो बॉक्स ऑफिस पर जो कमाल या धमाल करती हैं उसकी क्या रिपोर्ट है। और चांस की बात है, हम बात करने जा रहे हैं धमाल मूवी की। धमाल 4 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7 दिन का हम बताएं तो लगभग 101 करोड़ के आसपास ये पहुंचा है। मुझे कई बार लगता है, मैं वैसे ही एक कैलकुलेशन लगा के देख रहा था इस मूवी के, कुछ डे वाइज अगर मैं आपको ब्रेक डाउन दूँ कि भाई कौन से दिन कितना इन्होंने बिजनेस किया है, तो लगभग सोचिए फ्राइडे को 14 करोड़ का आई थिंक ओपनिंग लगी। सैटरडे को ये बिजनेस 22 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गया। फिर संडे को बिल्कुल 28 करोड़ बंपर है ना, और उसके मंडे को डिप हो गया बिकॉज लोग काम पे भी तो जाएंगे ना, 8 करोड़। अब ये फिगर्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए बड़ी सोचने वाली बात है। मुझे कई बार लगता है फिल्में वैसे ही लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा होता है इनको बनाने में। स्टार्स की फीस ही आजकल कई 100 करोड़ में पहुंच जाती है, कई 100 तो नहीं, मतलब 30-40-50 एंड प्रॉफिट शेयरिंग एंड स्टफ लाइक दैट। 4,000 स्क्रीन्स पर अगर कोई मूवी दिखाई जाए और पहले दिन वो 14 करोड़ की ओपनिंग ले तो कितना बड़ा लगता है ना सुनने में, लेकिन अगर इसकी एक एवरेज निकाली जाए एज अ लेमैन तो 35,000 रुपये की एक स्क्रीन से आपकी सेल है, रेवेन्यू है। दैट्स नथिंग, इससे ज़्यादा सेल तो मुझे लगता है पॉपकॉर्न और सॉफ्ट ड्रिंक्स की हो जाती है। इसीलिए जब भी सिनेमा घर में अगर बिजनेस की सोचें तो सिनेमा घर में सिनेमा की तरफ मत जाएं, पॉपकॉर्न काउंटर की तरफ जाएं। मतलब ये छोटा सा ज्ञान है, लेना चाहें तो लें, नहीं तो हवा में उड़ाएं।

करीना कपूर की ही मूवी से ये गाना आपने सुना बेबो, और ये मूवी रही कमबख्त इश्क। और हमारा आज बॉलीवुड का सरताज बनाने के लिए जो सवाल था वो भी यही था कि कमबख्त इश्क में जो कैरेक्टर प्ले किया बेबो ने यानी करीना कपूर ने, बेबो आई थिंक इनका रियल लाइफ में जो पेट नेम है वो बेबो है, वैसे हम उन्हें करीना कपूर के नाम से जानते हैं। और कमबख्त इश्क में इनका जो नाम था वो मैं राइट आंसर अब आपको बता देता हूँ, उसका मैं रीज़न देता हूँ। आज हम जिन्हें बॉलीवुड सरताज बनाने जा रहे हैं वो हैं मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से, और इन्होंने भी लिखा है सही जवाब सिमरता राय नाम रहा आपका बेबो या करीना कपूर ने जो प्ले किया था। बहुत सारे हमारे पास सही आंसर आए।

वैसे इट्स अ सॉर्ट ऑफ यू नो टंग ट्विस्टर नेम सिमरिता राय. अब सब लोग सही से नहीं, मैं भी मुझे लगता है बोल पा रहा हूँ कि नहीं है, ये तो आप ही बताएंगे. खैर कुछ एक नाम और ले लेता हूँ. तो सबसे पहले धर्म भाटिया जी को ढेर सारी शुभकामनाएं. आज पूरा दिन आप कुछ मीठा बनाइएगा, खाइएगा, मुँह मीठा कीजिएगा. आज के दिन आप हैं बॉलीवुड सरताज. और बहुत से लोगों ने सही आंसर्स दिए, अब सबके नाम तो नहीं यहाँ ले सकते, तो आप बेटर लक नेक्स्ट टाइम. यूं ही ट्राई करते रहें, आकाशवाणी के रेनबो के संग जुड़े रहें. जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मैं आपसे फिर मिलूंगा 1 बजे के बाद. और मेरे जाने के बाद यहां पर आएंगी लिपिका दास विद द प्रोग्राम प्ले इट कूल. जुड़े रहें आकाशवाणी के संग, सुनते रहें, क्योंकि हम हैं आपके साथ 90 वर्षों से 2400 घंटे दिल से दिल तक.

बस इस कार्यक्रम में इतना ही समय था मेरे लिए, तो रंजन को दीजिए इजाजत, आपसे पुनः होगी भेंट जैसा मैंने पहले कहा। और कार्यक्रम रहेगा 1:20 से, जिसमें आप ढेर सारे अपने मैसेजेस भेज पाएंगे, अपने दिल की बात कह पाएंगे, क्योंकि आज है महीने का तीसरा फ्राइडे। तो प्रोग्राम होगा बिंदास बोल, जुड़ रही आकाशवाणी के संग। टेक केयर, बाय।

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर

0: अकाल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: Welcome back to Play It Cool, dear listeners. 6 more minutes to go, and here is the next track dedicated to Mr. Rajkumar in Trichy, because he writes, anything for a refreshed mind, and I would love to travel because I love walking amidst nature. Let's go to Ibiza. Yes, sure. I'm going to put you on Venga Airways flight and sending Mr. Rajkumar to Ibiza with this track.

एफएम स्टूडियो घड़ी में समय हुआ है 1:14। लीजिए पेश हैं अभी तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशन के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर, जहां वे बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, साथ ही वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज विश्वभर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। इस योजना पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। गोवा सरकार ने 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के कैसीनो गेमिंग क्षेत्रों में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा जारी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासी ट्रक चालकों पर व्यापक कार्रवाई की योजना की घोषणा की है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 2-3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। 3 श्रृंखला

मैचों की श्रृंखला एक एक से बराबरी पर। हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। तो ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। और खास बात यह है, आज बहुत खास दिन है। जो लोग हमें जानते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम को, उनको पता है कि ये जो कार्यक्रम है पूरे महीने में सिर्फ एक ही शुक्रवार को आता है, और वो होता है महीने का तीसरा शुक्रवार। तो हम आपसे बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले आपको ये याद करा देना तो आपकी याददाश्त में बैठ जाए कि आज जो पहले आप कार्यक्रम सुनते हैं मेरा वाला सॉन्ग वो नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट वगैरह अपनी भूल जाइए, आपकी पसंद ना या फिर नापसंद यानी मेरी पसंद का कोई गाना होगा जरूर बजाएंगे प्रोग्राम के मध्य में। खास तौर से जो पहली बार सुन रहे हैं उनको बता दें कि जो ये कार्यक्रम शुरू होगा थोड़ी देर बाद, जिसका नाम है बिंदास बोल, उसमें आपने करना क्या है, उसमें आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है, आपने मैसेज के द्वारा करना है। आपके कुछ मेल्स मेरे पास आए भी हुए हैं, इसमें आपने हमारे सभी आरजेस की तारीफों के पुल बांधने हैं, और शिकायतें तो आप वैसे भी करते ही रहते हैं। खैर, मैं हूं आपके साथ रंजन, ढेर सारी होंगी आपके साथ बातें, लेकिन वो सब होगा उससे पहले एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, लौट के आएंगे, यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो के संग।
2: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
3: नमस्ते, मेरा नाम है सीमा बजाज और मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी में एक वॉलंटियर हूँ। हर सप्ताह हम आपके लिए कर्क रोग यानी कैंसर के बारे में कई जानकारियाँ लेकर के आते हैं और आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि समय रहते यदि डायग्नोज हो जाए तो 100% रिकवरी भी संभव है। मेरी वार्ता के बाद यदि आपको कुछ और जानकारी की ज़रूरत हो तो आप हमारी हेल्पलाइन 9910516556562 पर कॉल कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है तो आप हमारे कैंसर डिटेक्शन सेंटर जो कि बाबर रोड पे है जाकर के निशुल्क सेवा भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की वार्ता ICS द्वारा आप तक लाई जा रही है। आज हम बात करेंगे मेलानोमा यानी के त्वचा के कैंसर के बारे में। मेलानोमा क्या है? मेलानिन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी शरीर की कुछ कोशिकाओं में उत्पन्न होता है जिससे हमारी त्वचा को रंग मिलता है। तो कभी आपने देखा अगर कुछ लोग ज़्यादा गोरे हैं, कुछ लोग ज़्यादा काले हो जाते हैं, तो वो ये सब क्यों होता है? ये हमारी कोशिकाओं में से एक रंग प्रोड्यूस होता है जिससे हमको ये रंग मिलता है और उसको हम मेलानिन कहते हैं। आज क्योंकि हम मेलानोमा के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में मैं आपको और कुछ जानकारी दे रही हूँ। मेलानोमा क्या है? मेलानोमा, जिसका अर्थ है काला ट्यूमर, त्वचा के कैंसर का सबसे खतरनाक प्रकार है। ये तेजी से बढ़ता है और शरीर के किसी भी अंग में फैलने की क्षमता रखता है। मेलानोमा मेलानोसाइट्स नामक त्वचा कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। ये कोशिकाएं मेलानिन नाम गहरे रंग द्रव्य का उत्पादन करती हैं जो त्वचा को उसका रंग प्रदान करती हैं। अधिकांश मेलानोमा काले या भूरे रंग में होते हैं, लेकिन कुछ गुलाबी, लाल, बैंगनी या त्वचा के रंग के भी हो सकते हैं। लगभग 30% मेलानोमा मौजूदा तिलों में ही शुरू होते हैं, लेकिन बाकी सामान्य त्वचा में शुरू हो सकते हैं। तिल, सबको पता है तिल क्या होते हैं, है ना? तिल वही जो कहीं कहीं पर तो हमारी सुंदरता का प्रतीक भी माने जाते हैं और ज्योतिष विद्या में भी कहा जाता है।

0: है कि तिल किसी ना किसी शरीर के हिस्से में हो तो वो हमारे लिए बहुत शुभ या अशुभ भी होता है। तो हम तिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपके शरीर पर मौजूद तिलों की संख्या से ही मेलानोमा होने के जोखिम का अनुमान लगाया जा सकता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्या आप मेलानोमा त्वचा कैंसर होने के उच्च जोखिम वाले समूह में हैं भी या नहीं। मेलानोमा कितना आम है? मेलानोमा सभी त्वचा कैंसरों में केवल लगभग 1% का हिस्सा है, लेकिन त्वचा कैंसर में होने वाली अधिकांश मौतों का कारण यही है। ये 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं, विशेषकर युवा महिलाओं में से सबसे आम कैंसरों में से एक है। पिछले 30 वर्षों में मेलानोमा के मामलों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि पराबैंगनी यानी कि यूवे किरणों के बढ़ते स्तर में संपर्क आने से मेलानोमा के मामलों की संख्या में इस जीव वृद्धि के मुख्य कारणों में से एक है। शरीर में मेलानोमा कहाँ कहाँ हो सकता है? शरीर में किसी भी हिस्से में मेलानोमा हो सकता है। ये आंखों और आंतरिक अंगों में भी विकसित हो सकता है, लेकिन पुरुषों में धड़, खासकर पीठ के ऊपरी हिस्से में मेलानोमा होने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं में पैरों में मेलानोमा होने की संभावना अधिक होती है। मेलानोमा के लक्षण क्या होते हैं और मेलानोमा की पहचान कैसे करें, ये जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआती मामले मेलानोमा का इलाज आसानी से हो सकता है। मेलानोमा तिल पपड़ीदार धब्बे, खुले घाव या उभरे हुए दानों के रूप में दिखाई दे सकता है। त्वचा पर दिखने वाले किसी भी धब्बे का मेलानोमा होने की चेतावनी संकेतों को जानने के लिए ABCD मेमोरी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ए यानी कि एक समरूपता, एक आधा भाग दूसरे आधे भाग से मेल नहीं खाता। बी क्रम यानी कि किनारे चिकने नहीं हैं। सी रानी के रंग या कलर रंग धब्बेदार और असमान है, जिसमें भूरे, काले, धूसर, लाल या सफेद रंग के विभिन्न शेड्स हैं। डी व्यास यानी कि डायमीटर, ये पेंसिल के इरेजर की नोक 6 mm से भी बड़ा है। ई यानी इवॉल्व, मतलब विकसित हो रहा है, ये धब्बा नया है या इसके आकार आकृति में रंग का बदलाव होता रहता है। कुछ मेलानोमा ABCDE नियम में फिट नहीं होते, इसलिए अपने डॉक्टर को किसी भी ऐसे घाव के बारे में जरूर बताएं जो ठीक नहीं हो रहा, असामान्य उभार या चकत्ते हो, या आपकी त्वचा में किसी भी मौजूदा तिल में कोई भी बदलाव हुआ हो। मेलानोमा को पहचानने का एक और तरीका है, यानी कि बदसूरत बत्तख का निशान। वो अगली डकलिंग की कहानी हम सबने सुनी है ना, जिसमें सब बत्तखों के रंग तो एक जैसे थे लेकिन एक थोड़ा अलग दिखता था, इसी का नाम है बदसूरत बत्तख का निशान। अगर आपके शरीर पर कोई तिल बाकी तिलों से अलग दिखता है तो ये बदसूरत बत्तख का निशान है और आपको किसी त्वचा विशेषज्ञ को अपनी जांच करानी चाहिए। मेलानोमा किस कारण से होता है? अधिकांश विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि मेलानोमा की प्रमुख जोखिम कारक सूरज की रोशनी का अत्यधिक संपर्क है, खासकर युवावस्था में होने वाला सनबर्न। आंकड़े बताते हैं कि 86% मेलानोमा सूर्य की यूवी रेस के कारण होता है। सूरज त्वचा कैंसर का कारण कैसे बनता है? यूवी रेस के संपर्क में आने से कोशिकाओं के डीएनए का नुकसान पहुंचता है, जिसके खास जीन्स में बदलाव आता है जो कोशिकाओं के विकास और विभाजन को प्रभावित करते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब आपकी त्वचा का डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है और वे कोशिकाएं प्रजनन करने लगती हैं। और एक वजह है जो हिंदुस्तान में लागू नहीं है, वो है टैनिंग बेड। यहाँ पर टैनिंग बेड का बहुत ज्यादा बंदोबस्त इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। हालांकि मेलानोमा किसी को भी हो सकता है, लेकिन निम्नलिखित लक्षणों वाले लोग इस बीमारी के होने की का खतरा अधिक होता है। मेलानोमा का व्यक्तिगत इतिहास, परिवार में मेलानोमा का इतिहास, गोरी त्वचा, झाइयां, सुनहरे या लाल बाल या नीली आंखें, अत्यधिक धूप में रहने से जिसे फफोलेदार सनबर्न भी शामिल है। इक्वेटर के पास या अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में रहने से यूवी रेज के संपर्क में ज्यादा आने से खतरा बढ़ता है। कई तिल, विशेषकर असामान्य तिल और वीक इम्यून सिस्टम से भी आपको इसका खतरा हो सकता है। यदि आपके शरीर में कोई तिल या अन्य धब्बा संदिग्ध प्रतीत होता है तो आपका डॉक्टर इसे निकालकर एक बायोप्सी कर सकते हैं। त्वचा की बायोप्सी रिपोर्ट में मेलेनोमा कोशिकाओं का प्रमाण मिलने के बाद डॉक्टर द्वारा अगला कदम ये निर्धारित करना होता है कि मेलेनोमा फैला है या नहीं। इसे स्टेजिंग कहते हैं। निदान होने के बाद मेलेनोमा के कई कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि यह कितनी गहराई तक फैला है और माइक्रोस्कोप के नीचे इसका स्वरूप कैसा है। ट्यूमर की मोटाई परिणाम का अनुमान लगाने में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपके मेलेनोमा का इलाज मेलेनोमा के चरण और आपके सामान्य स्वास्थ्य पर निर्भर रहेगा। मेलेनोमा का मुख्य उपचार आमतौर पर सर्जरी ही होता है। इस प्रक्रिया में कैंसर और उसके आसपास की कुछ सामान्य त्वचा को काटकर निकाल दिया जाता है। हटाई जाने वाली स्वस्थ त्वचा की मात्रा त्वचा कैंसर के आकार और स्थान पर निर्भर करती है। आमतौर पर मेलेनोमा को सर्जरी द्वारा त्वचा विशेषज्ञ के क्लिनिक में ही लोकल एनेस्थीसिया के साथ भी निकाल दिया जाता है। अधिक गंभीर मामलों में सर्जरी के अलावा या सर्जरी के स्थान पर अन्य प्रकार के उपचार की भी आवश्यकता हो सकती है। मेलेनोमा में सर्जरी हो सकती है, लिम्फोनेडेक्टॉमी हो सकती है, मेटास्टेसिस का उपयोग भी हो सकता है और लक्षित कैंसर से चिकित्सा भी की जाती है। विकिरण चिकित्सा द्वारा भी इसका इलाज होता है। इम्यूनोथेरेपी आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर से लड़ने में मदद करने में के लिए भी उत्तेजित करता है। त्वचा कैंसर से पीड़ित कुछ मरीज नैदानिक परीक्षण में भाग ले सकते हैं। नैदानिक परीक्षण एक शोध कार्यक्रम है जो रोगियों के साथ किसी चिकित्सा उपचार, दवा या उपकरण का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। त्वचा के अधिकांश कैंसर का इलाज समय रहते ही संभव है, बशर्ते वे फैल ना सकें। हालांकि मेलेनोमा के गंभीर मामले जानलेवा हो सकते हैं, त्वचा के कैंसर की जितनी जल्दी पता लगाकर उसे हटाया जाए, पूरी तरह से ठीक होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अपने आप को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? धूप से बचें और छाया में रहकर, खासकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच। जब भी संभव हो किनारे वाली टोपी, धूप का चश्मा, लंबी आस्तीन वाली कमीज और पैंट पहनें। त्वचा की सुरक्षा के लिए SPF 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करें और इसे बार बार लगाएं, आमतौर पर 1.5 घंटे, या अगर आप तैर रहे हैं और पसीना आ रहा हो तो और भी जल्दी जल्दी लगाएं। सनस्क्रीन युक्त बाम का इस्तेमाल करें, लिप बाम का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों और 6 महीने से अधिक उम्र के शिशुओं को सनस्क्रीन लगाना न भूलें। खाने पीने में कहा जाता है कि ब्लैक टी के निस्बत ग्रीन टी की ज्यादा पॉलीफेनॉल होते हैं तो वो ज्यादा अच्छी है। सब्जियों का अधिक सेवन करें, सप्ताह में कम से कम एक बार मछली का सेवन भी करें। त्वचा कैंसर की रोकथाम में एंटीऑक्सीडेंट की सुरक्षमता प्रभावों को लेकर त्वचा विशेषज्ञों के बीच वर्षों से बहस चल रही है। हाल में ही शोध के ताजे खाद्य पदार्थों के एंटीऑक्सीडेंट की सेवन इस बीमारी को ना होने के बीच संबंध पता चला है। ये तो थी आज की वार्तालाप। आशा है आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा और आप इस पे ध्यान भी देंगे। इसी के साथ मेरी वार्ता समाप्त होती है। नमस्ते, भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम शुरुआत होने जा रही है उसकी, जिसका नाम है बिंदास बोल। तो जो लोग आज पहली दफा हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, उनको हम बता दें कार्यक्रम एक्चुअली है क्या। इस कार्यक्रम में आप देते हैं फीडबैक, रेनबो के जितने भी कार्यक्रम आप सुनते हैं उनमें से जो आपको पसंद आते हैं, जो नहीं पसंद आते हैं, कुछ आप बदलाव चाहते हैं, कुछ आप एडिशन ओमिशन आप उसमें जो भी बदलाव चाहते हैं या फिर हमारी तारीफों के पुल बांधना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कुछ एक ईमेल्स हमारे पास आई हैं, हमारे ईमेल पे आप बाकायदा मेल्स करते रहते हैं। इसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, अगर अभी अभी जुड़े हैं तो डोंट यू वरी, हमारा मैसेज नंबर है 9868107070। और जो पहला ईमेल हम लेने जा रहे हैं वो हमें लिखा है इरशाद जहान ने मुंबई से, और लिखा भी तो क्या खूबसूरत लिखा है, ज़रा गौर फरमाइएगा। कुछ एक पंक्तियां इन्होंने एक तुकबंदी करने की कोशिश की है, बड़ी खूबसूरती से लिखा है, ज़रा सुनिएगा। मेट्रो चैनल बन गया अपना रेनबो चैनल, क्या क्या बताता, क्या क्या सुनाता, सुबह सुनो तो मन भक्ति भावना में डूब जाता। ये हमारे सुबह के कार्यक्रमों की बात कर रही हैं, जहाँ पे भक्ति का कार्यक्रम सुबह 6 बजे होता है, फिर समस्याओं को सुलझाता, सूचना देता, नए पुराने गानों की टेस्टी खिचड़ी बनाता, मुंह में पानी आ गया अंग्रेजी गानों के साथ खूब थिरकाता, बॉलीवुड खबरों का हलवा खिलाता, कभी डॉक्टर बुलाता, कभी मनोवैज्ञानिक, रोजमर्रा की परेशानियों का हल निकालता, यूथ का खास ख्याल रखता, ज्ञान देता, ट्रिपल एम के द्वारा खूब बातें बनाता, म्यूजिक मस्ती से सब रिकॉर्ड बनाता, गोल्ड गाने सुनाकर आत्मा तृप्त करता, प्यारी गजलें सुनाकर संगीत पूरा करता। वाह इरशाद जहां जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर ये पंक्तियां आपने लिखी हैं तो उसके लिए आपको डबल तारीफ आपके लिए। इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ, आप चाहें तो हमें मैसेज कीजिए, कुछ एक मैसेज आना भी चालू हो गए हैं। आप सुन रहे हैं बिंदास बोल, जो आता है महीने के तीसरे फ्राइडे को, शुक्रवार को, और आज देखिए आज तीसरा शुक्रवार है महीने का।

जी हम भी आपसे यही दरख्वास्त करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप भी शर्माए नहीं, अपने दिल की बात कहें, क्योंकि बिंदास बोलना है कार्यक्रम का नाम ही है बिंदास बोल। इट्स अ टू वे प्रोग्राम जहां पर हम जो अभी करते रहते हैं पूरे महीने में उसका लेखा जोखा लबोलुबाब पूरा हिसाब किताब रिपोर्ट कार्ड आप हमें थमा देते हैं, जैसे पंकज अमरावती से लिख रहे हैं कि आकाशवाणी एफ

रेनबो दिल्ली के सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए स्पेशली अमरावती महाराष्ट्र में हमें रेगुलरली सुनते हैं और कह रहे हैं सभी आर्जेस की प्रस्तुति बहुत बढ़िया लगती है मुझे, सुबह का सुप्रभात और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, दिल के तराने, गाने नए पुराने, बॉलीवुड ट्रेल्स, आशियाना, मेरा वाला सॉन्ग, मैसेज मसाला मिक्स, म्यूजिक मस्ती, आपकी याद आती रही, रंगे महफिल, ये सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है मुझे। 5 जून 2026 का कार्यक्रम आशियाना और रेनबो डेस्टिनेशन भी पसंद आया। अच्छा देखिए पंकज जी, आपने बड़े अच्छे से मेल लिखी है, बट कुछ एक आर्जेस के नाम अगर आपको ध्यान रहे मेल करते समय, तो ये जो मेल मिलाप है ये बढ़ता रहेगा। यानी क्या होता है, इस समय बहुत से आर्जेस हैं जो पूरे महीने मेहनत करते हैं और समय निकाल के इस समय, चाहे कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं और हैं, अपने रेडियो पे थोड़ी देर सुनना चाहते हैं कि उनका किसी ने नाम लिया कि नहीं लिया। मतलब मैं मन में आया, आप ऐसे कहें सभी आर्जेस, उनमें से कोई टॉप 3, टॉप 1, यू नो, इस तरह से भी आप बता सकते हैं। सुनीता शर्मा शालीमर बाग से लिखती हैं कि वही बात कि सब मुझे आरजे पसंद हैं और प्रोग्राम बस ऐसे ही सुनते रहते हैं। अपनी वॉइस, अच्छा आपकी वॉइस होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने लिखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आराधना प्रोग्राम 5 से 5 बजे आता है, 6 बजे नहीं, लिखती हैं डॉली। थैंक यू सो मच डॉली जी, 5 से 6 ही आता है, मैं 6 से 7 भी कुछ एक प्रोग्राम बीच में आता है, या मैनी टाइम आपने करेक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास ढेर सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 9868 1070 70, दैट्स 9868 1070 7070। अगला गाना किसकी आवाज़ में अगर आप पहचान पाएं तो बहुत बढ़िया। प्राइमरीली एक एक्ट्रेस हैं, अदाकारा हैं, लेकिन गाना भी इन्होंने सीखा है, कभी कभार फिल्मों में गाती हैं। हम चाहते हैं और गाएं, थोड़ा सा आप गाना सुनें और हमें बताएं।

देखिए आपके बिंदास मैसेज हमारे पास पहुंच रहे हैं, जैसे हमारे पास लिख के भेजा है दिनेश नहार सिंह ने गोकुलपुरी दिल्ली से, कहते हैं कि सबकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है लेकिन फेवरेट आरजे सुजाता रथ हैं और वी दमन, इन्होंने साथ में दो नाम लिख के भेजे हैं। कुछ लोग अभी भी मेरा वाला सॉन्ग समझ के मैसेज कर रहे हैं, तो आज ये वो कार्यक्रम नहीं, हमने आपको पहले ही बताया। और सुबह 6 से 7 सुप्रभात कार्यक्रम आता है, ये हमेशा सुनते हैं पंकज अमरावती से, एक बार फिर से पुनः इन्होंने मैसेज करके भेजा है और इसके अलावा और भी ढेर सारे मैसेजेस लेंगे, लेकिन यहां पर समय है एक ईमेल लेने का। बहुत विस्तार से इन्होंने ईमेल भेजी है, नाम है प्रिंस, और प्रिंस

बहाल या प्रिंस बहल, आप हसनपुर से लिखते हैं, अमरोहा उत्तर प्रदेश से आपने अपना एड्रेस लिखा है, और कहते हैं कि रेनबो को ज़्यादा तो नहीं पर टाइम टू टाइम काफ़ी प्रोग्राम सुनता हूं, स्पेशली संडे का रेनबो जीनियस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए मैं अपने बिजी रूटीन से टाइम ज़रूर निकालता हूं। मैं मार्च 2016 से इस प्रोग्राम के साथ बिना इसको स्किप किए हुए इसके साथ कॉन्टैक्ट में हूं या कनेक्ट करता हूं, ऐसा लिखते हैं, और इसमें किए गए क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करता हूँ। ये बड़ी ख़ास बात है, आप देखिए इतनी मेहनत करते हैं, 2016 से तो अब तो कई कापियाँ भर गई होंगी, कई नोटबुक्स, बिकॉज बड़े सारे सवाल आपने लिखे होंगे। नहीं, इतना तो नहीं है ना, बताइएगा कितने कितनी एक ही कॉपी है, ज़्यादा है। और ये कहते हैं कि इस प्रोग्राम में बार बार मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ, के बारे में मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। पहला कि इस प्रोग्राम में सिर्फ आरजे एक दो बार ही क्वेश्चन रिपीट करते थे, और अब आंसर के लिए सिर्फ 5 से 10 सेकंड का टाइम देते थे, यानी पहले, और जो बहुत अच्छा था। लेकिन अब कुछ आरजेज हैं जो ज़्यादा समय देते हैं और क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, और इससे ठीक नहीं रहता, वो लोग सर्च कर लेते हैं और उसका आंसर देते हैं, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। और पूछ रहे हैं कि पहले इस प्रोग्राम में एक क्वेश्चन का आंसर देने पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछे जाते थे, सवाल पूछे जाते थे, पर अब आरजे ऐसा नहीं करते हैं, वो अगला सवाल पूछ लेते हैं, चाहे प्रीवियस सवाल का जवाब आपने दिया हो सही या फिर गलत, वो कॉलर को डिसक्वालीफाई नहीं करते हैं। पहले एक क्वेश्चन को गलत आंसर करने पर कॉलर को दूसरा मौका नहीं मिलता था, जो बिल्कुल सही था। और कहते हैं कि पहले इस प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का लेवल हाई होता जाता था तो काफ़ी अच्छा था, पर अब मोस्टली रिपीटेड और इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये आपके लिए इजी होगा, हो सकता है किसी और के लिए बहुत मुश्किल हो ना, अपने अपने सामान्य ज्ञान या फिर नॉलेज के बेस पे भी डिपेंड करता है, बट ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही जा रहे हैं। और आगे लिखते हैं इसमें, लिसनर्स अब भी और पहले भी नाम चेंज करके पार्टिसिपेट करते थे, जो सही नहीं है। ये तो हम आपकी बात मानते हैं, हमने लास्ट प्रोग्राम में भी आपकी ईमेल शामिल की थी जहां आपने बात कही थी। हम देखिए रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अगर कोई नाम चेंज करता है तो नहीं करना चाहिए अपने नाम से बाकायदा प्रोग्राम में, मगर उसमें ये हो सकता है कि लोग जो है ना बार बार पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो एक लालच होता है, एक तरह का प्यार है आकाशवाणी के प्रति, तो इसे हम थोड़ा लाइटली ही लें तो अच्छा है, वरना आप कहें तो इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, आप अगली मेल में बताइएगा। और आप कह रहे हैं कि मैंने पिछली दफ़ा आपके सवाल का जवाब दिया था, तो आपको मेरी बात, मैंने कुछ पूछा था कि आपको ऐसे कैसे पता चल जाता है कि भाई दूसरे लोग जो हैं वो नाम बदल के करते हैं, तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो ठीक है, मैं उसके लिए आपको उस दिन भी मैंने कहा था, मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको हर्ट हो, ये बिंदास बोल है, जैसे मैंने बिंदास बोला वैसे ही आपने बोला, और आपने बाकायदा दोबारा मेल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाता यूं ही बनाए रखिएगा, हम इसी तरह से आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे, और आपके बड़े सारे सवाल हैं, आपकी बातें बिल्कुल अच्छी लगी। देखिए ऐसा भी होता है कि अगर एक सवाल पूछते हैं और उसके बाद वो सही जवाब नहीं दे पाता तो दूसरे कॉलर पे जाते हैं, फिर तीसरे पे, ऐसा करते थे, डिपेंड करता है, हर एक आरजे का अपना तरीका होता है कई दफ़ा, और कई दफ़ा ये होता है कि अगर सभी पहले सवाल पे बोल्ड होते जाएं तो दूसरा सवाल पूरे कार्यक्रम में आएगा ही नहीं, आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो मिला जुला के हर आरजे अपने तरीके से इस कार्यक्रम को ज़रूर करना चाहेगा, और इसका आनंद लीजिए, बाकायदा इसमें नॉलेज बढ़ती है, काफ़ी ज्ञान बढ़ता है इसके अंदर, ऐसे सवाल होते हैं, कई बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, उससे जुड़े बाकायदा बहुत सारे सवाल इसमें होते हैं। और क्या कहा आपने इसके अलावा, मुझे जो लगा मैंने कहा, और थैंक यू सो वेरी मच, आपकी बात हमने सुनी। प्रिंस, इसी तरह से आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आकाशवाणी को यूं ही सुनते रहेंगे। अब ये सब के लिए एक पुरानी फिल्म से, शब्बीर कुमार साहब की आवाज में ये गाना मैं ढूंढ के लाया हूं, क्योंकि कार्यक्रम है बिंदास बोल, और इस कार्यक्रम के अंदर इस गीत के बोल भी हैं, बोलो बोलो, बिंदास होके बोलिए और एंजॉय कीजिए म्यूजिक आकाशवाणी रेनबो पर।

0: राजीव कपूर अभिनेता इस फिल्म में थे। बहुत ज्यादा उन्होंने फिल्में नहीं की, लेकिन दिस इज वन ऑफ हिज फिल्म्स। खैर, शब्बीर कुमार साहब की एक बेहतरीन आवाज में आपने गाना सुना। यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, लौट के आते हैं। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। आप सुन रहे हैं बिंदास बोल। मैसेज करने के लिए नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 9868107070। दैट्स 9868107070। इस पर व्हाट्सएप कीजिए अपना मैसेज, जुड़ जाइए आकाशवाणी के संग।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली।

0: स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो

0: जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बिंदास बोल। ये कार्यक्रम जो महीने के तीसरे शुक्रवार को आता है, जहां पर आप अपनी बात रखते हैं, आपको कौन से प्रोग्राम्स पसंद हैं, कौन से प्रोग्राम्स में आप क्या चेंजेस चाहते हैं, या कोई अगर शिकायत है तो वो भी आप बिंदास होके लिखते हैं, ईमेल करते हैं। ईमेल के लिए हमारा एड्रेस है feedback@gmail.com। एक दिस इज़ वन वर्ड, feedback@gmail.com। तो इस पर आप हमें ईमेल करिए, और उसके अलावा मैसेज करने के लिए तो नंबर मैं आपको कई दफ़ा बता ही चुका हूँ। और पटियाला से हमारे पास मैसेज आया है जी एस गिल साहब का, लिखते हैं कि इन्हें प्लेट कूल और प्रोग्राम अच्छा लगता है, उसके अलावा इन्हें लिपिका मैम, प्रियंका मैम, हरप्रीत कौर मैम भी बहुत अच्छे शोज लेकर आती हैं। राइट, थैंक यू सो वेरी मच गिल साहब। और भारती मैम का मैसेज वाला शो अच्छा लगता है। अनुभव ने लिखा है बिहार से। इसके अलावा बड़े सारे मैसेज हैं। मनमोहन सिंह लिख रहे हैं यूपी रामपुर से, और मंडवा हसनपुर गांव से लिखते हैं बिंदास बोल प्रोग्राम में, कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बात से बने बात प्रोग्राम दोबारा चालू किया जाए, और सभी आरजे अपना काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन एक गीता मैम से थोड़ी सी शिकायत है। वो मेरे वाला सॉन्ग प्रोग्राम में मेरा गाना प्ले नहीं करती हैं, और ना ही मेरा नाम ऑन एयर करती हैं, काफ़ी बार मैंने देखा है। ओके मनमोहन जी, ऐसा रहा होगा, हो जाता है, क्योंकि आप जैसे इस समय स्क्रीन पे मैं मैसेज देख रहा हूँ, एक के बाद एक ताबड़तोड़ डांस करते हुए मैसेजेस आ रहे हैं, और ऐसे में ना कई दफ़ा मैसेज नहीं आपको मिल पाता, और एक कार्यक्रम में समय की पाबंदी की वजह से सभी मैसेजेस को पढ़ पाना मुश्किल होता है, या यूं भी कह सकते हैं मुमकिन नहीं होता है। तो चांस की बात है आपके कुछ एक प्रोग्राम्स में आपका नाम या गाना शामिल नहीं हुआ, लेकिन दिल छोटा ना करें, आप कोशिश लगातार करते रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि एक तबीयत से एक पत्थर तो उछालो आसमान में, है ना, ऐसा कुछ कहते हैं ना, कि मतलब इट्स अबाउट कीपिंग योर होराइजन बिग, यानी जिस तरह से आप जुड़े आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, कि आप प्रयास करते रहिए, किसी दिन आपका प्रोग्राम में मैसेज भी लिया जाएगा और आपका गाना भी बजाया जाएगा।

टू स्टेट से आपने गाना सुना मस्त मगन, और ऐसे ही मस्त मगन होके हमारे सभी आरजेज, हमारे सभी प्रस्तुतकर्ता और जितने भी हमारे डिजाइनिंग के लिए जितनी भी टीम बैठी है, इंजीनियरिंग टीम बैठी है, या फिर हमारे जितने भी अफसर लोग बैठे हैं जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं या फिर किस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनका पूरा समर्पण रहता है कार्यक्रम्स प्रोग्राम्स के प्रति, कार्यक्रमों के प्रति। और इसी तरह से आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस और ईमेल की हम राह देखते रहते हैं। जैसे सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, अनसिमरन मुखी ने शांतिनगर सोनीपत से लिखा है। इन्होंने मैसेज भी बाकायदा मुझे ये रिमाइंड करने के लिए अभी 4 मिनट पहले मैसेज भी किया कि हमने मेल किए हैं और आपने अभी तक नहीं लिया, तो लीजिए आपकी बात हम पूरी कर देते हैं। आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम जी आपको। और कार्यक्रम बिंदास बोल को दो प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। हम इतनी मेहनत से विस्तार से कार्यक्रमों के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, लेकिन गीतों के कारण हमारी सारी प्रतिक्रिया शामिल या विस्तार से शामिल नहीं हो पाती है। कार्यक्रम में गीत एक दो ही शामिल करें, और क्योंकि गीत बजाने ना तो ज़रूरी है और ना ही आपकी मजबूरी है और पूर्ण विश्वास है आप हमारे इस अनुरोध पर ज़रूर ध्यान देंगे। कोटि कोटि धन्यवाद। अब देखिए, जैसे ही मैं कहूँगा ना, चलो मैंने आपकी बात मान ली, मैं दो ही गाने बजाऊँगा, मैं सारी बातें करूँगा, तो बाकी लोग थोड़े से नाराज़ हो जाएंगे। देखिए, एक समय में हमें 10-20 लाख लोग सुन रहे होते हैं, ऐसा मुझे कभी पहले पता चला था, हो सकता है करोड़ों की संख्या में भी सुन रहे हों, तो इतने सारे लोगों को एक साथ खुश रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इट्स एन इन्फोटेनमेंट चैनल जहाँ पर इंफॉर्मेशन भी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी चाहिए, और गानों से बेहतर एंटरटेनमेंट तो आपको कौन ही दे सकता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, इस कार्यक्रम में जितना समय हो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस लें, आपके ईमेल्स लें, हमारा कोशिश रहती है। मोनिका देहरादून से लिखती हैं, गुड हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मुझे तो सारी आरजेस का बोलने का अंदाज सबसे प्यारा लगता है, हमारी सुबह एफएम रेनबो से होती है और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली के और दिल के तराने, वाह ये भी ऐसे भी हो सकता है, दिल्ली के तराने दिल के तराने गाने नए पुराने, हेलो डॉक्टर और मैसेज मसाला, ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद है और उनके लिए मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ। बाकी मुझे निखिल सर की आवाज़ बहुत पसंद है, आपकी आवाज़ भी उनसे बहुत मिलती है, मोनिका देहरादून से लिखती हैं। वाह, थैंक यू सो वेरी मच। तो आप इसी तरह से आगे भी जुड़े रहें और बाकी आरजेस को भी सुनते रहें, ये हमारी आपसे उम्मीद रहेगी। सर, मैं मनीष खाटी हूं और मैं तहसील बहवारा, ज़िला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। मुझे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वास्थ्य पर आधारित होता है, इसलिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें बहुत से आपको रोगों के रोकथाम के बारे में या फिर डॉक्टरों से बहुत सी सलाह मशवरा, बहुत सी जानकारी मिलती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके बहुत काम आ सकती है। सत्येंद्र मौर्य लिख रहे हैं दिल्ली से, करण विहार से, और ये एक फिल्म का गाना सुनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं 1:43 पर। तो यानी आप अभी अभी जुड़े हैं, आज मेरे वाला सॉन्ग नहीं चल रहा है, इसका क्या कारण है? वो कारण ये है कि महीने के तीसरे शुक्रवार को वो कार्यक्रम नहीं आता है, कार्यक्रम आता है बिंदास बोल जो इस समय आप सुन रहे हैं।

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में जिसका नाम है बिंदास बोल। मैं हूं आपके साथ रंजन, और हमारे पास एक ईमेल और आई हुई है विनय विजय कुमार नामदेव की दिल्ली से, और लिखते हैं नमस्ते जी, 21 जून का और कार्यक्रम चंद्रानी मुखर्जी द्वारा बहुत अच्छा लगा, और इसके अलावा योग डे, फादर्स डे और म्यूजिक डे, ये सारे ही कार्यक्रम कमाल धमाल धमाकेदार प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स और म्यूजिक मस्ती जिन्होंने प्रेजेंट किया, और मसाला मैसेज मसाला मिक्स योग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी, और इसके अलावा एक गाना सुनाया था लगन लगी सॉन्ग जो हमने पहली बार सुना तो दिल को छू गया, और सभी मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम और म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में चुन चुन कर कमाल धमाल के सॉन्ग सुनाए जो सभी हमको बहुत पसंद हैं। उनका गला भी ख़राब था फिर भी इतना अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंट किया, उसके लिए चंद्रानी मुखर्जी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और रेनबो की पूरी टीम को भी हमारी तरफ से थैंक्स। जय माता दी। आगे लिखते हैं विजय कुमार नामदेव। तो विजय कुमार जी, आपकी ईमेल हमारे पास पहुंची, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इतनी प्यारी बातें हमारे प्रेजेंटर्स के लिए लिखी और अपनी बात हम तक पहुंचाई, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे कार्यक्रम भी पसंद आ रहे हैं। स्पेशली आप शाम के समय के श्रोता हैं जो 6 बजे से 7 बजे सुनते हैं मैसेज मसाला मिक्स, और 8 बजे म्यूज़िक मस्ती, आई थिंक वो उसी वक्त आता है तो दिन वाले प्रोग्राम्स आप शायद व्यस्तता के कारण नहीं सुन पा रहे होंगे। शो बहुत अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, डॉली ने एक बार फिर से मैसेज किया है। इसके अलावा गुड आफ्टरनून लिखते हैं, कह रहे हैं आपके हर कार्यक्रम को बहुत अच्छा लगता है और मैं नियमित सुनता हूं, नाम आप अपना क्यों नहीं लिखते, नाम आपका पिछले मैसेज में जो लिखा है। बागेश गोरखपुर यूपी से, बागेश्वर निषाद, राइट, तो हर मैसेज के साथ नाम लिखा करें जनाब, इतना समय नहीं होता है और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। उमेश कुमार का खयाला से मैसेज आया है, नमस्ते, प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं लेकिन मैसेज शामिल ना करके प्रोग्राम का मज़ा किरकिरा कर देते हैं, बॉलीवुड ट्रेल्स में रंजन जी तो 1-2 मैसेज ही शामिल करते हैं। ओके, आपका नाम है उमेश कुमार, कौन से मैसेज शामिल करने के लिए आप कह रहे हैं? बॉलीवुड ट्रेल्स में थोड़ा क्लैरिटी के साथ बोलिए ना, 1-2 कौन सा मैसेज? बॉलीवुड ट्रेल्स में हम जो सरताज बनाते हैं ना सर, उसके अंदर क्या होता है कि एक ही को बना सकते हैं, तो बाकी सब जिन्होंने अगर सही जवाब भी दें तो सबके अगर हम नाम लेने लग जाएंगे तो फिर जिनको सरताज बनाया उनमें और जो नहीं बने उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा खैर, आप सुन रहे हैं बिंदास बोल, आपकी बात बहुत अच्छी लगी, इसी तरह से बिंदास मैसेजेस करते रहिए। समय अब ज़्यादा नहीं है, मेरे ऑलमोस्ट जाने का समय हो गया, लेकिन फिर भी कुछ मैसेजेस साथ साथ दूंगा। दिवेंद्र इंगती लिखते हैं कार्बी एंगलोंग असम से, FM रेनबो में एक से बढ़कर एक आरजे हैं और प्रोग्राम भी एक से बढ़कर एक आता है। सभी आरजे से एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल से दिल तक सुनता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच।

जी अब हम आप लाख रोके हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब हमें जाना है। अगला कार्यक्रम आशियाना लेकर श्वेता हाजिर हैं स्टूडियो में, तो रंजन को दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात इन्हीं एयरवेव्स पर। बिंदास बोल में मेल लिखने के लिए एक बार फिर से ईमेल नोट कर लीजिए, feedback@fmrainbow@gmail.com। फिलहाल आपसे होगी मुलाकात, जब तक मिले तब तक रहिए खुश और सुनते रहिए एफएम रेनबो। टेक केयर, बिंदास बोल, दिल खोल, जी ले जरा।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर अब समय है इस वक्त के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को रवाना किया। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशन के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह से आज पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर, जहां वो बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 75 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री केंजरापू अचनाडू ने आज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फ्लूक्लोर वर्जीनिया FCV तंबाकू की खरीद की प्रगति की समीक्षा की। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा जारी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देशन दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज़ जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती ना की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की। जापान ओपन बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु वॉक ओवर मिलने से सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार। जुड़े रहिए रेनबो के साथ। प्रोग्राम शुरू होने वाला है आशियाना।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी में ये वाणी जो अभी आप सुन रहे हैं वो है मस्त मलंग आरजे श्वेता की वाणी। प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ आपके लिए आशियाना और

आज आशियाना में मैं आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आई हूँ? हाँ जी, पता है आज क्या है? आज है शुक्रवार, और शुक्रवार होता है घूमने फिरने का दिन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में पूरे भारत में कहाँ कौन सा ऐसा ड्रिंक होता है या ऐसा पेय पदार्थ होता है जिसकी वजह से हमें गर्मी में भी राहत मिलती है? तो चलिए, आज घुमाऊंगी भारत के उन स्टेट्स की ड्रिंक्स के बारे में, और उनके बारे में बताऊंगी भी कि आखिर वो पीने के बाद आप क्यों ठंडक महसूस कर सकते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, छाछ उनमें से एक है। उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसे पेय पदार्थ हैं वो बताने के लिए बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा सुनने के लिए।

और ऐसा ही कहना ही क्या उन भारतीय पेयों का, और मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे कई पारंपरिक और ताजगी भरे ड्रिंक्स बनते हैं और पिए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से तो ठंडक रखते ही हैं, स्वाद में भी इतने लाजवाब होते हैं कि बस दिल करता है कि वाह एक के बाद एक गिलास पिए चले जाएं। भारत की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए हमारे यहाँ कई सारे ऐसे पारंपरिक और ताजगी भरे ड्रिंक्स हैं, जिनके बारे में आज हम करने वाले हैं एक छोटा सा सफर। सफर क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज सिर्फ एक स्टेट के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, आज आपको भारत के कई स्टेट्स के बारे में बताऊंगी कि आखिर वहाँ पर गर्मियों में ऐसा कौन सा पारंपरिक ड्रिंक पिया जाता है। जानती हूँ नींबू पानी, मसाला छाछ और आम पन्ना सबसे ज्यादा फेमस है, पर पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह के बेहतरीन समर ड्रिंक्स का आनंद तो लिया जाता ही है। यहाँ कुछ सबसे खास और इतने अच्छे ड्रिंक्स की आपके पास मैं लिस्ट लेकर आई हूँ ना कि आप भी कहेंगे क्या बात है, हमारा भारत तो कितना रिच है हर एक मामले में। हाँ जी, आम पन्ना। आम पन्ना ये कच्चे आम, पुदीना और जीरे से बनता है, जो लू यानी कि हीट स्ट्रोक से तो बचाता ही है और पेट को भी ठंडा रखता है। वहीं मसाला छाछ यानी कि मट्ठा, हाँ कई कई जगह से मट्ठा कहा जाता है, स्पेशली पंजाब में, ये पाचन तो दुरुस्त रखने और शरीर को एकदम से हाइड्रेट करने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। बिहार और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में जाएं, वहाँ के स्टेट्स में जाएं, तो सत्तू का शरबत, शरबत मैंने कहा शरबत इसीलिए क्योंकि वहाँ इसको इसी नाम से बुलाया जाता है, सत्तू का शरबत। हाँ जी, शरबत होता है और ये शरबत जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ये भुने हुए चने से बनाया जाता है, जो एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देता है और पेट को भरा भरा रखता है। तभी देखिए ना वहाँ पर कितनी गर्मी हो, चाहे बिहार की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, लेकिन जैसे ही गर्मी में बाहर निकलने वाले होते हैं तो घर से पहले ही एक गिलास सत्तू का शरबत सत्तू का शरबत पी के निकलते हैं। और ये जो दिल है ना, ये एक छोटी सी आशा हमेशा बनाए रखता है कि ऐसे खाने पीने की चीज़ें हमारे भारत में हर जगह मिलती है, तो क्यों ना अगर हम जिस स्टेट में रहते हैं वहीं पे मिल जाए तो। पर कोई बात नहीं, थोड़ा घूमने का भी तो आनंद लीजिए। दिल्ली और NCR से बाहर ज़रा निकलिए, पूरे भारत को घूमिए, इसी बहाने घूमिए कि चलिए वहाँ के खाने पीने को भी ट्राई करें।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना

0: निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: FM रेनबो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मस्त पलंग आरजी श्वेता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और आशियाना में आज मैं आपको घुमा रही हूँ कुछ ऐसे ऐसे स्टेट्स भारत के जहाँ पर आपको गर्मियों के लिए स्पेशल ड्रिंक्स मिल जाते हैं, जो आपको गर्मी में एकदम से ताजगी देते हैं। और यहाँ के ये पारंपरिक ड्रिंक्स होते हैं, बिल्कुल भारत में, मतलब शायद दुनिया का इकलौता देश है जहाँ लगभग हर राज्य का अपना एक खास ग्रीष्मकालीन पेय है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से ही यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो इसी वजह से राहत पाने के लिए अपना अपना शरबत या शीतल पेय होता था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर स्टेट का अपना अपना ये शीतल पेय क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की अपनी वनस्पतियाँ, वहाँ की अपनी जलवायु, वहाँ के रीति रिवाज, इन सब से जुड़ा हुआ होता है वहाँ का ये स्पेशल ड्रिंक। चलिए दक्षिण की तरफ आपको लेके चलती हूँ। दक्षिण भारत में पारंपरिक ग्रीष्म ऋतु के पेय पदार्थों की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर नन्नारी शरबत होता है, जो भारतीय सरस परिला से बना एक ठंडा ड्रिंक होता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा फेमस है गुलाब का दूध और गुलाब का शरबत। और वहीं चेन्नई से बेंगलुरु तक शहरी शरबत की दुकानों पर खूब बिकते हैं। और पानागम, गुड़, अदरक, इलायची से बना ये एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक होता है, ठंडा ठंडा ड्रिंक होता है। राम नवमी का प्रसाद पेय भी है ये, बिल्कुल राम नवमी को ये एक तरह से प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। और मसालेदार छाछ दक्षिण भारत के हर घर में दोपहर के खाने के बाद एक तो मतलब बहुत ही अभिन्न अंग है, वो तो लेना ही मस्ट है।

चलिए लिए चलती हूँ आपको बंगाल और उसके आसपास के स्टेट की तरफ। बंगाल और उसके पूर्वी क्षेत्र में अपनी अलग ही शैली है, पता है, बेल शरबत जो ठंडी बेल से बनता है और कलकत्ता की गर्मियों का एक क्लासिक ड्रिंक है, गोंदोराज लेम्बू। हाँ, ये नाम बड़ा सुना सुना सा लगता है ना। एक बहुत ही खुशबूदार देसी नींबू होता है और एक खुशबूदार एकदम शीतल ठंडे ठंडे ड्रिंक में बदल जाता है, जिसे कोलकाता के घरों में धार्मिक महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ आम पोरा शरबत जो होता है वो भुने हुए कच्चे आम से बनता है, जो आम पन्ना का ही एक धुएंदार रूप है। और यहाँ पर इन ऐसे ऐसे पेय परोसे जाते हैं, ड्रिंक परोसे जाते हैं, जिनका स्वाद इतना सुगंधित होता है कि अन्य जो जगह हैं, जो अलग अलग जगह हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ ऐसा स्वाद कहीं पर भी नहीं मिल पाता है।

वैसे कभी आपने अनसुना सा सुना ही होगा वैसे ये कि चाय से भी थोड़ी गर्मी मरती है। कश्मीर की बात करूँ तो दोपहर की चाय उल्टी, शीर चाय ठंडी। हाँ जी, ये ही है कश्मीर की गर्मियों की जो ड्रिंक है, वो संस्कृत सूक्ष्म है। और वहाँ की जो फेमस गुलाबी दोपहर की चाय है, जुलाई में ठंडी परोसी जाती है, जबकि यखनी से बनी छाछ के पेय जो है वो गर्म महीनों में दिखाई देते हैं। ये शरबत की परंपरा से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट ठंडे पेय की परंपरा है, जो इस बात की याद दिलाती है कि भारत में यहाँ पर समर में एक अलग ही आपको अंदाज देखने को मिल जाएगा, हर एक क्षेत्र में अलग अलग। मध्य भारत की बात करूँ तो वहाँ सत्तू शरबत और बेलपत्र का कूल मिलता है। और अब बात करते हैं भाई उत्तर भारत में, हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठंडाई है, खस शरबत है, शिकंजवी है। उत्तर भारत में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दिल्ली का भी मशहूर गुलाब और जड़ी बूटियों से बना सिरप, वो भी आपको बहुत मिल जाएगा। दूध और पानी के साथ गुलाबी रंग में रंग कर एक अनोखा ही पेय बन जाता है। इलायची, सौंफ और बादाम से बना एक ठंडा पेय होता है जो होली में अधिकतर बनता है, लेकिन उसे गर्मियों में भी ज़रूर पीते हैं। खस शरबत की बात करूं तो खस की जड़ों से बनता है और एक गहरा हरा रंग क्लासिक ड्रिंक है जो ठंडक देता है। जीरा, सेंधा नमक से बना पंजाबी नींबू पानी शिकंजवी, ये कैसे हम भूल सकते हैं। भारत में मिलने वाले शरबतों की सूची में अकेले उत्तर भारत ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रोग्राम का टाइम कम रह जाएगा लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि हमारे पास फिर इसके थोड़ी देर में ही होगा स्पॉन्सर प्रोग्राम 2:30 बजे से। हाँ जी, ये सारे ड्रिंक्स जन्नत दिखा देते हैं, इतनी गर्मी में हमें ठंडा ठंडा कूल कूल कर देते हैं।

आज के आशियाना में बस इतना ही, और अब हमारा वक्त हो गया है हमारे स्पॉन्सर प्रोग्राम का, जो है NCERT से। तो इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए और सुनिए, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
3: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था।

0: और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओ, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी
0: जी।
1: जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
0: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है, जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना, जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओ, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
0: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या, अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिद्धि तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह।

0: धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
2: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
2: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
0: देखो विशाल और शांत महासागर, ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टेथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
2: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
2: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल

0: विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है जिसमें

0: हैं उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
1: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
2: आजा, आजा, आजा।
1: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
3: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
2: अच्छा?
1: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
3: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
1: स्वामीनाथन बोला।
2: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
1: दादी ने पूछा।
3: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
2: अच्छा?
1: दादी काफी प्रभावित हुईं।
2: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
1: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
3: बस काफी है दादी,
1: उसने रूखे स्वर में कहा।
3: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
2: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
1: दादी ने पूछा।
3: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
2: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी।

0: पता है वो मेडल अब कहां है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर चार चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: दो शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया, और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कहते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन क्या हो जब हर कदम दर्द देने लगे। नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेज़बान शिल्पा गुप्ता। ज़रा सोचिए, सुबह बिस्तर से पहला कदम रखने से लेकर दिन भर की भागदौड़ तक हमारे पैर लगातार हमारा साथ निभाते हैं, लेकिन क्या हम भी उनका उतना ही ख्याल रखते हैं। अक्सर पैरों की छोटी मोटी तकलीफ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और यहीं से शुरू हो सकती है बड़ी परेशानी। एड़ी में दर्द, पैरों में सूजन, तलवों में जलन, कॉर्न, फटी एड़ियाँ या नाखूनों की समस्या, सुनने में ये परेशानियाँ आम लग सकती हैं, लेकिन कई बार ये हमारी सेहत से जुड़े दूसरे संकेत भी दे सकती हैं। यही विषय है हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का, कॉमन फूड प्रॉब्लम्स, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: आपका मैम बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए।
1: दोस्तों, हमारे कार्यक्रम फ़ोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342108023421082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे कॉमन फूड प्रॉब्लम्स पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अक्सर पैर दर्द करे तो हम कहते हैं थोड़ा आराम कर लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या हर दर्द आम है? पैरों से जुड़ी आम समस्याएँ आखिर कौन कौन सी हैं?
2: जी, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि अगर पैरों में दर्द हो तो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये अक्सर सब लोग ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा कुछ केसेस में तो ठीक होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर 50 प्लस ईयर्स के पेशेंट्स हैं या 60 प्लस ईयर्स के पेशेंट्स हैं, तो उनमें ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उनकी मसल्स एज के हिसाब से वीक हो जाती हैं, उनकी बॉडी का भार उतना नहीं ले पाती हैं, तो वॉकिंग के टाइम पर, स्टैंडिंग के टाइम पर अक्सर ऐसा होता है कि पैर दर्द करने लगते हैं। लेकिन उससे ब्लो एज के ईयर, जैसे कि कोई 30 साल का है या 40 साल का है, अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और पर्सन इनको अवॉइड करते हैं रेस्ट करके। जब पर्सन रेस्ट करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं तो उनका बॉडी का वेट गेन होने लगता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ने लगती हैं।
1: लेकिन कई बार हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि एड़ी में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी कोई वजह होती है या?
2: हाँ, एड़ी में दर्द कई प्रकार के हो सकते हैं और वो आते भी हैं, मतलब ज़्यादा स्टैंडिंग या ज़्यादा वॉकिंग की वजह से आ जाते हैं। तो अक्सर जो एड़ी में दर्द होते हैं वो जैसे हील स्पर हो गया, प्लांटर फेसाइटिस हो गया, एक्लियस टेंडन हो गया, तो कई सारे टाइप के होते हैं। वो अक्सर रेस्ट के हिसाब से चले भी जाते हैं और कभी कभी वो बहुत सीवियर बढ़ भी जाते हैं।
1: तो जैसे कि अभी आपने कहा प्लांटर फेसाइटिस और हील स्पर, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है?

0: प्लांटर
1: है क्या?
0: या प्लांटर फैसिलिटीज और हील स्पर में काफ़ी डिफरेंस है, और लोग ये मुझसे पूछते भी हैं जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं कि हमें प्लांटर फैसिलिटी से हील स्पर है, वो कंफ्यूज रहते हैं ऐसे केसेस में। तो मैं बता दूं कि प्लांटर फैसिलिटीज एक ऐसा प्लांटर फेसिया है जो हमारे हील की तरफ से ओरिजिनेट होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है और फिंगर की तरफ वो रन करता है। तो प्लांटर फेसिया के केस में होता है कि जो फेसिया होता है हमारा थिक हो जाता है, और जिसकी वजह से कि हमें जब भी हम पैर वजन डालते हैं एड़ी पे तो हमें पेनफुल होता है। और इसी के बाद दूसरा पॉइंट है हमारा हील स्पर का। हील स्पर के केस में क्या होता है, जो हमारी एड़ी की बोन होती है, जो हड्डी होती है, वो कैल्केनियल बोन होती है, तो उसका बढ़ जाना, वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो अक्सर हील स्पर के केस में पर्सन जब सुबह सो के उठते हैं तो उस टाइम पे वो पेन फील करते हैं। इनिशियल के 5-6 स्टेप या 10 स्टेप उनके पेनफुल होते हैं, आफ्टर 10 स्टेप वो फिर पेन उनका अवॉइड हो जाता है। तो उनको लगता है कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, मुझे पेन नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो फिर रेस्ट करेंगे 1-2 घंटे के लिए, वो फिर पेन वैसे ही आता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्लांटर फैसाइटिस में पूरा दिन आप पेन फील करेंगे, हील स्पर के केस में सिर्फ मॉर्निंग में, तो उसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं।
1: तो इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है?
0: हाँ, ये बिल्कुल सही है मैम। इसका ट्रीटमेंट पहले तो हमारे यहाँ इंडिया में सब लोग होम रेमेडी लेते हैं ज़्यादातर, है ना। तो जब होम रेमेडी से काम नहीं बनता है तब वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने पास में कोई भी अच्छा डॉक्टर, जो पोडाइट्रिस्ट हो या कोई भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो, उनके पास में जाके कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे कितने टाइम से पेन आ रहा है और ये किस चीज़ का पेन हो सकता है। फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जनरली तो सबसे पहले हमें अपनी फुटवेयर वगैरह ही चेंज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेशर की वजह से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं और उससे ही हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं।
1: कई बार होता है जो डायबिटिक होते हैं उनको भी पैरों में दर्द की प्रॉब्लम होती है या पैर सुन हो जाते हैं, तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट करें?
0: डायबिटिक के केसों में तो ये बहुत आम है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि भाई हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमें थोड़ा भी पेन लग रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अपने पास में किसी भी, और हमें खास तौर से ध्यान देना चाहिए कहीं हमारे पैरों में स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, या हमारे नेल्स ब्लैक या ब्लू तो नहीं पड़ रहे हैं, या हमारी जो फुट की स्किन है वो ब्लू तो नहीं हो रही है, ब्लैक तो नहीं हो रही है, और कोई भी स्कार या कोई भी ब्लिस्टर हमारे पैर में अगर है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी स्कार या अल्सर अगर 24 से 48 घंटे में उसका इम्प्रूवमेंट स्टार्ट नहीं होता है तो हमें इमिडिएटली किसी भी अपने पास के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के केस में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कंसल्ट करना।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं पैरों की आम समस्याओं पर। इस पर बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: चार कदम बस चल दो ना साथ मेरे। ये गाना सुनकर वैसे ही चलने का मन हो गया, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हम अपने पैरों का ध्यान रखें। हम बात कर रहे थे कि हम डायबिटीज़ में कैसे अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो, शायद कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ का पैरों पर क्या असर पड़ता है, और उनके लिए एक छोटी सी फुट इंजरी भी इतनी डेंजरस क्यों हो जाती है डायबिटिक में?
1: डायबिटिक के केस में मैम ऐसा होता है कि कोई भी अगर फुट इंजरी हुई है तो इसको हील होने में काफ़ी टाइम लग जाता है ना। उसी को हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसीलिए हमें अपने जब भी अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसको काफ़ी ध्यान से पैरों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का एंटायर बॉडी वेट हमारे फुट पे होता है। और जैसे ही डायबिटिक के केस में अगर वॉकिंग भी थोड़ी हम रोकते हैं या अगर पर्सन रेस्ट ले लेता है तो उस केस में उनके लिए काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर छोटा सा भी कोई अल्सर या कोई ब्लिस्टर या कोई चोट भी लगी है तो उसका बहुत केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना होता है कि यह हमारा हीलिंग स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। 24 से 48 घंटे का टाइम हम मानते हैं कि अगर हीलिंग स्टार्ट हो जाता है उस पीरियड में तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो फिर हमें वो डॉक्टर के पास में अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर के पास में जाके कंसल्ट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए।
0: तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो डेली रूटीन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए डेली रूटीन में?
1: जी बिल्कुल, ऐसा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अपने पैरों को डेली की दिन में 2 से 3 बार अगर पॉसिबल है तो वॉश करना चाहिए और कॉटन टॉवल से उनको क्लीन करना चाहिए। और स्पेशली ध्यान रखें कि कोई भी स्कार या कोई भी ब्लिस्टर वहाँ पे नहीं है होना चाहिए, और एक नरम फुटवेयर पहनना चाहिए, ना कि हार्ड फुटवेयर, टाइट तो बिल्कुल ना हो उनके लिए, और उनकी वॉकिंग एक लिमिटेड होनी चाहिए अगर किसी को सीवियर डायबिटीज़ है तो। जी
0: अच्छा, कई बार कहते हैं कि जो डायबिटिक होते हैं तो उनको बेयर फुट चलने में भी प्रॉब्लम होती है।
1: हाँ ऐसा होता है, क्योंकि डायबिटिक के केस में इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहता है पैरों में और इंजरी के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि आप जितना हो सकता है कवर शूज या सॉफ्ट फुटवेयर पहन के वॉक करो, ना कि वेयर फुट। अगर वेयर फुट वो मतलब वॉक करते हैं तो इंजरी होने के रिक्स काफ़ी हो जाते हैं।
0: या फिर सॉक्स भी, अगर घर में या कहीं मंदिर वगैरह में जा रहे हैं तो सॉक्स भी पहन सकते हैं।
1: सॉक्स पहन सकते हैं, उन्हें कॉटन सॉक्स होते हैं और डायबिटिक सॉक्स भी आते हैं, वो भी पहन सकते हैं।
0: वो डिफरेंट होते हैं।
1: वो डिफरेंट होते हैं।
0: क्या डिफरेंस होता है?
1: डायबिटिक सॉक्स में क्या होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखते हैं, उनके अंदर थोड़ा कंप्रेशन होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से टूवर्ड्स हार्ट्स ईजिली फ्लो हो पाए।
0: इस पर बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं उमेश बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। डॉक्टर साहब को नमस्कार मेरा।
1: नमस्कार सर
0: जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: डॉक्टर साहब मेरे पैरों में जलन रहती है
1: जी,
2: और तेल की मालिश करने से थोड़ा आराम लग जाता था पहले, अब नहीं लगता, ये किस कारण होती है, इसका क्या इलाज है, कृपया प्लीज बताइए।
1: देखिए पैरों में जलन एक आम समस्या है और काफ़ी लोग इस समस्या से परेशान हैं, है ना। और ये इसमें जनरली जो 30 से 35 साल के ऊपर के लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, ये जनरली इसलिए हो जाती है कि जो पर्सन के लॉन्ग स्टैंडिंग और लॉन्ग वॉकिंग होता है तो उन लोगों में अक्सर प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो

0: केसेस में, जैसे सर ने बताया है कि सरसों के तेल की मालिश करते हैं, तो मालिश तो ठीक है लेकिन उसका वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। उनको अपने पास में, नज़दीकी पास में एक पोडाइट्रिस्ट के पास जाके अपनी पूरी हिस्ट्री बताने की ज़रूरत है, सो दैट कि वो उनका ट्रीटमेंट प्लान कर सके, तब उनको रिलीफ मिलेगा आपको। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी मालिश से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो ये इसका प्रॉपर इलाज नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि जलन की उन्होंने बात करी तो एक मैसेज भी हमारे पास, ये भी यही पूछ रहे हैं, ये लिख रहे हैं, आई एम अमर रमेश कुमार खत्री चाने सर गोद कराची से। इनका क्वेश्चन है, मेरे फुट में गर्मी के मौसम में जलन रहती है, इसका क्या रीज़न है और क्या ट्रीटमेंट है, बता दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। इनके भी यही है, लेकिन कह रहे हैं गर्मी के मौसम में।
0: इनका भी सेम, गर्मी के मौसम में क्या होता है, स्वेटनिंग ज़्यादा होती है और जो पर्सन होते हैं वो शूज़ ज़्यादा कैरी करते हैं, तो जब हमने बताया अभी कि ओवर यूज़ ऑफ मसल्स, अगर हम ज़्यादा टाइम तक स्टैंड कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक वॉक कर रहे हैं, तो स्वेटनिंग होती है और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका इलाज ये नहीं है कि हम मालिश करा लें या हम रेस्ट कर लें। बर्निंग सेंसेशन इसको बोलते हैं जनरली, जो प्लांटर सब हमारे फुट के नीचे आ जाती है। तो सबसे पहले तो इसका इलाज यही है कि आप अपने पोडाइट्रिस्ट को जाके ये प्रॉब्लम बताएं, वो आपके फुट के अकॉर्डिंग एक इंसॉल बना के देंगे, जिसे हम कस्टमाइज इंसॉल ऑर्थोटिक्स बोलते हैं, तो शूज़ के अंदर डाल के पहने, जिससे कि जो मसल्स की हीट है वो ऑब्जर्व कर लेगा। उसके अंदर मेडिकेटेड मटेरियल्स होते हैं, जो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको फुट में जलन है उनके लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है ट्रीटमेंट लेना, और बड़े आराम से वो ठीक हो सकते हैं। पर मसाज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है इस टाइप के पेशेंट्स के लिए, अपने पैर के हिसाब से अपना एक इंसॉल बनाए, उसको शूज़ के अंदर डाल के पहने, वो स्वेटनिंग भी ऑब्जर्व करेगा और बर्निंग को भी कम करेगा।
1: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हाँ जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी मेरा नाम अब्दुल मुख्तियार है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, खजूरी से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: जी मेरा सवाल यही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जी मेरी मम्मी के ना जोड़ों में और घुटनों में बहुत दर्द रहता है, हमेशा रहता है, सर्दियों में ज्यादा होता है और गर्मियों में कम हो जाता है, लेकिन इनका दर्द कभी खत्म नहीं होता, इसका क्या, आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तब ये डायबिटीज हो सकती है क्या?
0: नहीं, ये जो आपकी समस्या है वो डायबिटीज़ की समस्या नहीं है, समस्या नहीं है, ये समस्या है आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, इसे हम गठिया बा बोलते हैं, जो हमारे हाथ के पैरों की उंगलियों में दर्द होता है या हमारे घुटनों में दर्द होता है। तो सर्दियों के मौसम में अक्सर क्या होता है कि हमारे मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं, हमारी मूवमेंट कम हो जाती है, सर्दियों में हम वॉक कम करते हैं, पानी कम पीते हैं, हम अक्सर गर्माहट में रहना पसंद करते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है, हमारी मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं तो मूवमेंट भी कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ये पेन आना, दर्द होना, ये बहुत स्वाभाविक है, ऐसा आएगा। तो ऐसे एक चीज़ को ठीक करने के लिए रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, आपके आसपास में कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट होंगे आप उनसे जाके कंसल्ट करें, तो वो आपकी इस बारे में ज़रूर मदद कर सकते हैं। थैंक यू
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, आपने बोला था न्यूरोपैथी, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है और पैरों को कैसे प्रभावित करती है?
0: हमने अभी इसके बारे में हमने आपको बताया भी कि ये डायबिटीज़ से रिलेटेड है, इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है डायबिटिक पेशेंट्स को, कि भाई पैरों में ज़्यादा सूजन नहीं आनी चाहिए, सेंसेशन का ध्यान रखना होता है। इस केसेस में क्या होता है, अक्सर पेशेंट का सेंसेशन कम हो जाता है, उनको फील होना, टचिंग फील होना कम हो जाता है, या ठंडे गर्म का एहसास नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए, कि वो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें, अगर सूजन आ रही है या आपको कुछ भी ऐसा ठंडे या गर्म का एहसास नहीं हो रहा है या आपका सुन्नपन बढ़ रहा है, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। डायबिटिक डायबिटीज़ के डॉक्टर होते हैं, उन्हें हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो उनको प्रॉपर जाके अपनी हिस्ट्री बताएं और इस बारे में उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर फुट में अल्सर आ रहा है या वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप पोडाइट्रिस्ट के पास जाइए। कि
1: जैसे कि आप डायबिटिक्स में भी आपने बताया कि पैरों की कैसे करने, कौन भी एक आम समस्या है पैरों की?
0: मैम, कौन तो एक बहुत कॉमन चीज़ है, सब लोग इस चीज़ से मुझे लगता है काफ़ी परेशान हैं, और हमने भी पिछले एक साल में काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट्स कौन के देखे हैं।
1: तो जैसे कौन और वॉट, इसमें भी लोग काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, क्या डिफरेंस है?
0: कन्फ्यूज रहते हैं। वॉट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ओवर प्रेशर की वजह से हल्का हल्का हमारा एक दाना बनने लगता है, हार्ड स्किन होने लगती है, तो उसको हम वॉट बोलते हैं। और वही ओवर प्रेशर कंटिन्यूस रहता है तो वो कॉर्न में कन्वर्ट होता है, जो कि काफ़ी पेनफुल हो जाता है। तो पेनफुल हो जाता है तो हम उसे कॉर्न बोलते हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास में ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि हमने ये ऑपरेट कराया है या हम 3-4 बार इसको ऑपरेट करा चुके हैं, पर ये कॉर्न बार बार आ जाता है। तो वो बार बार आ जाएगा, वो स्वाभाविक है आना, क्योंकि वहाँ से उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा प्रेशर नहीं हटा है। जब तक वो प्रेशर उस एरिया से नहीं हटेगा तो कॉर्न ठीक नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो उसके लिए उस प्रेशर को हटाना बहुत ज़रूरी है, और वो हट सकता है तभी तब आप एक प्रॉपर ऑर्थोटिक्स अपने शूज़ के अंदर पहने, अपने पोडाइट्रिस्ट को कंसल्ट करें, वो चेक करेंगे कि उस पॉइंट पे कितना प्रेशर आ रहा है और हमें कितना प्रेशर वहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत है जी, तब वो हमारा कॉर्न्स बड़े आसानी से ठीक हो जाएगा।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मेरे फुट में थंब के नीचे बोन बाहर की साइड आ गई है जिससे ब्यूनियन बोलते हैं, 1 मंथ बहुत दर्द रहा। इससे पहले विंटर में मैंने पूरे टाइम बंद शूज़ पहने थे, क्या ये उस वजह से हुआ? अब आराम है, हड्डी बाहर आ गई है, मुझे कैसे फुटवियर यूज़ करने चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन इनका यह है, मेरी सिस्टर 72 साल की है, पैर की फिंगर सुन हो जाती है, क्या करें? सरोज मल्होत्रा, साकेत, मेरठ।
0: जी, ये उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बुनियन का। अक्सर ऐसे ओल्डर एज के केस में ऐसा होता है, या यंग एज में भी बुनियन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बुनियन की प्रॉब्लम आने का कारण है कि हमारे जो अंगूठा है आगे वाला, उस पर ओवर प्रेशर आता है। जैसे ही अंगूठे पे वजन ज़्यादा आएगा तो हमारा अंगूठा डेविएट होना स्टार्ट हो जाता है, अंदर की तरफ मुड़ने लगेगा या बाहर की तरफ। बाहर की तरफ अक्सर बुनियन के केस में मुड़ता है और हमारी हड्डी बाहर निकलने लगती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारे जो पैर है वो सीधे न होकर अंदर की तरफ फॉल करते हैं, जो हमारा आर्च है वो लो हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है, समटाइम फ्लैट भी हो सकता है, जिसे हम पट्ट पैर बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में वो बुनियन की प्रॉब्लम बन जाती है, और इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप एक तो कस्टमाइज ऑर्थोटिक्स जितना हो सकता है अपने इंसोल पहने, और शूज़ किस टाइप का पहनना है, शूज़ आपने आगे से जो टो बॉक्स एरिया, जो आगे का पंजे वाला एरिया बोलता है, वो टो बॉक्स एरिया होता है, उसको ब्रॉड होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, और ऊपर जो अपर होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सो दैट कि उस जो बोन उनकी प्रोट्रूड हो गई है उस पर ओवर प्रेशर ना आए। तो नॉर्मल प्रेशर आएगा तो वो पेन फ्री वॉक कर सकते हैं, इस चीज़ का उनको खास तौर से ध्यान रखना है। और उनको लेसेस वाले शूज पहनने हैं तो अपने अकॉर्डिंग टाइट और लूज कर सकें।
1: तो लेसेस विदाउट लेसेस शूज में भी डिफरेंस रहता है,
0: काफी डिफरेंस होता है। विदाउट लेसेस शूज आजकल तो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है
1: जी,
0: है ना, लेसेस इजी
1: टू वियर रहते हैं,
0: इजी टू वियर होते हैं, लेकिन वो 1-2 महीने पहनने के बाद काफी लूज हो जाते हैं, फ्लेक्सीबल हो जाते हैं, उसके अंदर ग्रिप नहीं रहती है। हमारे पैर को तो ग्रिप होना बहुत जरूरी है, अगर ग्रिप नहीं होगी तो हमारा पैर अंदर की तरफ भी गिर सकता है और बाहर की तरफ भी गिरता है। तो 99% चांसेस होते हैं कि हमारे पैर अंदर ही फॉल करता है, और उसी की वजह से हमारा फ्लैटनेस बढ़ती है पैरों में, उसी की वजह से हमारे बुनियन बनते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन तो यही होता है कि आप जितना हो सकता है कि आप फीते वाले शूज़ पहनें, कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग टाइट और लूज़ कर सकते हैं।
1: अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल फैशन के अकॉर्डिंग हम शूज़ में भी है ना, उसमें एक तो आते हैं सॉफ्ट फोम के, एक आते हैं कैनवस, तो हमें उसमें भी किस तरह की सोल लेनी चाहिए?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। जनरली लोग सोचते हैं कि हम बहुत सॉफ्ट कुशन वाला शूज़ लें ताकि आराम रहेगा चलने में, लेकिन वो रियलाइज़ करते हैं कि आराम तो मिलता है जब स्टार्टिंग में लेते हैं और वॉक भी काफ़ी करते हैं, जहां जैसे ही 2-3 महीने 4 महीने निकलते हैं तो उनको और प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि जो उन्होंने सॉफ्ट वाला शूज़ लिया है वो ओवर प्रेशर की वजह से वो दबने लगता है। जब सॉफ्ट है तो दबेगा, उसकी टेंडेंसी है, तो जब दबेगा तो नी पे प्रेशर बढ़ने लगता है। तो हमारे नी पेन काफ़ी कॉमन होता है ऐसे केसेस में, तो जो कि आजकल मार्केट में बहुत सारे सॉफ्ट वाले शूज़ आते हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप सॉफ्ट भी मत पहनिए, आप हार्ड भी मत पहनिए, आप सेमी रिजिड शूज़ पहनिए, ना सॉफ्ट हो ना हार्ड हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो हमारे आर्च के पास जो पोर्शन होता है ना, वो वाइड होना चाहिए, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, ताकि फुट का जो सरफेस एरिया है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो काफ़ी अच्छा हो सके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आर्ट सपोर्ट के चक्कर में, अच्छा सूज के चक्कर में,
1: फैशन
0: वो एरिया ही नैरो कर देते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा एक इशूज़ है। और मेरे हिसाब से लोगों को इस चीज़ के थोड़ा ध्यान रख के शूज़ परचेज करना चाहिए,
1: मतलब हमें सब चीज़ें देखकर फिर अपना शूज़ सेलेक्ट करना चाहिए।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। अगर इसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो आपके आसपास में पॉडियाट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर
1: जी,
0: आप उनको जाके प्रॉपर अपना पैर दिखा के कंसल्ट करके आप पूछ सकते हैं कि भाई हमें किस टाइप का सूज हमारे फुट के लिए सही रहेगा, तो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो,

0: जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, एक बार आप दोबारा लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। उन्होंने जिनका हमारे पास मैसेज था, उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था। उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरी सिस्टर है 72 साल की, उसकी पैर की फिंगर सुन हो जाती है, वो क्या करें?
1: हाँ, ये अक्सर ऐसा होता है कि पैरों में नमनेस की प्रॉब्लम आती है, उंगलियों में नमनेस की प्रॉब्लम आती है, तो जो एज के अकॉर्डिंग हमारी मसल्स वीक होती हैं, तो ये नमनेस हमारी फिंगर्स से नहीं स्टार्ट होती है, हमारी लोअर बैक से स्टार्ट होती है। कहीं ना कहीं उनकी कमर में कोई ना कोई नर्व उनकी सप्रेस हो रखी है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नमनेस फील करती हैं। तो उनको न्यूरो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, पैरों के लिए इतना वो परेशान ना हो, वो वहाँ से ठीक हो जाएगी।
0: जैसे कि हम डायबिटीज़ पे अभी बात कर रहे थे, तो एक मैसेज भी आया है हमारे पास। वो लिखते हैं कसगंज से, मास्टर राधे श्याम साखिया। वो लिखते हैं, नमस्कार जी, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरी तलवों में सुन्नपन और जलन है, घर से स्कूल जाकर वापस आने में पैरों में सूजन आ जाती है और रेस्ट करने के बाद अपने आप समाप्त हो जाती है, मुझे क्या करना चाहिए?
1: ये पैरों की सूजन की समस्या बड़ी कॉमन है, और हम ये सोचते हैं कि हमारे पैरों में ही कोई प्रॉब्लम है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पैरों में ही प्रॉब्लम हो। आपने कहा कि आप जब रेस्ट करते हैं तो आपकी वो इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका वाटर इंटेक कम हो रहा है, हम पानी कम पी रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो थिक हो जाता है और एंटी ग्रेविटी फ्लो नहीं कर पाता है। हमारा जो रक्त है, जो खून है, वो पैरों से हमारे हृदय की तरफ वापस आता है और वैसे ही नीचे जाता है। तो ठीक होने की वजह से उतना ब्लड वेसल्स से वो पास नहीं हो पाता है, जैसे कि थोड़े टाइम स्टैंडिंग में, थोड़ी वॉकिंग में लोगों के पैर सूज जाते हैं। तो वो अपना वाटर इनटेक अच्छा करें, और इसके साथ में उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि ये किडनी की भी प्रॉब्लम, लीवर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कि जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जी
0: बातें हम और भी करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
2: ये रातें, ये मौसम।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं कॉमन फूड प्रॉब्लम्स की। तो हमारे पास एक मैसेज है डॉक्टर साहब, वो लिख रहे हैं, हेलो माय नेम इज़ ज्योति, माय एज इज़ 40। मुझे 2 साल से अर्थराइटिस बताया, नी में इंजरी बताई और 2 साल से दवाई खा रही हूँ, कोई रिलीफ नहीं है। अब मैं फिजियोथेरेपी ले रही हूँ, 2 महीने से अब 19-20% आराम मिला है। फिजियोथेरेपी से 100% रिजल्ट आएगा, प्लीज़ बताएं, कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ।
2: हाँ, ये इनका अच्छा क्वेश्चन है। लोग बाग काफ़ी परेशान है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से। नी में पेन बहुत कॉमन है और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। आफ्टर आजकल तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है, 30 या 35 साल से ही लोगों में मैं काफ़ी देखता हूँ नी पेन की समस्या आ रही है। पर ऐसे केसेस में मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें ग्रेड होता है। अगर ग्रेड 2nd या ग्रेड 3rd है तो मेडिसिन का इम्पैक्ट इतना नहीं आता है। जो अगर कोई भी पेशेंट नी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो उनको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक, अपना एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे रखना है उनको, और दूसरा पॉइंट कि अपने फुटवेयर में चेंजेस करने हैं। अपने फुटवेयर में अपने पैरों के लिए एक इंसोल बनवाएं, उसमें लेटरल वेज लगवा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो जहाँ से गैप रिड्यूस होता है वो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है और हमें वॉकिंग में आसानी हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन तो हम बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, यही इसका ट्रीटमेंट है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आपको पता है कि नी रिप्लेसमेंट आजकल तो बहुत ही अच्छा और रोबोटिक तरीके से होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आसानी से करा सकते हैं।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है अनीता, ये लिखती है, माई एज इज़ 47, आई एम ए हेल्दी फीमेल, आई एम अ रेगुलर हाइकर ट्रैकर, What is the ideal weight and sole type of shoes that should be worn as trekking shoes are very heavy and hard?
2: हाँ, ट्रैकिंग वालों को ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको हाई एंकल शूज़ कैरी करना होता है और वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो अक्सर इन लोगों को क्या करना है, क्योंकि ट्रैकिंग में हैवी शूज़ ही चाहिए होता है, लाइट वेट शूज़ इतना कम्फर्टेबल रहेगा नहीं, ना ही इतना वो प्रेशर टॉलरेट कर पाता है। तो इन लोगों को एक तो एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने पैर के हिसाब से एक इंसोल बनवाना चाहिए, तो कि हम प्रेशर को शिफ्ट कर सकें। और ऐसे केसेस में इनको ये भी देखना चाहिए कि थोड़ा सा हल्का, अगर लाइट वेट शूज़ अगर ये कैरी कर सकते हैं, कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो लाइट वेट शूज़ करते हैं, तो वो इनको परचेज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से।
1: तो जो ट्रैकिंग करते हैं, कुछ स्पेशल फुटकेयर है इनके लिए, क्योंकि इतनी ट्रैकिंग करने के बाद आई थिंक
2: ट्रैकिंग में एंकल इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनको हाई एंकल शूज़ दिया जाता है। तो लिटिल वेट थोड़ा हैवियर होता है, पर ऐसे केसेस में इनको अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग अच्छी करनी चाहिए सो दैट कि वो उतना वेट लिफ्ट कर सकें। और उसके अंदर एक जो मैंने बताया ऑर्थोसिस, कस्टमाइज ऑर्थोटिक्स ये पहनेंगे तो काफ़ी काफ़ी बेहतर रहेगा इनके लिए।
1: अगर जैसे ट्रैकिंग कर रहे हैं, कभी एकदम मेजर कुछ फुट में प्रॉब्लम हो जाए या एंकल ट्विस्ट हो जाए, तो इमिडिएटली कुछ कर सकते हैं?
2: हाँ, सभी ट्रैकर्स जो भी ट्रैकिंग करने जाते हैं वो अपना साथ में रेमेडी ज़रूर रखते हैं, क्रैप बैंडेज या अदर टाइप ऑफ मेडिसिन भी रखते हैं वो, जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, जो छोटा सा आता है हम अपने साथ कैरी करते हैं ट्रैकिंग में, तो वो सब लोग नहीं रखते हैं तो रखना चाहिए।
1: जो रेगुलर बेसिस पर जाते हैं वो तो रखते होंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वो नहीं रखते, उन्हें रखना चाहिए।
2: हाँ, उन्हें रखना चाहिए। लास्ट टाइम मैं भी गया था तो मैंने भी ये चीज़ रखी थी वो ज़रूरी हो जाती है जी।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, लेकिन उससे पहले कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: हेलो हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: 7-8 साल से पार्किंसन की बीमारी है और शुगर मेरी 65-70 ऐसी आती है, तो ये डॉक्टर साहब से
2: नहीं। इनका क्वेश्चन है कि पार्किंसन की इनको प्रॉब्लम आ रही है, हमें आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ वर्ड्स जो समझ में आए हैं वो पार्किंसन से रिलेटेड हैं। तो पार्किंसन के केस में ऐसा होता है, ये वो बीमारी ही ऐसी है कि जनरली एक पर्टिकुलर एज आफ्टर 50-60 के बाद ही ये होती है, और मसल्स को धीरे धीरे धीरे धीरे वीक कर देती है, जिसमें कि वॉकिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होने लगती है, हमारे हाथ पैर चलते हुए कांपने लगते हैं। तो उसके लिए तो एक ही रेमेडी होती है कि जितना हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करें, खुद से करें या अपने आसपास में किसी कोई फिजियो डॉक्टर है तो आप उनसे एक्सरसाइज करवाएं, पर एक्सरसाइज ही उसकी एक रेमेडी है। प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो हम मसल्स को वीक होने से रोक सकते हैं।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये है अनीता, ये लिखती हैं, ये अनीता का तो हमने मैसेज ले लिया था, एक और मैसेज है, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब शूज़ कौन से पहनने चाहिए, लेस कम लेस वाले या बिगर लेस वाले, कैसे फुट होने चाहिए और नंबर से बड़ा शूज़ होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। अमर रमेश कुमार खत्री चानेसर गोट कराची से।
2: हाँ, ये इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी हमने बताया भी कि हमें शूज़ लेसेस वाले पहनने चाहिए, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि हमें अपने पैर के साइज़ से एक नंबर बड़ा पहनना चाहिए ये सेम साइज़ का पहनना चाहिए जी। अगर आपको फुट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे टोज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें सेम साइज़ में या टाइट शूज़ नहीं पहनना चाहिए। उस केस में हमें एक नंबर बड़ा शूज़ पहनना चाहिए। कुछ पर्सन हाईली एक्टिव होते हैं या कुछ एथलीट होते हैं, तो उनको सेम साइज़ का शूज़ पहनना चाहिए। तो फुट की प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा है कि पैर में क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हमें उस पर डिसीजन लेना होता है कि हमें एक नंबर बड़ा पहनना चाहिए या सेम साइज़ का पहनना चाहिए।
1: लेकिन कई बार होता है कुछ फुट के साइजेस ऐसे होते हैं कि वो एग्जैक्ट साइज मिलता है नहीं है, तो उसके लिए कई बार सोल लगा के या पीछे लगा के तो उसको एडजस्ट कर दिया
2: हाँ,
1: जाता है।
2: ये गलती हम बहुत करते हैं कि अच्छा थोड़ा सा लूज़ शूज़ ले लेंगे और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सॉल पतावा डाल देंगे, तो जो कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक्स्ट्रा पतावा डालने से क्या होता है कि हमें हमारा प्रेशर चेंज हो जाता है। जो हमारी हील पे प्रेशर आना चाहिए था वो हमारी टोज़ की तरफ आ जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं नी पे इम्पैक्ट काफ़ी ढीलने को मिलता है या लोअर बैक में काफ़ी प्रॉब्लम हमें टॉलरेट करनी पड़ती है। तो ऐसा ना करें, तो जितना कोशिश हो सकता है कि अपने ही साइज़ का, या अगर आपको फुट में आगे पंजे में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक नंबर बड़ा शूज़ ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो अपने साइज़ का कोई भी मोची से फुटवेयर डिज़ाइन करवा सकते हैं सेम साइज़ में। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैर के हिसाब से शूज़ नहीं मिल पाता है जी।
1: तब की ये होगा कि हम शूज़ अगर हम पहन रहे हैं तो हम ये सोचेंगे नहीं कि शूज़ की वजह से हमारी नी में पेन आ रहा है,
2: हाँ, ये नहीं सोच पाते हैं हम।
1: हम सोचेंगे अगर शूज़ में प्रॉब्लम है तो नीचे फुट में प्रॉब्लम आएगी, नीज तक तो हम सोचेंगे भी
2: नहीं
1: नहीं।
2: सोचते हैं बिल्कुल। अगर ऐसा हो भी रहा है कि अगर हमारे साइज़ का शूज़ नहीं मिल रहा है, या तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर, अपने पोडाइट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई आप हमारे लिए कुछ ऐसा डिज़ाइन करो, हमारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए और ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इससे भी हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर साहब को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, वो लिखते हैं डॉक्टर साहब पैरों के दर्द का व्यक्ति के बॉडी वेट से क्या संबंध है, क्या ज़्यादा वेट वालों को पैरों की समस्या ज़्यादा होती है। नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड।
2: ये हाँ, गुड आफ्टरनून सर, ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग ये आके पूछते भी हैं जी। कुछ केसेस में जी बिल्कुल, वज़न बहुत मैटर करता है हमारी बॉडी का। अगर हमारी बॉडी का वेट ज़्यादा है तो हमारे पैरों पे दबाव उतना ही ज़्यादा आएगा, उतना हमारे घुटने और कमर पे भी आएगा, जिससे कि हमारी वॉकिंग कम हो जाती है। जितना वॉक हम कम करते हैं हमारी मांसपेशियाँ भी वीक होने लगती हैं, तो उसका बिल्कुल इम्पैक्ट हमारे पैर पर पड़ता है। तो हमें अपने बॉडी के वेट का ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सकता है कम से कम हम अपना बॉडी का वेट, और जितना जल्दी कर सकें उतना बेहतर होता।
1: नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड। ये लिखते हैं वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर सर जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। नमस्कार जी, ये लिखते हैं मैं आशा डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा यहाँ नीदरलैंड में ट्रीटमेंट चला लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मैंने इंडिया जाकर ट्रीटमेंट करवाया, मेडिसिन ली 1 साल बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन दोबारा फिर स्किन ड्राई होकर ज़ख्म हो गए हैं, पेन तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम दोबारा हो गई है, प्लीज़ बताने का कष्ट करें, वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
2: जी मैम, जो उन्होंने ट्रीटमेंट यहाँ इंडिया में आके कराया, वैसे तो हम इंडिया वाले मेडिकल फैसिलिटीज़ में काफ़ी हाई हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने पैरों का फिर से ध्यान नहीं रख रही हैं। अब उनको वही पैरों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो ड्राई स्किन हो रही है उसको प्रॉपरली वो वॉश करें, उस पर लोशन लगाएं, है ना, और लोशन भी कई सारे टाइप के आते हैं, फिर उसको प्रॉपर वॉश करके कॉटन टॉवल से उसको ड्राई करें, तो उस चीज़ का वो ध्यान रखें, तो प्रॉब्लम वो दोबारा नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है।
1: नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं मनीषा रांची से, ये लिखते हैं पैरों में

0: जलन रहती है, क्या विटामिन B12 से फ़ायदा होगा?
1: हाँ बिल्कुल, विटामिन B12 और विटामिन B6 से पैरों की जलन को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना विटामिन B12 और विटामिन B6 का इतना रोल नहीं होगा पैरों की जलन में। आपको एक चीज़ करनी चाहिए, अपने पोडाइट्रिस्ट होते हैं फुट एंड एंकल के डॉक्टर जो स्पेशली फुट को देखते हैं, तो आप उनको कंसल्ट कीजिए,

0: मेरी माँ को लेफ्ट लेग हील पेन होता है, अब लेफ्ट राइट लेग में भी हील पेन होने लगा है, प्लीज एडवाइस, हील पेन की प्रॉब्लम है।
1: हाँ, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमने जैसे डिस्कस किया कि हील पेन कई सारे टाइप के होते हैं, तो इनको हील पेन किस टाइप का है, और पहले एक में होता था फिर दूसरे लेग में होने लगा, तो वो पहले एक लेग में जब पेन आ रहा था तो उन्होंने अपने बॉडी का वेट दूसरे वाले लेग पे शिफ्ट कर लिया। अब एक लेग अपने लिमिटेड ही बॉडी वेट केयर कर सकता है, जब जो कैरी कर सकता है, अब ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे पैर पे बॉडी वेट आएगा तो ऑब्वियसली वो प्लांटर फेसाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको जो हील में पेन आ रहा है वो प्लांटर फेसाइटिस का पेन आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जनरली आप हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन करें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें जितना हो सकता है, पैरों की अपनी काफ की स्ट्रेचिंग करें, एक्लिस टेंडन की स्ट्रेचिंग करें, और गर्म और ठंडे पानी की सिकाई करें, और एक कंफर्टेबल सॉफ्ट फुटवेयर पहने जो कि हम जिसमें पहन के हमें पेन कम हो, तो इसको हम इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि हील पेन के केस में बहुत ज़्यादा मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होती है। जी
0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं कॉमन फुट प्रॉब्लम्स पे, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: मूड चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक अच्छा सा प्यारा सा गाना हमेशा बहुत ही रिलैक्सिंग और सूदिंग महसूस होता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉमन फूड प्रॉब्लम्स की, तो एक मैसेज है हमारे पास, लेकिन उसके साथ ही हमारे साथ कॉलर भी हैं, तो हम पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार सर
1: जी, मैं यामिन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी धोनी जिला का जी।
0: हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है
1: मैं
0: आपका?
1: सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि सर्दियों में तो हाथ पैर फट जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में भी पैरों में दरारें आ जाती हैं, फट जाते हैं, इसका क्या कारण है?
2: हाँ, ये बिल्कुल
1: रेडियो
2: सही
1: बताएं
2: का
1: सर, मैं रेडियो से सुन रहा हूँ।
2: हाँ ये बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा है। ऐसा होता है कि सर्दियों के टाइम में अक्सर हमारी एड़ियों में दरारें आ जाती हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम अक्सर सर्दियों में ठंडे पानी से अपने हाथ पैर ना धो के गर्म पानी से धोना पसंद करते हैं। तो हम ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं तो भी हमारी हील के लिए ठीक नहीं है, पैरों के लिए ठीक नहीं है, और हमारी वॉकिंग काफ़ी

0: कम हो जाती है, हम चलना कम पसंद करते हैं सर्दियों में। इसके अलावा हमारा वाटर इनटेक जो सबसे ज़रूरी है वो हमारा कम हो जाता है। हम गर्म पानी से भी अपने पैर धोएं तब भी चल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जितनी पानी की कमी होगी तो फिर क्या है, बॉडी हमारी मसल्स से वाटर यूटिलाइज करने लगती है। तो सबसे पहले हमारी हील पे ही उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि सारा बॉडी का वेट हमारे हील पे आया। अब हील पे बॉडी वेट आएगा तो वहीं से क्रैक स्टार्ट होना। अगर वो बॉडी वेट हमारा हाथ पे आया होता तो हमारे हाथ से वो क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती। तो ऐसा इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें, पानी पिएं और गर्म पानी से अपना हील को या पैरों को वॉश ना करें, नॉर्मल पानी से वॉश करें। इसके अलावा आप उसको ठीक करने के लिए मॉइस्चराइजर्स का यूज़ कर सकते हो। आजकल तो मार्केट में वैसलीन या अदर चीज़ें भी बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो उनका यूज़ करें।
1: तो जैसे कि आपने बताया कि पैरों को वॉश करें, क्लीन रखें, ले और अगर हम बात करें फुट मसाज की, तो फुट मसाज कराना कितना ठीक है और कितनी देर कराना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए उसका?
0: हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोग जनरली फुट मसाज कराते हैं और अच्छा भी लगता है, फुट मसाज कराने से काफ़ी आराम भी मिलता है। पर सब लोगों को फुट मसाज नहीं करानी चाहिए। जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको फुट मसाज करानी चाहिए, और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। और उस फुट मसाज में भी ये चेक किया जाता है कि प्रेशर कितना रखना है हमें। हमें सुपरफिशियल प्रेशर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए पैरों पे, वरना अदर इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं या हमारी मसल्स थोड़ा वीक होने लगती हैं। तो हमें सुपरफिशियल मसाज की ज़रूरत होती है। ज़्यादा दबाव की ज़रूरत तब होती है जब आप 60 साल से ऊपर के हैं या 70 साल के पेशेंट्स हैं, तो आपके पैरों की मसल्स वीक हो गई हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा हाई कंप्रेशन चाहिए होता है पैरों की मसाज के लिए। जी,
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, नमस्ते सर, वेरिकोज वेंस के लिए क्या करना चाहिए, सर्जरी से प्रॉफिट होगा क्या? राखी फ्रॉम किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर।
0: जी, वेरिकोज वेंस आजकल बहुत बड़ा एक इशूज़ है। लोग काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं और कम उम्र में सफ़र कर रहे हैं। पहले हम देखते थे या पढ़ते थे कि 60 साल या 50 साल के ऊपर के पर्सन को ही वेरिकोज वेंस होती थी, लेकिन आजकल मैं 30 साल में, इवन 25 साल में भी काफ़ी काफ़ी सीवियर वेरिकोज वेंस देखने को मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट, मतलब सर्जरी तो नहीं है, क्योंकि आप सर्जरी कराओगे तो दोबारा फिर हो सकती है, या फिर आप, अगर आपके डॉक्टर सर्जरी बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नहीं ये दोबारा नहीं होगी, तो आप करा सकते हो। अदरवाइज़ इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं। आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ कर सकते हो टू इंक्रीज़ द ब्लड फ्लो, जो हमारे पैरों से ब्लड इंक्रीज़ होकर हार्ट की तरफ तेज़ी से जाएगा, इन्फ्लाम जो सूजन होती है पैरों में वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे हील्स की, तो कई बार होता है कि हम हाई हील्स पहन रहे हैं, आजकल फैशन भी है, लड़कियां कैरी भी करते हैं, और उसमें अगर लंबा चलना पड़ जाता है तो कई बार होता है फुट बिल्कुल अकड़ जाता है
0: जी,
1: तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
0: हाँ, हील्स पहनने से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, पैरों में अकड़न भी फील होती है। तो हील्स में क्या होता है, जैसे हम अगर 2 इंची या 3 इंची की हील्स पहनते हैं, तो हमारी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे घुटने के आगे आ जाती है, हमारे नी के, तो जिससे कि सारा प्रेशर हमारी टोज़ पे आ जाता है, हील से प्रेशर हट जाता है। तो उस केस में जो हमारे पैरों के पीछे काफ मसल है और हमारा पीछे टेंडन है, इसे हम एक्लियस टेंडन बोलते हैं, जो घुटने के पीछे है, तो मसल्स क्या होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट होकर वो टाइट हो जाते हैं। अब आपने लंबे समय तक हील्स पहनेंगे तो मसल्स टाइट हो जाएंगे, तो पैरों में अकड़नपन रहती है। फिर हमें पंजे में आगे दर्द भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर अब हमारे पंजे पर आ रहा है। तो इसलिए हमारा सबसे सजेशन यही रहता है कि हमें हील्स को जितना हो सकता है अवॉइड करना चाहिए। अगर हील्स आपको पहननी हुई तो 1 इंची की हील्स सफिशियंट है, और वो आइडियली भी है कि 19 मिलीमीटर या हम 2 सेंटीमीटर तक का पीछे से हील हाइट वाला शूज़ या सैंडल पहन सकते हैं। ये हमारी बॉडी के बायोमैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये लिखित में है।
1: अच्छा, जैसे कि आपने अभी टोज़ की भी बात करी, तो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है इनग्रोइंग टोनेल।
0: जी,
1: तो ये क्या है? और
0: ये प्रॉब्लम तो मैम, ये मैं ये कह सकता हूँ कि 70% गर्ल्स इस प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं, नॉट बॉयज़।
1: तो क्या वजह है इसकी?
0: तो उसकी वजह हमारे फुटवेयर्स हैं। गर्ल्स क्या करती हैं, फ्लैट बेलीज या पॉइंटेड बेलीज ज़्यादा पहनती हैं, जिसकी वजह से हमारे नेल इनग्रो होते हैं और वो हमारी स्किन में ही अंदर की तरफ ग्रो होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी पेनफुल हो जाते हैं। या कुछ केसेस में क्या होता है कि पैरों की सेप, नेल को अच्छा दिखाने के लिए गर्ल्स उनको डीप कट कर लेती हैं, है ना, ताकि आपको पता है कि गोलाई में अच्छा लगे, सारा कॉस्मेटिक अपीरियंस होता है। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं
1: जी।
0: तो जब वो ज़्यादा डीप कट हो जाता है तो फिर से वो ग्रो होगा, नेक्स्ट टाइम वो उतना डेप्थ उसको कट नहीं कर पाते हैं, तो वो स्किन में ग्रो कर जाता है। क्योंकि एक बार हमने कहीं से नेल को कट किया वहाँ से उसकी ग्रोथ चालू हो जाती है। तो इसीलिए इनग्रोइंग टोनेल के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर किसी को इनग्रोइंग टोनेल की प्रॉब्लम है तो वो अपने पोडाइट्रिस्ट या अपने स्किन के डॉक्टर को कंसल्ट करें उसको निकलवाने के लिए, ना कि खुद से ट्राई करें। खुद से ट्राई करने में कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये मेरा इन पेशेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप खुद से ट्रीटमेंट ना करें।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी पहले बोला था, अभी बात करते करते एकिलियस टेंडन, तो ये समस्या क्या है?
0: एकिलियस टेंडन भी एक ये काफ़ी ऐसा पेन है कि जल्दी से ठीक नहीं होता है, और ये पेन के सिम्टम्स ही हमें ऑब्जर्व कराते हैं कि ये पेन जो है वो एकिलियस टेंडन का है या किसी और चीज़ का है।
1: क्या सिम्टम्स है और इसका ट्रीटमेंट क्या है?
0: इस समय एकिलियस टेंडन में हमेशा जो पेन आएगा वो वॉकिंग में आएगा, और एड़ी के पीछे दर्द आता है, जो हमारे एड़ी के पीछे वाला जो टेंडन होता है वहाँ पेन आएगा। जब भी हम चलेंगे हमें पेन महसूस होगा, सिटिंग बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए, हमें कोई दर्द नहीं आएगा। तो इसके सिम्टम्स होते हैं, और इसका ट्रीटमेंट यही है कि जितना ऐसे केसेस में, बिल्कुल ऐसे केसेस में हम हील वाला शूज़ हमें पहनना चाहिए, तो हमें टेंडन का फ्रिक्शन हम कम कर सकते हैं, उसका खिंचाव कम कर सकते हैं, उसको ठीक होने के लिए हमें टाइम मिल जाता है, तो आराम से हम ठीक कर सकते हैं उसको। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हील पेन की, पर लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग कई कई साल से इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं।
1: इसलिए हमें अपना शूज़ हो गए चाहे हील्स हो गए बहुत देख के चूज़ करना चाहिए और कैरी करना चाहिए।
0: जी जी जी, पर ये बहुत छोटा सा पार्ट है, लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी परचेज करो और चलो।
1: फैशन
0: फैशन जी।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि एड़ी की हम बात कर रहे थे, तो एड़ी अब जैसे विंटर्स आती हैं या मौसम बदलते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं? फिर हम क्रीम लगाते रहते हैं, नहीं होती कई बार हील।
0: अभी हमने वही बताया जो अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं।
1: जी,
0: तो मैंने उनको बताया था कि हमारा ऐसा इसलिए होता है कि जितना हो सकता है पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, पर हमारी बॉडी को तो वाटर चाहिए, तो हमारी मसल से इनटेक लेने लगते हैं, और जब मसल से पानी जाएगा और हमारी हील पे ज़्यादा प्रेशर आता है तो वहाँ से क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में विटामिन B12, विटामिन B6 लें, और पानी का भरपूर मात्रा में, और ये ध्यान रखें कि बिल्कुल भी गर्म पानी का यूज़ ना करें उसको वॉश करने के लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी का यूज़ करते हैं कि हम एड़ियों को साफ कर लें,
1: सॉफ्ट रहेंगी,
0: बिल्कुल, तो वो गलती ना करें। आप नॉर्मल वाटर लें, उससे क्लीन करें, और जो कॉटन टॉवल होती है उससे उसका ध्यान रखें, फिर उस पर लोशन अप्लाई कर सकते हैं आप।
1: तो कई बार कहते हैं फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है पैरों में, तो क्या उसके लिए भी सेम केयर है या डिफरेंट है?
0: नहीं नहीं मैम, उसके लिए डिफरेंट केयर है, फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस अलग होते हैं, है ना। फंगल इन्फेक्शन तब
1: वो किस वजह से हो जाता है?
0: फंगल इन्फेक्शन तब हो जाता है कि हम अपने पैरों का ध्यान नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा स्वेटनिंग होती है जिन लोगों को, और वो ध्यान नहीं रखते हैं, या हम किसी के फैमिली मेम्बर में किसी और का हमने शूज़ या सॉक्स पहन लेते हैं, है ना, हमारी बहुत वॉकिंग होती है या हमारा बहुत टाइट फुटवेयर है, तो उस वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं अक्सर। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपना ही शूज़ या सॉक्स पहनने चाहिए, और वो भी प्रॉपर नीट एंड क्लीन। इसके अलावा हमें अपने, अगर किसी को ये स्वेटनिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो उसको डेली बेसिस पे सॉक्स चेंज करने चाहिए, और बीच बीच में निकाल के अपने पैरों को हवा लगानी चाहिए, सो दैट कि वो स्वेटनिंग जो होती है उसको प्रॉपर वो ड्राई कर सके।
1: कई बार होता है जो लोग वर्किंग है, या तो उनका काफ़ी देर तक बैठने का काम है या फिर काफ़ी लंबा चलने का काम है
0: जी,
1: तो वो अपनी फुट केयर कैसे करें?
0: हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है।
1: जो बैठे हैं तो उनका वॉकिंग नहीं हो पा रही, और जो चल रहे हैं उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा।
0: हाँ मैम, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिन लोगों की लॉन्ग सेटिंग होती है उन लोगों को अक्सर वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, और ये पैरों में सूजन आ जाती है। तो ऐसे केसेस में लॉन्ग सेटिंग को अवॉइड करें, बीच में अगर जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो आप भले ही 2 मिनट के लिए थोड़ा वॉक करके दोबारा आके बैठ जाइए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे पैरों के लिए। या आपकी लॉन्ग सेटिंग है आप नहीं उठ सकते हैं, तो सामने कोई भी छोटा स्टूल रख के उसके ऊपर अपने पैर रख के बैठ सकते हैं, सो दैट कि आपका जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रह सके। सेम थिंग वॉकिंग वालों के लिए, वॉकिंग वालों के लिए थोड़ा बल्कि ईजी हो जाता है, क्योंकि वो वॉक कर रहे हैं, सिर्फ वो वॉकिंग में क्या उनकी मसल्स यूज़ हो रही है, पर मसल्स तो एक्टिव है, वो वीक नहीं होगी। सिटिंग में हमारी मसल्स बैठे बैठे वीक हो जाती है, तो इसलिए वॉकिंग वालों को बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। और वॉकिंग के केस में मसाज कराना, अभी आपने पूछा था मसाज कराना चाहिए, वो 10 से 15 मिनट की मसाज ले सकते हैं, हेल्दी मसाज, जिसे हम अपना मस्टर्ड ऑयल जो सरसों के तेल के से मसाज करा सकते हैं। जी,
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करें तो अगर किसी के अगर पैरों में दर्द है और वो कहीं

0: बुखार है या कुछ है, तो उसके लिए केयर कैसे करें अगर पैर अकड़ जाते हैं, कई बार क्रैम्प आ जाता है?
1: हाँ, मसल्स क्रैम एक आम समस्या है, आप कभी भी देखेंगे तब होता है जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, वाटर डिहाइड्रेशन की वजह से, या हमारी बॉडी में काफ़ी वीकनेस होगी उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स आने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि नस में नस चढ़ गई
0: जी
1: है ना। ये बहुत कॉमन है और ये अक्सर होता है सोते हुए, या हम बैठे हैं तो एकदम बैठ के उठते हैं, वो तब होता है। तो ये पानी की कमी से होने वाली प्रॉब्लम है, जितना हम हो सकता है पानी पिए और उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, और सॉल्टेड वाटर पीने की ज़रूरत है। जी
0: इसी से रिलेटेड एक मैसेज भी है हमारे पास, शायद उनको भी जवाब मिल गया होगा। ये लिखते हैं, आई एम 73 ईयर्स ओल्ड एंड डायबिटिक विथ गुड कंट्रोल। आई हैव क्रैम्प ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट, प्लीज सजेस्ट वॉट टू डू। स्मिता स्मिता नागर। तुम हाँ,
1: बिल्कुल,
0: जवाब इनको अब मिल गया
1: इनको
0: होगा।
1: इनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है।
0: डॉक्टर साहब, ये तो हमने कॉमन फूड प्रॉब्लम्स के बारे में कि कैसी कैसी प्रॉब्लम हो जाती है और क्या क्या सॉल्यूशंस के बारे में बात करी, क्या कुछ ऐसे रेड फ्लैग साइंस हैं कि जिसमें हमें लगता है कि नहीं, हमें इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: हाँ बिल्कुल, ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं, कई बार चलते चलते हमारा एंकल ट्विस्ट हो जाता है, फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं, वॉक करते रहते हैं, तो उस केसेस में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। कई बार हमारे प्रेशर, ओवर प्रेशर हमारी टोज़ पे आ जाता है, तो हमारे नेल्स ब्लूइश होने लगते हैं, तो भी हम उन केसेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे हील में पेन, एक्यूट पेन आ गया है, आप वेट नहीं ले पा रहे हैं, या आपकी नी में पेन आ गया है, या आपके फोफुट में पेन आ गया है, तो इन सब सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। आप इन सब सिम्टम्स को अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके शेयर करें, कंसल्ट करें, और इनको जितना हो सकता है जल्दी अवॉइड करें, क्योंकि फुट की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जितना आप इग्नोर करोगे उतनी ही बड़ी होती जाती है, और उसको बाद में ट्रीट करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है।
0: कुछ ऐसी फुट एक्सरसाइज या फुट केयर डेली रूटीन है जो मैं अपने पैरों को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि उसी पे हमारा पूरा शरीर का वेट रहता है, हमें डेली में करनी चाहिए?
1: हाँ बिल्कुल, हमें डेली में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जो कि हमारे पोस्चर को काफ़ी हद तक बेहतर रखती है। अगर हमारा पोस्चर ठीक है, फुट की मसल की स्ट्रेंथ ठीक है, तो काफ़ी हद तक हमारा बॉडी बैलेंस ठीक हो जाता है। तो बेसिकली हमें योगा भी करना चाहिए, लेकिन योगा करें या ना करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करें, जो कि मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है।
0: तो डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा स्वस्थ पैरों के लिए फुट केयर फॉर्मूला है क्या?
1: नहीं मैम, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सब लोग ज़्यादातर ध्यान रखते हैं, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, पहले लोग इतना केयर नहीं करते थे पैरों की, लेकिन अब करते हैं। तो लेकिन यही है कि आप ज़रूर, अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा वॉक करें और एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वॉकिंग ही हमारी मसल्स को एक्टिवेट रखती है।
0: पानी पीना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं पानी पीना हमारे फेस पे ग्लो लाएगा, लेकिन हम पैरों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हम नहीं सोचेंगे।
1: जी जी बिल्कुल,
0: श्रोताओं, पैरों की छोटी सी तकलीफ को छोटा समझकर टालिए मत, क्योंकि हमारे हर सफ़र की शुरुआत इन्हीं कदमों से होती है। इसलिए पैरों में होने वाले दर्द, सूजन या किसी भी बदलाव को मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें। सही जूते चुनें, साफ सफाई का ध्यान रखें, और परेशानी लगातार बनी रहे तो विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि कदम स्वस्थ होंगे तभी ज़िंदगी का सफ़र भी सहज और खूबसूरत होगा। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार, प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत आभार मैम।
0: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, अपने पैरों का रखें थोड़ा ध्यान, थोड़ी देखभाल, और बढ़ते रहिए बेफिक्र अपनी मंजिल की ओर। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, लीजिए पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सहित कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत भारत रेलवे स्टेशन के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत भारत स्टेशनों का आज उद्घाटन किया। भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन की यात्रा पर हैं। श्री शाह पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना है। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 75 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री किंजारापू अचनाइडू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फ्लूक्लोर वर्जीनिया FCV तंबाकू की खरीद की प्रगति की समीक्षा की। आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा जारी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएगी। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। गिलगित बल्तिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 2-3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की। और खेलों में ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार। जुड़े रहिए रेनबो के साथ।

0: आपकी वाणी आकाश,
1: आपकी वाणी, आपकी वाणी आकाशवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ मस्त फिलंग आर्टिस्ट श्वेता, प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ आपके लिए अल्फा जैन। अल्फा जैन में आज क्या खास होने वाला है, किसके बारे में आपको देने वाली मैं बहुत सारे टिप्स और बातें करने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपकी रेनी सीजन जो है वो काफ़ी अच्छी जाने वाली है। और वो क्यों जाने वाली है ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उससे पहले हमारा प्रोग्राम होने वाला है एक स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे, और आप लम्हे सुनिए, उसके बाद आपसे होगी फिर से मुलाकात। कहाँ, यहीं 102.6 FM रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप।

हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। हर रोज की तरह, हर दिन की तरह, आज भी मैं आ गया आपके लिए कुछ नया लेकर। हम हर रोज एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और ये टॉपिक हमारे फिटनेस, लाइफस्टाइल, हेल्थ, जैसे कि मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ, इससे जुड़ी होती है। ये टॉपिक्स को हम एक्सपर्ट्स से लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, हमारा टीम बैठकर इसके बारे में डिस्कस करता है। बाद में सोच विचार के बाद, एक्सपर्ट्स के राय के बाद, एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार की जाती है और उसके बाद पेश किया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप केयरफुली हमारी बातों को सुनिए, ये बेहद ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स एज केयर गिवर्स। आमतौर पर दादा दादी और नाना नानी के पुराने किस्से सुनना आपने कई बार देखा होगा, अपने आप में काफी मजेदार अनुभव होता है ये। हालांकि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के फायदे जानते हैं? क्या उससे वाकिफ है क्या आप? बता दें कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज के दौर में खेल, पढ़ाई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। वही कुछ बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना जुलना ही बड़ी मुश्किल से होता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मददगार हो सकता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के कुछ फायदे आज के लम्हे प्रोग्राम में आपका आरजे चेतन से। आजकल के ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल में सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहने वाले बच्चे अमूमन अन्य लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वही ग्रैंड पेरेंट्स के होने से बच्चे न सिर्फ उनके साथ समय बिताते हैं बल्कि उनकी बात भी मानते हैं। साथ ही छुट्टियों में ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने से बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी घुलते मिलते हैं और सोशल लाइफ को खुलकर एंजॉय कर पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर बच्चों की नादानियों को माफ करके उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जिससे बच्चों की सहनशीलता में इजाफा होता है। साथ ही ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान की भावना से देखते हैं और उनकी सलाह को नजरअंदाज नहीं करते हैं। नाना नानी, दादा दादी के साथ या जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ऐसे में बच्चे हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करता है। साथ ही मुश्किलों से डरने से बजाय उनका डटकर सामना करने की यकीन रखता है। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चों में समर्पण और सहयोग की भावना भी पैदा होती है। छोटे बच्चों के लिए दादा दादी बेहद जरूरी होते हैं। जो बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी के पास रहते हैं वह अन्य बच्चों से ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। दादा दादी अपने बच्चों को हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। केवल ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को पुरानी संस्कृति, मान्यता, परंपरा से जोड़ सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों में अच्छी आदतों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बच्चे उन्हीं के द्वारा ही नैतिक गुणों को जानते हैं और ये भी समझते हैं कि नैतिक गुणों की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है। इसके अलावा भी ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं कौन सी है वो कारण जिनकी वजह से बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स जरूरी होती है। सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं वे अपने पूरे परिवार या तक के दादा दादी के रिश्तेदारों को भी जान जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को पुराने संस्कृति, मान्यता ये सब तो सिखाई देते हैं। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उनके बच्चों में नैतिक गुण जरूर हो। ये नैतिक गुण ही जीवन को

जीने का तरीका बदल सकता है। इसीलिए नैतिक शिक्षा के लिए ग्रैंड पेरेंट्स एक अच्छा विकल्प है। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उनके अंदर नैतिक गुण लाने में बेहद सहायक है। हर बच्चा बड़े बुजुर्गों से कुछ न कुछ जरूर सीखता है। ये पाया गया है कि बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना बेहद पसंद होता है। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें कभी प्यार की कमी महसूस ही नहीं होती है और वह हमेशा खुश रहते हैं। उन्हीं से बच्चों की सुरक्षा की भावना भी एहसास होता है। उनके द्वारा दिया गया प्यार ही उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब भावनात्मक या व्यवहार संबंधी परेशानियां उनके सामने खड़ी हो जाती है तो इस स्थिति में वह बेहतर तरीके से समस्या से निपटते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर अपने दादा दादी के और नाना नानी के प्रति स्नेह और आदर की भावना ज्यादा होती है, जिससे वह भावनात्मक रूप से स्थिर होने लगते हैं और दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं वे अकेलापन, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से कम पीड़ित होते हैं। दादा दादी या नाना नानी हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बच्चों के पेरेंट्स उनकी कोई जिद पूरी नहीं करते हैं, ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स उनकी इच्छा पूरी कर उनको खुशी देते हैं। लेकिन कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स के अधिक प्यार की वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स को अनसुना करने लगते हैं, उनका कहना नहीं मानते, जिससे दो पीढ़ियों के बीच गलत फैमिली बनने लगती है। इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स को चाहिए कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अपने प्यार को बैलेंस रखे और बच्चों के साथ ये बात करने से बचे। पेरेंट्स कुछ कारणों से अपने बच्चों को कुछ चीजों को खाने से मना करते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की बात को इग्नोर करते हुए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जिद पूरी करते हैं। ऐसा करना जहां उनके नाती पोतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वही ऐसा सपोर्ट उनको जिद्दी भी बना सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों में कुछ सुधार की कोशिश में उनको पनिश करने के वजह से उनकी विश पूरी नहीं करते। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को उनकी पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स लाने तक उनको कोई नए टॉयस और गेम नहीं दिलाते, जबकि इसके विपरीत ग्रेड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की विश पूरी कर देते हैं, जिससे बच्चों में बिना प्रयास के चीजों को पाने की आदत बन जाती है। इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चों और बच्चों के साथ अपने रिश्ते को भरपूर जी सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। विद दिस वी कंक्लूड आवर प्रोग्राम फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ लर्न है। अंटिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय फ्रॉम योर आरजे चेतन। Call or messages on 0951522703 9, that's 0951522703 9, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.venela, that's spice.lamhe.venela. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: FM रेनबो पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ मस्त मलंग आरजी श्वेता आपके साथ। प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ अल्फा जैन, जहाँ पर होने वाली है ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी बात। आने वाला है रेनी सीजन, लेकिन अभी अभी समर सीजन गया कहाँ है, जाने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। और वहीं गर्मी में हम तो पसीने पसीने हो ही रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे कि आज हमने सुना था प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में अपने पैरों का ध्यान रखना, तो बस उन्हीं पैरों को आगे हम कैसे ध्यान रख सकते हैं रेनी सीजन में भी, और फिलहाल जो समर सीजन चल रहा है उसमें भी, यही बताने आई हूँ मैं भी आज आपको। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून इन किया हुआ है वह दिल्ली और NCR में, और उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के थ्रू भी।

यहाँ बच के रहना होगा, लेकिन किस तरह से और कहाँ पर कैसे बच के रहना होगा वो सारी जानकारी देने आई हूँ। और जनाबे आली, आपके लिए चांद तारे तो क्या, हम इतनी ऐसी ऐसी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ हो जाती है काफी स्मूथ और बहुत ही अच्छी। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि आखिर 2026 में नए ट्रेंड्स में अगर शूज की बात करें तो कौन सा स्टाइल चल रहा है, क्या आपके लिए कंफर्ट जोन रहेगा, और परफॉर्मेंस की भी बात करें तो बस ये परफेक्ट शो है आपके लिए। सुनना और आराम से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज के टाइम में ना जूते सिर्फ जरूरत नहीं है बल्कि फैशन और लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, मानते हैं ना ये बात आप भी? तो चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ऑफिस प्रोफेशनल हो या फिर फिटनेस लवर, हर किसी के लिए सही जूते चुनना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। और 2026 की बात करूँ ना तो नए ट्रेंड्स देखने को तो मिल ही रहे हैं जिनमें स्टाइल है, उसके साथ साथ आपको कम्फर्ट भी मिल रहा है और टेक्नोलॉजी पर तो खास ख्याल दिया गया है। अच्छा अब मैं जानती हूँ हमारे जितने लिसनर्स हैं ना वो सोचेंगे श्वेता को लेकर आई होगी, बस फीमेल्स के लिए बातें करने आई होगी ना कि कौन सी स्टाइलिश हम लोग जूतियाँ पहनेंगी या हील्स पहनेंगी। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं जनाब, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके लिए भी स्पेशल है यहाँ पर कुछ। और हाँ जी सर, आप जो जिम जाने की तैयारी करने में लगे हुए हैं, आपके लिए भी बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बस मेरे साथ जुड़े रहिए एक बार ये सुनने, मतलब बस सुनिए तो सही, ठीक है? अगर नहीं सही लगा तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट शो में सुनना, फिर उसमें और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। पर सुनना तो जरूरी है, सुनने से जानकारी आपको और मिल जाएगी। सुनते रहिए, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।

आप सुन रहे प्रोग्राम मस्त मलंग श्वेता के साथ है। कौन सा प्रोग्राम चल रहा है ये आप जानते ही है ना, अल्फा जैन चल रहा है। और अल्फा जैन में आज है, ओ माय गॉड, आज है फ्राइडे। और फ्राइडे में आपके साथ कितनी सारी बातें करनी होती हैं हम लोगों को, पता है, बहुत सारी बातें करनी होती है। चलिए आपको जल्दी से बता देती हूँ कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग शूज़ कौन से चल रहे हैं, जिसके लिए अगर आप अभी भी जाकर, अगर आप मार्केट जाना चाहते हैं और शूज़ लेना चाहते हैं, कुछ ट्रेंडी देखना चाहते हैं और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि वो कम्फर्टेबल भी रहे, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। आज के टाइम में ना स्नीकर्स सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं सभी, ये एक ऐसा फेवरेट फुटवेयर बन चुका है ना सबके लिए। ना सिर्फ आरामदायक होते हैं बल्कि हर तरह की आउटफिट के साथ मैच भी हो जाते हैं। इमेजिन साड़ी के साथ भी आराम से सभी लेडीज स्नीकर्स भी पहन रही हैं।

यार, ये जो फ्राइडे होता है ना, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। इंफोटेनमेंट का खजाना है ये आज का प्रोग्राम। क्यों? इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रहा है और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है गानों के जरिए। तो बस इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वाइट स्नीकर्स की मैं अगर सबसे ज़्यादा बात करूँ ना, तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड्स में है। वाइट स्नीकर्स हर किसी के साथ एकदम ऐसे जेल हो जाते हैं ना, जैसे पानी में दूध मिल जाता है या दूध में पानी मिल जाता है। हाई टॉप स्नीकर्स की बात करूं तो ये यूथ में बहुत ज्यादा फेमस है और रेट्रो डिजाइन फिर से वापसी कर चुके हैं। रेट्रो डिजाइन देखेंगे ना अगर आप मार्केट में, आप सोचेंगे अरे वाह क्या बात है, ये तो डिस्को लाइट्स ज्यादा लग रही हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे लेटेस्ट ट्रेंडिंग शूज हैं जिनके बारे में आज आपके साथ बात कर रही हूँ। अब बताइए सर, सही सही बता रही हूँ ना मैं, है ना? लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए कोई भेदभाव नहीं है हमारे शो में बिल्कुल भी। स्मार्ट शूज की बात करने वाली हूँ इस गाने के उस पार। बस मेरी ये बातें आप ध्यान से सुनते रहिए, जुड़े रहिए फिल्म रेनबो के साथ।

0: अभी और भी बहुत सारी बातें बची हुई हैं, बस एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार होंगी ढेर सारी बातें। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

कितना अच्छा हो ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच शूज जो है हमारे पास आराम से रहें, और सभी सभी के सभी ना हमारे लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली रहें और हमारे पैरों के लिए अच्छे रहें। स्मार्ट शूज की बात करूं, अब मैंने कहा था ना टेक्नोलॉजी जूतों में भी आ चुकी है, तो स्मार्ट शूज आपकी एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे स्टेप काउंट्स, कैलोरी बर्न्स, रनिंग एनालिसिस। ये जूते खासकर फिटनेस लवर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखा, कहा था ना मैंने आपके लिए, जिम जा रहे हो आपके लिए भी टिप है। तो बस अब आप भी अपने लिए ऐसे शूज पसंद कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं जिनमें ये सारी क्वालिटीज हो। इससे क्या फायदा होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। आप जैसे करते हैं ना, घड़ी में देखते हैं कि कितने स्टेप काउंट्स हो गए हैं, लेकिन वो उसके लिए आपको स्पेशली, कभी कभी होता है ना जल्दबाजी में हम घड़ी पहनना भूल जाते हैं या स्मार्ट वॉच पहनना भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो आपके शूज अपने आप आपके स्टेप्स काउंट कर लेंगे, कैलोरी बर्न्स भी, और इसके साथ साथ रनिंग एनालिसिस भी करेंगे, यानी कि किस तरह से आप रन करते हैं और फिर वो शूज आपके लिए कैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अच्छा, कैसा हो अगर ऐसे शूज मिल जाए जो सस्टेनेबल भी हो, इको फ्रेंडली भी हो, है ना, कितना अच्छा रहेगा ना। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब लोग ऐसे जूते भी पसंद कर रहे हैं और ऐसे जूते मिल भी रहे हैं जो रिसाइकल मटेरियल से बने हों, जिनमें ऑर्गेनिक फैब्रिक्स हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ होता है, और ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आगे फ्यूचर में ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। वैसे इसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ती हूँ कि प्लास्टिक वेस्ट से बने कुछ जूते भी यहाँ पर मिल रहे हैं, तो अब ये देखना ज़रूरी है कि जो प्लास्टिक वेस्ट से जो हमें शूज़ मिल रहे हैं वो हमारे पैरों के लिए कितने अच्छे हैं। तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा, अगर वो हमारे पैरों के लिए अच्छे हैं, उसमें हवा आ रही है जा रही है, क्योंकि हमारे पैर भी तो सांस लेते ना बेचारे, नहीं तो गर्मी में अपना जब पसीने होंगे तो फिर स्मेल करेंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। अगले शूज की बात करूं, स्लिप ऑन शूज, अगर आप जल्दी में रहते हैं तो स्लिप ऑन शूज आपके लिए परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, बिना लेस के पहने और उतारने में आसान, ट्रेवल और डेली यूज के लिए तो ओ हो, बस ऐसा लगेगा जैसे बल्ले बल्ले हो गई है। तो आप भी ये सारे शूज ट्राई कर सकते हैं, मार्केट में जाइए, क्या ट्रेंडिंग शूज और सैंडल्स मिल रहे हैं ये देखने के लिए तो थोड़ा सा मार्केट भी जाना जरूरी है। फिर आपकी पसंद के अपने कलर्स, आपकी पसंद के अपने स्टाइल, और जो कंफर्टेबल चीजें हैं वो देखना सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी तो बोले जाएगा बल्ले बल्ले। सही में शूज ऐसे होने चाहिए कि कहीं पे भी बोले ना तो डांस करना, बस ऐसे बाएं हाथ का खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे वो हील्स पहनी भी हो, चाहे वो शूज़ अपने आराम से नॉर्मल शूज़ पहने हो, स्पोर्ट्स या रनिंग शूज़ हो, कस्टमाइज शूज़ हो, स्लिप ऑन शूज़ हो, सस्टेनेबल या इको फ्रेंडली शूज़ हो या स्मार्ट शूज़ हो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बिल्कुल स्टाइल में रहने का, और स्टाइल में जब आप रहते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो फिर शूज़ उनकी बारी भी ज़रूर आनी चाहिए। अगर मैं ये बोलूँ कि स्पोर्ट्स और रनिंग शूज़ की बात करूँ, तो स्पोर्ट्स और रनिंग शूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि भाई हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जब हमें स्कूल जाना होता है, अपने बच्चों के साथ जाना होता है, या फिर अपने लिए भी फिटनेस के टाइम पर आप कुछ ऐसे गेम्स खेलते हैं ऑफिस के टाइम के बाद, या फिर सैटरडे संडे, या जो अगर हमारे यूथ की बारे में बात करूँ तो वो तो देखिए हर रोज़ अपना इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहते हैं, तो उनकी जो रनिंग और ये खेल ऐसे ही हो जाता है। तो स्पोर्ट्स और रनिंग शूज़ की बात करूँ तो फिटनेस ट्रेंड के कारण, इसी वजह से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शूज़ की डिमांड तेज़ी से बढ़ गई है, और इसमें पता है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बेहतर कुशिंग मिल जाती है, शॉप जो शॉक होता है ना वो एब्जॉर्बर्स भी मिल जाते हैं, उसमें मजबूत ग्रिप मिलती है। तो ये जूते रनिंग, जिम और वर्कआउट के लिए तो अच्छे होते ही हैं, जर्नली भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है ये सब तो मिल जाते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरह से बनवाना है, थोड़ा इसमें ये चीज़ें हों, इसमें थोड़ी कुशिंग हो और पहनने और उतारने में इजी भी हो, काफ़ी सारी जो है मिक्स एंड मैच करके आप चीज़ें बनवाना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, आपके लिए भी है ट्रेंड में बहुत सारी चीज़ें, कस्टमाइज शूज़। हाँ जी, आप ही के लिए है वो आंटी जी, और आपके लिए भी है वो सर, मैम, आपके लिए तो ये परफेक्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि लोग अपने जूतों को अपनी पसंद के अनुसार डिज़ाइन करवा रहे हैं, आप भी मैम, आप भी करवा रही है ना, तो ठीक है, नाम या फोटो प्रिंट आप अपने शूज़ पे करवा सकते हैं, देखिए कितना अच्छा होगा ना। अगर आपको किसी को गिफ्ट भी देना है ना तो क्या मस्त लगेगा, कितना अच्छा लगने वाला है। यूनिक कलर कॉम्बिनेशंस आप करवा सकते हैं जो आपको पसंद है, या अगर आपकी ड्रेस ऐसी है पर्टिकुलर उस कलर में, तो उसी कलर में आप उस यूनिक कलर कॉम्बिनेशन को बिल्कुल हाँ जी करवा सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल स्टाइल भी आप करवा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी शूज में हील आप ज्यादा लेना चाहते हैं या फिर कम लेना चाहते हैं, कुशनिंग हो लेकिन बहुत ज्यादा ना हो, शॉक एब्जॉर्बर्स हो लेकिन थोड़े हल्के, ताकि आपको वो ऐसा ना लगे कि हाँ भैया अभी तो स्पोर्ट्स खेलने के लिए जा रहे हैं, नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा सब चीज़ अगर आप अपने शूज़ में कस्टमाइज करके करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, है ना, कितना सही, एक ही जगह आपको ये देखिए इतनी सारी जानकारी मिल रही है ना, इंफोटेनमेंट का खजाना।

फिल्म रेनबो, और वो भी उसमें मस्त मलंग आरजे श्वेता के साथ। थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ कि जूते खरीदते समय आखिर क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, और इसके अलावा अगर आपको जूते खरीदने हैं तो वो किस टाइम पे खरीदिए। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फिलहाल जो है ना, आपको ये बड़ा प्यारा सा गाना सुनवा रही हूँ, देखिए मन खुश हो जाएगा। इसका ना म्यूजिक ही ऐसा कि डांस करने का मन करता है एकदम, ऐसे ही ना बिल्कुल झूमना शुरू हो जाते हैं।

और ऐसी ही प्रीत ना हमें अपने शूज के साथ अपनी सैंडल्स के साथ हो जाती है। कितना एकदम मोह हो जाता है ना जब हम मार्केट जाते हैं और कोई सैंडल या शूज हमें पसंद आ जाता है, तो बस ऐसा लगता है कि यही हमारी लाइफ है। वैसे लाइफ तो है, क्योंकि सही शूज़ हमारी बॉडी पोस्चर के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे घुटनों के लिए भी अच्छा है, और बाकी पूरा का पूरा जो हमारा वज़न है वो इन पैरों पे जाता है, और वो बेचारे पैर अगर उन्हें एक अच्छे से हम शूज़ या सैंडल्स दे देना तो बात ही क्या है। अब बताती हूँ आपको कि जूते खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। सबसे पहला, सही साइज़ आपको अगर शूज़ का चुने तो ही बेहतर है। हमेशा अपने पैर के साइज़ के मुताबिक ही जूते खरीदें। गलत साइज़ से पैरों में दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अच्छा नहीं नहीं ये तो अच्छा लग रहा है, और सामने दुकान वाले भैया बोल देते हैं मैम यही वाला साइज़ है, अभी दूसरा साइज़ नहीं है, और आपको लगता है चल ठीक है ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम, हाँ छोटा ही तो है थोड़ा सा, आगे भले ही वो अंगूठा बेचारा ऐसे यूँ मुड़ जाए, उसकी गर्दन यूँ ऐसे टेढ़ी सी हो जाए, लेकिन नहीं जी हमें तो ये शूज़ लेना ही है। तो प्लीज़ इतना मोह मत रखना, अपने पैरों के शूज़ का साइज़ एकदम सही लीजिएगा। कंफर्ट को हमेशा आप प्राथमिकता दें, स्टाइल के चक्कर में कंफर्ट को नज़रअंदाज ना करें, और कुशनिंग और सॉफ्ट सोल वाले जूते होते हैं या सैंडल्स होती हैं वो ज़्यादा आरामदायक होते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब आप दुकान पे जाएं तो 5-10 मिनट उन शूज़ को पहन के वहाँ चलिए ना आराम से, बाकी के शूज़ को भी देखिए, सैंडल्स देखिए, ज़रा पूरी दुकान देख लीजिए उसकी, वो पहन कर ही वहीं पर आपकी चेकिंग भी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो आपने सैंडल लिया या शूज़ लिए हैं, फुटवेयर जो लिया है, ये बिल्कुल आपके पैरों के लिए एकदम सही है। अच्छा, अब हर काम के लिए अलग अलग जूते ज़रूरी हैं, जैसे रनिंग के लिए रनिंग शूज़ हैं, ऑफिस के लिए फॉर्मल शूज़ हैं, पार्टी के लिए स्टाइलिश शूज़ हैं। तो ऐसा ना हो कि आप एक ही शूज़ को सब जगह बस पहन के जाए जा रहे हैं। हाँ अगर मजबूरी है वो तो एक अलग बात हो जाती है। मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल में बहुत ज़्यादा उसकी जो क्वालिटी है मटेरियल तय करता है। अब जैसे मेश होता है, मेश हल्का और सांस लेने वाला ये एक मटेरियल होता है। सिंथेटिक की बात करूँ तो ये बजट फ्रेंडली होता है, लेकिन बाकी और चीज़ें भी आपको देखनी ज़रूरी हैं। लेदर की बात करें तो टिकाऊ और स्टाइलिश होता है, लेकिन बरसात में इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इवन अगर आपके पैरों में पसीने ज़्यादा आते हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा। वैसे एक बात बताऊँ, जो हमारे पुष्पा महाराज थे ना, उनका भी स्टाइल एकदम गजब था, है ना। कैसे उनकी स्लीपर का जब निकल जाते हैं पैर से, लेकिन उसके बावजूद वो क्या स्टाइल से डांस करते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। सुनते रहिए और जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ। आपको बस यही परी मैं कहती हूँ टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि भाई अगला प्रोग्राम भी तो आने वाला है ना। अगला प्रोग्राम कौन लेके आने वाली है? शैली भाषांजलि, और प्रोग्राम होने वाला है सिटी लाइट्स। वहां आपको जानकारी मिलने वाली है दिल्ली NCR में कहां क्या हो रहा है और क्या क्या जानकारियां देंगी, वो जानने के लिए आपको उन्हें सुनना पड़ेगा। अच्छा एक लास्ट टिप दे जाती हूँ, जब भी जूतों की या फुटवेयर्स की खरीदारी करें तो दोपहर में करें। क्यों दोपहर में? इसलिए क्योंकि आप पूरे दिन चलते हैं तो उसके बाद दोपहर तक पैर हल्के से सूज जाते हैं, और इसीलिए सैंडल हमेशा दोपहर या शाम के समय खरीदनी चाहिए, जिससे आप एकदम सटीक आपकी फिटिंग मिल सके।

5 बज चुके हैं और लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशन के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का आज उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन की यात्रा पर हैं। श्री शाह पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी की। संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। आज विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जा रहा है। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा जारी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मालदोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 2-3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा बीता होगा। और अब जुड़िए सांझ के शो सिटी लाइट्स में, जहाँ बातें होंगी ऑब्वियसली सिटी से जुड़ी हुई। और मेरा नाम है शैली भाषांजलि।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिटी लाइट। सांझ के शो में आपके साथ मैं शैली भाषांजलि। और आज वर्ल्ड इमोजी डे है, जिसको हम इतना यूज़ करते हैं अपनी लिखित भाषा में, रोज़मर्रा की भाषा का हिस्सा हो गई है। विश्व इमोजी दिवस है, जिसको हम इतना यूज़ करते हैं, कभी किसी को स्माइली बना करके किसी का दिन बना देते हैं, कभी हार्ट का इमेज भेज करके अपनापन जता देते हैं, या बिना शब्दों के सम्मान व्यक्त करते हैं एक हाथ जुटा हुआ इमेज भेज करके। वेल, अगर सोचिए इस चैट से सारे इमोजी हटा दिए जाएं तो कितनी अधूरी लगेंगी ना बातें। ठीक है, और ठीक है विद अ स्माइली, कितना फ़र्क है सोच करके तो देखिए। वेल, जेंजी की ना एक अलग इमोजी डिक्शनरी है, और जो थोड़ी सी पुरानी पीढ़ी है उनका अंदाज भी थोड़ा सा अलग है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू जेनरेशंस। लेकिन दिलचस्प है ये बात, क्योंकि हमारे माता पिता दादा दादी उनकी जो पीढ़ी है ना, उनके संदेश में आपको बहुत सारी स्माइलीज मिल जाएंगी और फूलों के गुलदस्ते भी मिल जाएंगे। आई मीन सो मेनी ऑफ देम, सो मेनी फ्लावर्स, सो मेनी स्माइलीज। आई थिंक बस थोड़ा सा सीमित होता है उनका इमोजी, बट स्टिल ये है अपना भाव, अपनी भाषा हर पीढ़ी की। वेल, आवाज़ की बात की अपनी खनक होती है, लेकिन इमोजीज हैज़ रियली मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, दिस टूल ऑफ एक्सप्रेशन इन आवर लाइव्स। हैप्पी वर्ल्ड इमोजी डे। बस खुश रहने का बहाना नहीं, सच्ची बात ढूंढते हैं। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, सांझ के शो में जुड़े रहिए।

5:13 हमारे स्टूडियो की घड़ी में कामकाजी दिन की हलचल तो थम गई होगी थोड़ी सी, तो मन के कोलाहल में अब अपनी तान सुनिए।

आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं सांझ का शो सिटी लाइट्स, और आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल जस्टिस डे। याद दिलाता है कि सिर्फ अदालतों की नहीं बल्कि हम शायद हम सब की जिम्मेदारी बनती है, जब हम सच का साथ देते हैं ना, भेदभाव नहीं करते, सारे नियमों का पालन करते हैं, अधिकारों का सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण भी करते हैं, योगदान भी देते हैं। जस्टिस इज नॉट ओनली अबाउट पनिशिंग, लेकिन सबको समान अवसर मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, शायद यही ध्येय है। चलिए ना संकल्प करते हैं कि निष्पक्ष रहें, सही का साथ दें, अन्याय को तो कतई बर्दाश्त ना करें। जुड़े रहिए सिटी लाइट्स में।

0: द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनें।

और अब सिटी लाइन्स में कुछ मौसम की बात कर लूं, दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है ना, जैसे हाइड एंड सीक खेल रहा है, बादल आते हैं, उम्मीद जगा जाते हैं और फिर बिना बरसे आगे बढ़ जाते हैं, धूप भी बरकरार, उमस भी बरकरार। वेल, अपना अंदाज में इतरा रहा है मौसम, लेकिन मौसम का मिजाज को कभी इस तरह मत आंकिए, क्योंकि कब बदल जाए बहुत मुश्किल है कहना। फिलहाल गर्मी ने तो अपनी पकड़ ढीली नहीं की, इसलिए छाता भी साथ में रखिए, पानी भी साथ में रखिए, क्योंकि दिल्ली का मौसम और दिल्ली का ट्रैफिक दोनों कब करवट बदल दी अंदाज़ा ज़्यादा लगता नहीं है। वेल, यू स्टे ट्यून्ड टू सैटेलाइट। समय बता दूँ 5:26 एग्जैक्टली हमारे स्टूडियो की घड़ी में। समय का सौंदर्य तो यही है, किसी के लिए नहीं ठहरता। सांझ का शो सिटी लाइट्स, आप कहीं नहीं जाइएगा।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: Yes, indeed, you're tuned into FM Rainbow. आप सुन रहे हैं City Lights, and I wish and I hope and I pray that you're driving absolutely carefully. अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं ना, तो सिर्फ चालान भरना काफी नहीं होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक नई पहल, जिसके बारे में आपको City Lights में बताती हूँ। अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया ना, तो ट्रैफिक पाठशाला लगेगी, दैट इज सड़क सुरक्षा के लिए एक छोटा सा सेशन, अवेयरनेस सेशन आपको दिया जाएगा, लेक्चर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है, सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ ड्राइव करना और प्रेरणा देना। तेज रफ्तार हो, रेड लाइट जंप हो, गलत दिशा में वाहन चलाना हो, मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो या नशे में ड्राइविंग हो, हेलमेट, सीट बेल्ट इत्यादि नियम कई सारे हैं, महत्व जानना चाहिए, सरल तरीके से समझाया जाएगा। तो इसलिए आपको सोचा बता दूं, डबल ताकीद हो जाएगी ना, एक अभियान चल रहा है, ऊपर से आप खुद अपने लिए और अपनों के लिए हमेशा सुरक्षित चलाते हैं। 5:32 हो चुके हैं। एक्चुअली समय के इन बीते हुए पलों के साथ साथ चलिए, बस यही तो है, बस एक पल।

वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। और कुछ दिनों से दिल्ली हार्ट आईएनए में वस्त्र मंत्रालय ने एक अच्छा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसको कहते हैं मरम्मत मेला, यानी पुराने जो कपड़े होते हैं, सामान होते हैं ना, उसको एक नया जीवन देना। ये जो मेला है ना, अपसाइक्लिंग, रीसाइक्लिंग, मरम्मत को बढ़ावा दे रही है। टिकाऊ यानी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होती है ना, उसको एनकरेज करने के लिए मरम्मत मेला दिल्ली हार्ट आईएनए में आयोजित किया गया है पिछले कुछ दिनों से। अब कोई भी वस्तु अगर पुरानी हो जाती है तो उसकी कहानी का अंत नहीं होता, शायद एक नई शुरुआत हो सकती है। कमाल की बात है कि इस मेले में ना देश भर के डिज़ाइनर, कारीगर, रीसाइक्लिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोगों को काफ़ी जागरूक कर रहे हैं कि कटिंग कैसे की जाए, पैचवर्क कैसे किया जाए, रफू, स्टिचिंग इत्यादि जो टेक्निक है ना, उससे जो पुराने कपड़े हैं वो नए हो जाते हैं, थोड़ा सा आकर्षक भी लगते हैं। इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट स्टाइल। अब आप क्या कीजिएगा, आप ऐसा कीजिए, अपनी अलमारी का अध्ययन कीजिए थोड़ा सा, उसके बाद ये सोचिए कि कुछ ख़रीदना है या रिपेयर करना है, रिसाइकिल करना है। एक्चुअली इट्स योर चॉइस। And to drive carefully is not your choice, it's a compulsion for the city and by the city people.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। अगर आप फैशन के, हैंडलूम के या शॉपिंग के थोड़ा सा ज़्यादा शौकीन हैं तो आप ये जानते होंगे कि पिछले दिनों भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 चल रहा है। इनफैक्ट आज तो आखिरी दिन है, लेकिन ख़ास बात यह है कि अब तक केवल बिजनेस विजिटर्स के लिए खुला है ये जो मेगा एक्सपो है, लेकिन आज आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। वेल, टुडे इट्स टू लेट, बट खोल दिया गया है। अगर आप नहीं गए हैं अभी तक, जा भी सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हमारे सिटी में ऐसे इंटरेस्टिंग और मेगा इवेंट्स होते हैं ना, उसके बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। एक्चुअली स्पीकिंग, भारत टेक्स केवल फैशन ही नहीं बल्कि फार्म से फैशन और फाइबर से फ्यूचर, ये जो भारत की पूरी टेक्सटाइल जर्नी है, यात्रा है, इसका एक बहुत बड़ा मंच है ये। तो भारत मंडपम में ये आयोजित हुआ भारत टेक्स 2026।

और अगर आज आप शाम को और भी देर सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू दिस. ट्रैफिक डाइवर्जन्स काफ़ी सारा है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज के लिए बताया है कि गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है और वहाँ जो भीड़ के मद्देनज़र एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और उसके मुताबिक 8 बजे तक, आज शाम 8 बजे तक जो रिलेटेड एरियाज़ हैं उसमें विशेष ट्रैफिक नियम और डाइवर्जन्स रहेंगे. तो नई दिल्ली के कई हिस्सों में हो सकता है कि ट्रैफिक का सामना करना पड़े. सुचारू व्यवस्था हो, यातायात रहे, इसके लिए काफ़ी सारी एडवाइजरी उन्होंने दी है. सो प्लीज़ प्लान केयरफुली एंड जस्ट बी अपडेटेड अबाउट इट.

आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे थे सिटी लाइट्स। आज के लिए बस इतना ही। सिटी लाइट्स ऐसा शो जिसमें रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है, कुछ रेगुलर बातें भी आप तक पहुंचती है। कोशिश तो यही रहती है। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और इसी कोशिश में आनंद ढूंढती हूँ। और जब आप तक ये सब पहुँचता है तो आनंद थोड़ा सा और बढ़ जाता है। स्टे ट्यून्ड टू FM Rainbow।

पेशें अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशन के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। जलंधर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन की यात्रा पर हैं। श्री शाह पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे।

सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी संस्थागत ढांचा मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी की। संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत आवास सूचीकरण और आवास जनगणना HLO के लिए स्वगणना SE सुविधा आज से तमिलनाडु और त्रिपुरा में शुरू। रोग निगरानी और जन स्वास्थ्य कार्यक्रम पर दो दिन की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा जारी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने आज सीरिया, कुवैत और ओमान में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में अगले दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की। ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु जापान ओमन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो ये तो थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक।

आपकी वाणी आकाशवाणी। और दिल से दिल तक प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका अपना दोस्त आरजे वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। कैसे हैं आप? गर्मी थोड़ी सी है आज, क्योंकि आज लग रहा है कि बारिश होगी, लेकिन आसार तो लग रहे हैं। डोंट वरी, आपके मैसेजेस की बारिश तो होने वाली है, और हो सकता है जब आपके मैसेजेस की बारिश हो साथ ही साथ बाहर आसमान में जो बादल छाए वो भी बरसने लगे। फिलहाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में, और कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। और आज का टॉपिक है, इस गाने के बाद बताऊंगा और फिर बातों का सिलसिला होगा दिल से दिल तक।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। ये वो प्रोग्राम है जिसमें आपके मैसेजेस आते हैं और हम अपने मैसेजेस के साथ आपके मैसेजेस के साथ अपने जो है ना बातों का तड़का लगाकर गीतों का तड़का लगाकर और उनको परोस देते हैं आपके सामने, ताकि प्रोग्राम आपके दिल से हमारे दिल तक बिल्कुल कनेक्शन जुड़ जाए। और आज के टॉपिक से पहले मैं यही कहूँगा कि जिंदगी जो तू यूं नचा रही है ना वो तो ठीक है, पर कम से कम गाने तो ढंग के बजा। गाने बजाने के लिए हम है ना आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। तो आज का जो टॉपिक है वो भी जिंदगी से रिलेटेड ही है। टॉपिक ये है दोस्तों कि जिंदगी में सबसे आसान काम क्या है और सबसे मुश्किल काम क्या है आपके हिसाब से। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किल होता है और कुछ ना कुछ आसान होता है। जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ अगर लें तो स्टूडेंट कहेगा कि सोना आसान है, मौज मस्ती करना आसान है, घूमना फिरना दोस्तों के साथ बातें करना आसान है, चैटिंग करना आसान है ना, लेकिन पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल। और अगर किसी नौकरी वाले जो नौकरी कर रहा है बेचारा, सुबह से शाम तक वो कहता है कि यार नौकरी करना बड़ा मुश्किल है ना, और जो नौकरी के अलावा सोना आसान है, आराम करना आसान है, लेकिन नौकरी करना बड़ा टफ है। तो हर एक के अपनी अपनी लाइफ की अपनी अपनी प्रॉब्लम है ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से जिंदगी में सबसे मुश्किल सबसे टफ काम क्या है और सबसे आसान काम क्या है। अब आप ये मत कहिएगा कि आपको मैसेज भेजना बड़ा मुश्किल है, नहीं नहीं ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि मैसेज बड़ा ही आसान है जो आप भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और मैं सभी से कहूँगा जो अभी अभी हमारे साथ ट्यून किए हैं कि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और वीकेंड है, कल सैटरडे है,

संडे है और वीकेंड को आप इंजॉय करेंगे, आई होप कहीं रेस्ट करेंगे, कहीं घूमने फिरने जाएंगे। मौसम भी थोड़ा सा इसी तरह का रोमांटिक बन रहा है, बारिश का मौसम होने हो गया है, मतलब बारिश कभी भी हो सकती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। फिलहाल आपके लिए मैं एक और ब्यूटीफुल ट्रैक चला रहा हूँ, और टॉपिक जो है कि सबसे आसान काम जिंदगी में क्या है आपके हिसाब से और सबसे मुश्किल काम क्या है, ये टॉपिक पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने नाम और शहर के नाम के साथ। नंबर 9868107070। कुछ हमारे दोस्त इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए होंगे, कुछ ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आप चिंता मत कीजिएगा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है कि जिंदगी में सबसे आसान काम क्या है और सबसे मुश्किल काम क्या है आपके हिसाब से। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को मुश्किल मानते हैं। और कई हमारे दोस्तों के कहेंगे ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, चाहे एवरेस्ट पे चढ़ना हो वो भी आसान है। सोच लो तो आसान है और सोचो तो मुश्किल है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से सबसे आसान काम और सबसे मुश्किल काम क्या है। जल्दी से लिख कर भेजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर और क्योंकि हमारी लाइनें आपके साथ खुली हुई हैं 7 बजे तक, मतलब ओपन तो है लेकिन हमारा प्रोग्राम 7 बजे तक है दोस्त। तो 7 बजे तक आप मैसेज भेज सकते हैं और आपको बताना है किस पे, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। नंबर है 9868107070 और आपके मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और मैसेज बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे आए हैं, इतने इंटरेस्टिंग मैसेज आए हैं। और कार्यक्रम का जो हम सबसे पहला मैसेज जो हम लेने वाले हैं वो है, भेजा है हमें नरेंद्र सोनी ने पटियाला से, और लिखते हैं कि जिंदगी में सबसे आसान काम है झूठ बोलकर मुसीबत से निकल जाना और सबसे कठिन काम है सच्चाई का सामना करना। बिल्कुल सही कहा दोस्त, झूठ बोलना बड़ा आसान है और सच बोलकर उसके ऊपर अडिग रहना वो सबसे मुश्किल है। जो बुझ गए राह में चिराग जल दिए, अंधेरे बचा के दामन चुपचाप चल दिए। मैंने तपित से दूर मांगा था एक पल और तुमने तो मेरे दोस्त मौसम बदल दिए, मौसम बदल दिए। क्या बात है, प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से लिखते हैं। और प्रेमचंद जी आपने बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से सबसे आसान काम क्या है और सबसे मुश्किल काम क्या है। और मोहम्मद सरफराज आलम जौकी हरदर्शा बाजार अलिया बिहार से लिखते हैं, तेरी याद का मौसम कभी ढलता ही नहीं, बिछड़ने का जख्म आज तक भरता ही नहीं, मुलाकात की उम्मीद लिए बैठे हैं हम मगर तेरा इंतज़ार कभी ख़त्म होता ही नहीं। अरे हम आपने इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया, हम आ गए ना आकाशवाणी एफ एम रेनबो पर, तो इंतज़ार का है का। अब आप जल्दी से लिख कर भेजिए कि आपके लिए मुश्किल और आसान काम क्या है। और सबसे आसान काम है किसी से गले लगना और सबसे मुश्किल काम है पिता को गले लगाना। राकेश वोरा प्रधान इनक्लेव बुराड़ी दिल्ली से लिखते हैं। अब ये इन्होंने क्यों लिखा है आई डोंट नो, पिता के तो कभी भी गले लग सकते हैं ना, पिता तो पिता होता है। हाँ, और किसी के भी गले लगना ये सबसे मुश्किल काम है, सबसे आसान काम है किसी के भी गले लगे। अगर कोई अनजान व्यक्ति की अगर आप लगेंगे, वो कहेंगे भैया गले क्यों पड़ रहे हो, क्यों क्यों है ना, तो आपने क्यों लिखा है ये ज़रा लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्त। और अगला मैसेज हमें भेजा है सोम गुप्ता चंडीगढ़ से, गुड इवनिंग। और सबसे आसान काम है गलती निकालना और सबसे कठिन काम है गलती को ठीक करना। बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा आपने। और अगला मैसेज हमारी तरफ से, लगभग 15 घंटे से बारिश हुआ है और बिल्कुल सावन की झड़ी। जिंदगी में वादा करना आसान है लेकिन सच्चे दिल से वादा निभाना मुश्किल है। ये हीरामणि वर्मा जी ने भेजा है भाटापारा दत्त रिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल आज बिल्कुल दिल से मैसेज कर रहे हैं आप, बिल्कुल। और अगला मैसेज हमें भेजा है प्रकाश गोगिया जी ने कड़कड़डूमा दिल्ली से, और लिखते हैं सबसे आसान काम है कि किसी की गलती निकालना और सबसे मुश्किल काम है जीवन में अपने आप को अनुशासन से चलाना। बिल्कुल सही कहा, डिसिप्लिन से चलाना बड़ा ही मुश्किल होता है। फिलहाल हमें है कि हम डिसिप्लिन से आपके लिए गाना प्ले कर दें और उसके बाद आपके मैसेजेस लें, है ना, तो डिसिप्लिन यहाँ पर भी रखना ज़रूरी है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और आज मैसेज मसाला मिक्स में हमारा टॉपिक है कि जिंदगी में सबसे आसान काम क्या है और सबसे मुश्किल काम क्या है आपके हिसाब से। जल्दी से लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और चंद्रपुर से हमें एक मैसेज भेजा है गौरव इंदूरकर, नेशनल पार्क तालुका चिमूर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से। लिखते हैं, सबसे आसान काम है एफएम रेनबो सुनना, गाने सुनना, रेडी सुनना, यही है हमारा। और सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम होगा एफएम रेनबो नहीं सुनना है। और मतलब वो एफएम रेनबो ऐसा नहीं है कि एफएम रेनबो नहीं सुन सकते, एफएम रेनबो सुन सकते हैं। न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से हर जगह, देश के किसी भी कोने में, पूरे विश्व में कहीं पर भी हैं आप, न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तो दिल से दिल तक हम हर जगह जुड़ जाते हैं, बस दिल से याद करिएगा। और सबसे आसान काम है, प्रणय शर्मा लिखते हैं न्यू दिल्ली से, ईजीएस्ट इज टू एडवाइस समवन एंड मोस्ट डिफिकल्ट इज टू फॉलो दैट एडवाइस। किसी को भी सलाह देना बड़ा आसान है और सलाह को फॉलो करना, उस सलाह को मानना, वो सबसे मुश्किल काम है ना। और सनी कपूर जर्मनी से हमें मैसेज भेज रहे हैं, लिखते हैं सबसे आसान है पानी पीना और मुश्किल है झगड़ालू जो इंसान है उसके साथ रहना, जो झगड़ा करता है सबसे ज़्यादा अच्छा जी, ये भी आपने सही बताया। और जिंदगी में झूठ बहाने लगाना सबसे आसान काम है और मुश्किल काम हमेशा सच बोलना, अक्सर देखा है। अनिल शर्मा सरता विहार से लिखते हैं, बिल्कुल ठीक कहा दोस्त। और जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है अपने आप को हर

0: हाल में सच्चा, धैर्यवान और इंसान बनाए रखना, और सबसे आसान है, सबसे मुश्किल काम है अपने आप को हर हाल में सच्चा, धैर्यवान और इंसान बनाए रखना, सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम है। ये तो मुश्किल काम था, आसान काम क्या है? आसान काम है दूसरों की कमियां गिनाना, बिना समझे राय देना और आलोचना कर देना। असल जीत वही है जो इंसान हालात से नहीं अपने चरित्र से पहचान बनाता है। मोहम्मद सरफराज आलम जोकीहट, दर्शना बाजार, अरिया, बिहार से लिखते हैं। क्या बात है मोहम्मद। और मोहल्ला हलवाइन शिरकुट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी लिखते हैं कि गर्मी बहुत है, बारिश नहीं हो रही है, क्या करें क्या करें। मैं अभी अभी सोच के बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। और सबसे मुश्किल काम है, मुझे लगता है कि पैसा कमाना, सबसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है और खर्चा करने में कुछ पल लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, पैसा कमाना सबसे मुश्किल है और पैसा खर्च करना बड़ा आसान है। और आप कह रहे थे कि गर्मी लग रही है, क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप आराम से पंखे की हवा खाइए और एफएम रेनबो सुनिए, बस इंतज़ार करिए, बारिश आज या कल में हो ही जाएगी। फिलहाल आपके मैसेजेस की बारिश हो रही है, उधर से हमारे गानों की बारिश हो रही है, तो इस बारिश को इंजॉय कीजिए, गानों की और मैसेजेस की। फिलहाल हमारी बातों की बारिश हो रही है, तो मैं बातों की बारिश को रोकता हूँ और आपको गानों की बारिश से रूबरू करवाता हूँ।
1: जगाती है कयामत कोई।

0: अरे जनाब, जान देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैसेज करना है। मैसेज? जी हाँ, हमारे टॉपिक पे। टॉपिक वही है। टॉपिक क्या है आज का? आज का मैसेज मसाला मिक्स का टॉपिक है कि सबसे आसान काम क्या है और सबसे मुश्किल काम जिंदगी में क्या है आपके हिसाब से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आपके मैसेजेस का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स चल रहा है और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन। और हमारा को एक मैसेज भेजा है, आई एम टिट्टू फ्रॉम कुल्लू मतलब हिमाचल प्रदेश। बारिश हो रही होगी वहां पे। कुल्लू का नाम सुनते ही ना दिमाग में अपने आप ठंड सा एहसास होने लग जाता है। कुल्लू हो मनाली हो, है ना, तो अपने आप ही दिमाग अपने आप कूल होने लग जाता है। और कहते हैं कि जिंदगी का सबसे आसान काम है दूसरों की गलती निकालना और सबसे मुश्किल काम है खुद की गलती को मान लेना। बिल्कुल ठीक कहा टीटू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सही फरमाया। और सिमरन मुखी, अनीता मुखी, सुदर्शना मुखी शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं, जिंदगी में सबसे आसान काम है दूसरों की बुराई करना और सबसे मुश्किल काम है इज्जत कमाना। बिल्कुल ठीक कहा। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, जिंदगी में सबसे आसान काम है किसी से झूठ बोलना और जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है सच कहना। सच कहने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। बिल्कुल ठीक कहा। और जिला बीरभूम बिशनपुरा बंकिम दास पश्चिम बंगाल से लिखते हैं, और जिंदगी में सबसे आसान काम है वादा करना, सबसे मुश्किल काम है वादा निभाना। बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल बिल्कुल, वादा करिए ना, और वादा करिए तो वादे को निभाइए जरूर। मुजफ्फरनगर बिहार से लिखते हैं रोशन कुमार, लिखते हैं सबसे हार्ड है कंपनी में काम करना और सबसे इजी है पर्सनल बिजनेस। सबसे इजी है पर्सनल बिजनेस, ऐसा कैसे, कौन सी किताब में लिखा है सबसे इजी है? दोनों ही काम मुश्किल हैं दोस्त। जो नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछो, वो कहेंगे नौकरी करना बड़ा मुश्किल है, और जो बिजनेस कर रहे हैं वो कहेंगे बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। एनी हो, आपकी अपनी चॉइस है। थैंक यू सो मच हमारे साथ शेयर करने के लिए।

पर दोस्त मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक मैसेज नहीं किया है, जो अभी ड्राइव कर रहे हैं, तो आप गाड़ी को साइड लगा के ड्राइव थोड़ी सी करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज ड्राइव करते हुए मैसेज मत करिएगा, क्योंकि ड्राइव सेफली, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। आप इंजॉय कीजिए, और जो हमारे दोस्त अभी चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और साथ में पकौड़े खा रहे हैं या बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय निकालिए, बिस्किट को एक तरफ रखिए, चाय को एक तरफ रखिए, मोबाइल उठाइए और हमें मैसेज भेज दीजिए। 9868107070 हमारा नंबर है। और लिखना क्या है कि सबसे आसान काम और सबसे मुश्किल काम क्या है आपके हिसाब से, जल्दी से लिख के भेजिए अपने नाम और शहर के नाम के साथ। और मैसेजेस बहुत सारे आपके आए हैं दोस्त, और एक और मैसेज हमें भेजा है नीलम ने बरवाला से, दिल्ली बरवाला से। लिखते हैं, सबसे मैं हाउसवाइफ हूं और मुझे अपना काम मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जो वर्किंग वुमन है उनका काम सबसे मुश्किल है, घर संभालना भी और बाहर का काम संभालना भी बहुत मुश्किल काम है। बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उनको सैल्यूट करते हैं जो ये दोनों काम बहुत अच्छी तरह से करती हैं। घर बींग ए हाउसवाइफ, घर को भी संभालती हैं और बाहर को, एज ए वर्किंग वुमन बाहर को भी संभालती हैं। सैल्यूट है उनको सच में। और उपदेश देना आसान है और उस पर अमल करना मुश्किल है। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अरिया बिहार से लिखते हैं, बिल्कुल सही कहा। और डेरा बसी पंजाब से ललित राणा लिखते हैं, सबसे आसान होता है दूसरों की गलती निकालना, और जो हम बड़े मजे से करते हैं, और सबसे मुश्किल काम है अपनी गलतियों को दूसरों से सुनना, जो हमें लगता है हमारी ईगो को हर्ट कर गया, बिल्कुल सही कहा दोस्त। कंचन सोनिया विहार से लिखते हैं, सबसे आसान है दूसरों की गलती ढूंढना बताना, और सबसे मुश्किल है अपने आप में गलती ढूंढना, है कि हम अपने आप कभी गलत नहीं मानते कि हम गलत हैं किसी चीज़ में, बिल्कुल ठीक कहा। और अगला मैसेज हमें भेजा है राकेश वोरा जी ने प्रधान इनक्लेव से, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे फादर अब नहीं है। ओ, इन्होंने मैसेज भेजा था कि पिता को गले लगाना सबसे मुश्किल है और किसी को भी गले लगाना आसान है, और जो अब जिंदा नहीं है, मैं कोई भी खुशी में उनके साथ मिलकर बांटता था लेकिन अब कभी गले नहीं लगा पाता, आज वो नहीं है तो पापा को सोचकर हमेशा यही सोचता हूँ कि काश वो होते तो उन्हें एक बार गले ज़रूर लगाता, सारी खुशियाँ उनके साथ बांटता। बट राकेश वोरा जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं यही कहूँगा कि हमारे जो भाई हैं बहन हैं, वो कहीं ना कहीं उन माता और पिता का ही एक रूप होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें वो कुछ ना कुछ आभा दिखाई देती है, तो उनको गले लगाइए। और जब भाई बहन सब मिलकर एक साथ बैठते हैं ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं वो माँ का और पिता का रूप दिखाई देता है। एनी हाउ, वो कमी तो रहेगी माता पिता की, लेकिन ये दस्तूर है ना, तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है। एनी हाउ, थैंक यू सो मच इस लवली और प्यारे से इमोशनल मैसेज के लिए। और देवेंद्र इंगटी करबी आंगलोंग असम से लिखते हैं, सबसे आसान काम है रिश्ता तोड़ना और सबसे कठिन काम है रिश्ता जोड़ना। आपके हिसाब से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे आसान काम क्या है और सबसे मुश्किल काम। सबसे आसान काम आपको लग रहा होगा मैसेजेस यहां पर आ रहे हैं उनको पढ़ना, और हमारे लिए सबसे यहां पर इस वक्त मुश्किल जो है कि इतने मैसेजेस को हम कैसे प्रोग्राम में शामिल करें, और सबसे आसान काम है हमें कहना कि आप मैसेज भेजिए, है ना। तो ये हमारे लिए भी कभी कभार मुश्किल और आसान होता है, लेकिन हम फिर भी बैलेंस बनाते हैं, कोशिश होती है कि सारे मैसेजेस हम शामिल करें और आपको साथ साथ एंटरटेन भी करते रहें। और फिलहाल समय है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और उसके बाद फिर आपके मैसेजेस लेते हैं और बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

जी हाँ, हमको भी आपसे प्यार हुआ है और हमारी भी दुआ पूरी हो गई है आपसे मुलाकात जो हो रही है मैसेज मसाला मिक्स में। और टॉपिक है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है और सबसे आसान काम क्या है। और हमारे एक और प्यारे लिसनर हैं कुलदीप शर्मा और संध्या शर्मा, जो लक्ष्मी नगर दिल्ली से हमें मैसेज भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे मुश्किल काम है, कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं सबसे मुश्किल काम है बीवी को संभालना और सबसे आसान काम है शादी ना करना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एनी हाउ, थैंक यू सो मच कुलदीप जी और संध्या जी इस प्यारे से मैसेज के लिए और मूड को और थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए। और अगला मैसेज जो हमें भेजा है वो भेजा है हमें वीरू बख्शी जी ने। लिखते हैं, आज के टॉपिक बड़ा बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। और लिखते हैं कि जीवन में जो है वो है कि सबसे मुश्किल कि गलत लोग अगर मिल जाएं और गलत करते रहें, फिर भी हम अच्छी तरह से उनके साथ बर्ताव करें, उनके साथ बोलते रहें, बड़ा मुश्किल है। बताएं करें तो क्या करें। बिल्कुल, अगर कोई गलत आपके साथ कर रहा है, कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, तो शायद आपको उनके साथ बिल्कुल शांत होकर एक तरफ दरकिनार कर देना चाहिए। ये सबसे जो है ये एक है कि आपको स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलत कर रहा है आपके साथ और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, तो अपना रास्ता दूसरी तरफ चुन लेना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल राय है, बाकी आपके अपने सोच और अपने जो इमोशंस हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या फैसला लेते हैं। कंट से मोहम्मद फुरकान लिखते हैं कि जैसे कि शॉपिंग करना, घूमना फिरना, किसी को कुछ सामान गिफ्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। रात को सोना आसान है, लेकिन सुबह को जल्दी उठना भी मुश्किल है। दूसरों की सही बातों में भी गलती निकालना बहुत आसान है। बिल्कुल ठीक कहा। और अगला मैसेज हमें भेजा है किन्होंने, आदिल कमर ने गुन्नौर से। देखते हैं, अपना पैसा उधार देना और अपना खर्च करना मुश्किल काम है, और दूसरों से उधार लेना अपने हक में खर्च करना ये मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कहा दोस्त। गुड्डू धाकड़ लिखते हैं मध्य प्रदेश उज्जैन से, जिला बेड़वान से, गांव में दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों में बुराई ढूंढना, और सबसे मुश्किल काम है अपनी बुराई ढूंढना। दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों में बुराई ढूंढना और

काम है अपने में ब्राइड ढूंढना। बिल्कुल ठीक कहा दोस्त। और अगला जो हमें मैसेज भेजा है, भुवनेश ने अशोक विहार से लिख के हमें भेजा है, लिखते हैं कि इजी थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू एंजॉय द वीकेंड, बट डिफिकल्ट थिंग इज टू वेट फॉर द वीकेंड टू अराइव एंड वेट फॉर द इंटायर वीक टू गो। लिखते हैं कि सबसे इजी काम जो है वो है टू एंजॉय द वीकेंड। अपने जो सैटरडे संडे होता है उसको वीकेंड को एंजॉय करना सबसे आसान काम है, बट डिफिकल्ट है कि उसका इंतजार करना कि वो आएगा और हम उसका इंतजार करते हैं पूरे हफ्ते, ये सबसे मुश्किल काम है। और रिश्ते उम्र भर निभाना पड़ेगा, रिश्ता बनाना आसान है उसे निभाना मुश्किल है। कृष्णा रायपुर से लिखते हैं, क्या बात है। और कस्बा कनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजिया फरहान, फरीन फरहान ताहिरा लिखते हैं कि हम भी हाजिर हैं, हमारा भी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आपकी अटेंडेंस लगा दी। सबसे आसान काम है किसी की कमियां निकालना, मुश्किल काम है अपनी कमियां मानना। राहुल राउत सकोली जिला भंडारा से लिख रहे हैं। और हमें मैसेज बहुत सारे आए हैं दोस्त। और राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से लिखते हैं कि आपने 17 जुलाई को आने का वादा किया था और पूरा किया, वादा निभाना, वादा निभाया, वाह थैंक यू सो मच। और लिखते हैं कि अपनों को मनाना बड़ा मुश्किल है और गैरों को मनाना बड़ा आसान है। क्या बात है राजेश भल्ला जी, बहुत खूब। और हमारे एक और जो हमें भेजा है जोया ने मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से हमें मैसेज भेजा, सबसे आसान काम है कि रेडियो पर एफएम पर सुनना, गाने सुनना, और सबसे मुश्किल काम है पॉजिटिव रहना नेगेटिव लोगों के बीच में। बिल्कुल ठीक कहा। और अगला मैसेज हमें प्रेमचंद प्रेमी लिखते हैं धामपुर से कि आज के स्वार्थी युग में पेड़ों को काटना, पावन नदियों में गंदगी फैलाना सबसे आसान काम है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मैसेज उन्होंने दिया, मतलब जो भेजा है कि पावन नदियों को गंदगी फैलाना, पेड़ों को काटना, ये सबसे आसान है, लेकिन एक वृक्ष को लगाना, उसकी परवरिश करना, अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध रखना, हम मानव की सबसे कठिन ये काम है, ये काम लगता है हमें। मैं हाथ जोड़ के सबसे कहना चाहूँगा कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है बच्चों का कल सुरक्षित रहे, इसलिए आज हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपने आसपास के वातावरण और पर्यावरण को शुद्ध रखने का संकल्प लें। ये प्रेमचंद प्रेमी जी ने बड़ा ही प्यारा मैसेज भेजा है और हमें ये मानना भी चाहिए, क्योंकि आज हम उन पेड़ों को काट रहे हैं जो आज से 50 साल 40 साल 35 साल पहले जो लगाए थे और पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखा था, लेकिन आज हम अगर पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रखेंगे, साफ नहीं रखेंगे, तो आने वाला जो भविष्य है वो कैसा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। आज अगर इतनी गर्मी होती है, इतना धूप होता है, पर्यावरण अशुद्ध है, तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं और हमें भी इस पर्यावरण में ये संकल्प लेना चाहिए कि इस पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाएं और नदियों को स्वच्छ रखें, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, है ना। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा मैसेज मसाला मिक्स 102.6 पर, दिल से दिल तक। और अगला मैसेज हमें भेजा है नमित श्रोता, ये हर्षवर्धन जिला पन्ना मध्य प्रदेश से लिखता है, लिखा है इन्होंने मैसेज, और समय बड़ा आगे जल्दी जल्दी भाग रहा है। और ये लिखते हैं कि सरल काम है जीवन में, कठिन काम क्या है। मेरे विचार से जीवन में सबसे कठिन कार्य है पर्वत पे चढ़ाई करना और सबसे आसान काम है पहाड़ से नीचे उतरना। क्या बात है। पूजा कर्नाटक महाराष्ट्र से लिखते हैं, सबसे आसान काम है किसी को प्यार करना, मुश्किल काम है उसी इंसान से वापस प्यार पाना। और अगला मैसेज हमें भेजा है किन्होंने, कीर्ति नगर से इन्होंने लिखा है, मोहम्मद इम्तियाज़ जौहर कैम्प से लिखते हैं, ज़िंदगी को समझना सबसे मुश्किल वाली बात है और आजकल के समय में इंसान की परेशानी में जी रहा है कि कोई समझ नहीं सकता, और सबसे आसान है किसी को बिना जाने उस पर इल्ज़ाम लगा देना और बिना वजह परेशान करना। ज़िंदगी तू क्या चाहती है, मेरा फ़लसफ़ा भूल कर खुद मंजिल ढूँढती है। क्या बात है। और भेरूलाल धाकड़ जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं, सबसे आसान काम है किसी को राय चंद बन के अपनी राय देना और सबसे मुश्किल काम है खुद उसी काम को करना जो हम राय दूसरों को देते हैं। क्या बात है। और

जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है अगर सही नियत नहीं है। और ओंकार मोहाली से लिखते हैं, और किशु वंजानी, किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिखते हैं। यही कहना चाहते हैं कि सबसे आसान है उपदेश देना, उपदेश दूसरों के लिए होते हैं जिसको खुद अमल नहीं करता। ओके। और अक्षय कुमार लिखते हैं, सबसे मुश्किल काम है किसी के दिल से सच्चाई, सच्ची मोहब्बत करना, और आसान काम है किसी के दिल लगाना। ओहो। और नवुल वर्क गांव मलपण जिला उत्तर गोवा से लिखते हैं, मेरे ख्याल से आसान काम है खर्चा करना, और सबसे मुश्किल काम है कि सर जी आज दिन के एक प्रोग्राम बिंदास बोल आरजे ने मेरा मैसेज शामिल नहीं किया। अरे तो सबसे आसान काम क्या है? मेरे ख्याल से आसान काम है खर्चा करना और सबसे मुश्किल काम कमाना। क्या बात है, ये गोवा में। और कह रहे हैं बारिश बड़ी तेज़ हो रही है, तो थोड़ी बारिश इधर भी भेज दीजिए दोस्त। और आपका मैसेज शामिल नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं, आपका हमने अब मैसेज शामिल कर दिया, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। मोनिका उत्तराखंड से लिखते हैं, दूसरों की नकल करना बिना सोचे समझे, क्या बात है। लिखते हैं, खुद पर भरोसा बनाए रखना, दूसरों को समझना, अपनी गलती स्वीकार करना आसान काम है। दूसरों की कमियां निकालना बिना सोचे समझे, दूसरों की नकल करना ये गलत काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। मोनिका उत्तराखंड से लिखते हैं। और सोनिया विहार दिल्ली से आरब लिखते हैं, मेरे हिसाब से पढ़ाई करना को कहाँ कहना सबसे आसान है और पढ़ाई करना सबसे मुश्किल काम होता है। 10 साल के हैं जी ये, सोनिया विहार से आरव लिखते हैं दोस्त, लाइक सही कह रहे हो। अजय बहादुर दिल्ली से लिख रहे हैं, सबसे आसान काम है एफएम रेनबो को अपना मैसेज भेजना, और सबसे मुश्किल काम है आप जैसे रेडियो जॉकी को 1 घंटे से अंदर बिना किसी मैसेज को छोड़े सारे मैसेज को पढ़ना। थैंक यू सोजा, आपने हमारे दिल का दर्द समझा है दोस्त। और भी हमारे मैसेज आए हुए हैं, और हमारे कई शिकायतें। अक्षय कुमार लिखते हैं, उन्होंने हमारा मैसेज शामिल नहीं किया, तो दोस्त आपका भी नाम शामिल किया। और कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद ने मैसेज हमें भेजा है, और कविता ने देवभूमि उत्तराखंड से हमें मैसेज भेजा है, SST की किताब अभी तक नहीं आई है, और यही मेरे लिए दिक्कत है। क्या बात है, ये मुश्किल है। और हमें इम्तियाज़ जौहर कैम्प से मैसेज भेजा है उन्होंने, और हमें मैसेज भेजा है प्रदीप सलूजा जी ने, तो प्रदीप सलूजा जी आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और अब मैं आपसे 8 बजे मिलूंगा प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती में। अब वीरदमन को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम जो है वो आप जारी रहेगा आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व

0: रहे हैं एफएम रेनबो।
1: वी गाइस आर बैक अगेन ऑन द शो फ्राइडे फिएस्टा। दिस इज डेव विद यू गाइस एंड यस वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस ओवर हियर एंड समबडी हैज जस्ट सेंट मी मैसेज सेइंग वेरी नाइस शो एंड ही रियली एंजॉयड द ट्रैक फ्रीडम 90 बाय जॉर्ज माइकल। थैंक यू वेरी मच एंड आई गेस दिस इज असीम राजपाल। देयर वी गो। थैंक यू वेरी मच। Okie dokie, and yes, our WhatsApp number is 9868107070. I repeat, 9868107070. And yes, so right now, let's listen to U2, Ed Sheeran, and Taras Topolia with this amazing track called Yours Eternally. There we go.

0: Okie dokie, that was the track Yours Eternally, and it's a collaborative song by U2 and yes, English musician Ed Sheeran and Ukrainian singer Taras Topolia. Alrighty, so we will be back after these messages. Don't go anywhere, we'll be right back. Here we go.
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: ओकी डोकी, 1950 इज द टाइम राइट नाउ एंड यू स्टिल ऑन द शो फ्राइडे फिएस्टा। दिस इज डेव विद यू गाइस एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज गोना बी इलेनियम एंड रायन टेडर विद अ ब्यूटीफुल ट्रैक कॉल्ड विद योर लव।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: It's time for me to say tata and bye-bye. See you guys very soon at 10 p.m. tonight on a show called Weekender. Till then, take care, have fun, and enjoy this track over here called Think of Me by Huel and David Guetta. Here we go.

पेश है अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के बारामती, नंदुरा सहित पूरे देश में 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना किया। खेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल में कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोने कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष जूसी हरलिन और कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी इल्का हारा से मुलाकात की। संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गाँव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्षतिपूर्ति और जुर्माने से संबंधित विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को सुगम बनाने के लिए विश्वास 2026 योजना शुरू की। निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरा है। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष तेज बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दी। उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा जारी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने आज सीरिया, कुवैत, ओमान में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशान

बनाकर जवाबी हमले किए। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 2-3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की। और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो ये तो थे अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का समय हो गया है। तो एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है और स्वीकार कीजिए मेरा एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। तो आ जाइए मेरे साथ डांस फ्लोर पर क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया है म्यूजिक मस्त।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: यह है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक, और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती। तो हमारे साथ एक बार फिर आ जाइए डांस फ्लोर पर, जिंदगी का जश्न मनाइए, और कल तो वैसे भी वीकेंड है तो खुलकर नाचिए गाइए और खो जाइए हमारे साथ म्यूजिक मस्ती में।

0: जी हाँ, हम भी यही कहेंगे कि साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। और फिलहाल आपको मैं यही कहूंगा कि एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद फिर लौटूंगा और प्रोग्राम चलता रहेगा। म्यूजिक मस्ती।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, ये है आकाशवाणी।

और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 पर, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जब जब बादल गिरे तो तेरी याद आई, जब जब बादल गिरे तो तेरी याद आई, जब झूम के सावन बरसा तो तेरी याद आई, और जब कोई भीगा तो तेरी याद आई, क्योंकि किसी ने मेरी छतरी अभी तक नहीं लौटाई। फिलहाल आपके लिए बरसात का इंतजार है, तो बरसात में अगर ये गाना चले तो भाई अपने आप बरसात शायद हो सकता है आ जाए। Enjoy this track, आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिक मस्ती चल रहा है दिल से दिल तक।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और

0: और ज्ञान का विस्तार सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
2: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती, और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर धवन।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। और अगला प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर आपके साथ रहेंगी विनीता बेदी, और 11:05 पर एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगी विनीता बेदी। प्रोग्राम आपके खास गजलों का प्रोग्राम कौन सा, अरे वही जिसे आप रोज सुनते हैं। आज लेकर आएंगी ये महफिल विनीता बेदी, रंगे महफिल में रात्रि 11:05 पर रहिएगा। और अब मेरा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते इतना ही कहूँगा कि जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुमको है इंतजार, खुद पर यकीन और रब पर एतबार करो। और उन तमाम लिसनर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त जुड़े हुए थे हमारे साथ। कई हमारे लिसनर्स इस वक्त जुड़े हुए थे जिन्होंने मैसेज किया है। प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए थे कस्बा कनौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजिया फराज, फरीन, फरहान, फारिया, ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रेमचंद प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलूंगा एक नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा।

नमस्कार, लीजिए पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा और पंजाब से 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूरे देश में 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ प्रत्येक नागरिक का जीवन सुगम बनाने और नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया के 3 देशों की यात्रा पर जाएंगी। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोने कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष जुस्सी हरलिन और कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी इल्का हारा से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्षतिपूर्ति और जुर्माने से संबंधित विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को सुगम बनाने के लिए विश्वास 2026 योजना शुरू की है। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष तेज बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दी। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा जारी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने आज सीरिया, कुवैत और ओमान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 2-3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की। बेल्जियम और नेदरलैंड में अगले महीने होने वाली महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा, सलीमा टेटे को कप्तान बनाया गया। और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। एफएम रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कार्यक्रम में आपकी याद आती रही में आपकी अपनी दोस्त विनीता बेदी। और प्रोग्राम आपकी याद आती रही बहुत बार हमें कुछ समझाता है, कुछ सिखाता है और साथ ही एक संदेश लेकर आता है कि जिसे भी हम दिल से चाहते हैं वो कभी ना कभी ज़रूर हमारे दिल की राह पर गुजरते हैं। और तब जो हूक दिल में उठती है वो पता क्या कहती है हम सबको, सिर्फ एक ही बात, एक ही संदेश जो दिल से

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। कुछ रिश्ते ना शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। समय बदल जाता है, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन कुछ यादें दिल के किसी कोने में हमेशा महकती रहती हैं। कभी किसी गीत की धुन उन्हें जगा देती है तो कभी कोई खामोशी उनका नाम ले लेती है। आइए दोस्तों, आज की संगीतमय महफिल में यादों, प्रेम और संवेदनाओं के कुछ ऐसे ही रंग महसूस करते हैं। सच्चा साथ जो होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ पास रहने का नाम नहीं होता। कई बार दिलों की दूरियां रिश्तों की गहराई को कम नहीं कर पाती। कोई अपना यदि दिल में बस जाए तो हर सफर में उसका साथ महसूस होता रहता है, और शायद यही जो भरोसा है, यही जो विश्वास है, इसी का नाम मोहब्बत है, प्रेम है या इश्क है।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, प्रेम का सबसे सुंदर रूप समर्पण है। जब किसी की खुशी अपनी खुशी बन जाए, जब उसके बिना हर बात, हर दृश्य, हर सब कुछ अधूरा लगे, तब समझ में आता है कि दिल ने अपना ठिकाना चुन लिया है। कुछ रिश्ते दोस्तों जीवन से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ जाते हैं और वही संबंध जिंदगी भर साथ निभाते हैं। और जिंदगी भर ही क्यों, जिंदगी के बाद भी तो।

की याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, किसी अपने का ना होना, जिंदगी में उसकी अनुपस्थिति का होना केवल एक व्यक्ति की कमी नहीं होती, बल्कि सच बताऊं आपको, वो पूरे के पूरे जीवन की लय बदल देती है। कभी भीड़ में भी अकेलापन महसूस होने लगता है, तो कभी हर मुस्कुराहट के पीछे एक अधूरी सी तलाश छिपी रहती है। ये जो होकर भी ना होने का एहसास है ना, ये एहसास ही यादों की एक झालर बुन देता है दोस्तों, और यही अकेलापन दर्द का सबब बन जाता है। कभी महसूस किया आपने ऐसी कोई याद पुरानी जो सीने में तड़प कर उठती है और फिर लहरा जाती है।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। जीवन आखिर कुछ लम्हों का ही तो सफर है ना दोस्तों। कुछ पल इतने सुंदर होते हैं कि समय बीत जाने के बाद भी उनकी रोशनी दिल में बनी रहती है। यही छोटे छोटे पल आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं और हम उन्हीं की यादों में बसकर अकेलेपन में भी कोई ना कोई आस तो ढूंढ ही लेते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही। और आपकी याद आने के साथ एक बात और भी सच है कि दोस्ती और प्रेम के बीच की दूरी कभी कभी बहुत ही कम होती है। एक सच्चा दोस्त वही होता है ना जो हमारी खामोशियों को भी समझ ले। ऐसे रिश्तों में ज़्यादातर अधिकार कम और अपनापन ज़्यादा होता है, और वही इसे बहुत ख़ास भी बना देता है। और याद तभी झूम कर आती है जब ऐसा ही अधिकार, ऐसा ही एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव टूट कर गिरता है।

आपकी याद आती रही, जी को ना जाने क्यों भरमाती रही, रह रहकर यही हूक दिल को जगाती रही कि शायद किसी को हमारी याद ने तड़पाया होगा। दोस्तों, प्रेम जब भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है ना, तो उसमें शिकायतें भी इबादत जैसी ही लगने लगती हैं। किसी का इंतजार और उसकी एक झलक की चाह, और उसके लिए हर कठिनाई को दिल से स्वीकार कर लेना, यही तो मोहब्बत की सच्ची भाषा है और प्यार की तरफ बढ़ता पहला कदम। ये और बात है कि ये बढ़ते हुए कदम कई बार तकलीफ ज्यादा देते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ।
1: आपकी याद आती रही रात भर।
0: जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं ना इश्क में, जहां वापसी का तो कोई रास्ता दिखता ही नहीं, लेकिन कभी कभी मन बेचैन रहता है, क्योंकि देखने में सब कुछ बहुत सामान्य लगता है। शायद इसलिए कि दिल उस व्यक्ति को ढूंढ रहा होता है जिसकी मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी शांति थी। कुछ खालीपन ऐसे भी होते हैं ना, जिन्हें कभी भी शब्दों से नहीं भरा जा सकता। ये जो खालीपन होता है ना जिंदगी में, ये सिर्फ आंसुओं की जबान समझता है और सुनता है दिल टूटने की आवाज, दिल के किरच किरच बनकर बिखर जाने की आवाज। और यही आवाज बार बार दिल को यही कहती है कि कहाँ हो, एक बार तो लौटो।

यादों के भी कितने अजीब रंग होते हैं ना दोस्तों। कभी याद आंसू बनकर बरसती है, तो कभी हंसी की फुहार बनकर, कभी दिल को एकदम से छू जाती है और दिल संवेदनशील हो जाता है, और कभी यही यादें जो हैं वो झरना बन जाती हैं जब हम फूट फूट के रो पड़ते हैं किसी ऐसे के लिए जो शायद कभी लौट कर आएगा ही नहीं। वैसे दिल जो होता है ना हमारा, वो बड़ा मासूम होता है और थोड़ा थोड़ा शरारती भी। लाख समझाने पर भी ये बाजी उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उम्मीद की छोटी सी किरण ही दिखाई देती है। वैसे शायद दिल की इसी गुस्ताखी की वजह से इस दुनिया में प्यार, मोहब्बत, इश्क अब भी जिंदा है।

दोस्तों, यादें ना कभी भी बोझ नहीं होती। ये हमारे जीवन की वो धरोहर हैं जो हमें मुस्कुराना भी सिखाती हैं और साथ के साथ संवेदनशील भी बनाए रखती हैं। क्योंकि प्रेम का तो कोई अंत होता नहीं ना, वो तो बस अपना रूप बदल लेता है, कभी साथ बनकर, कभी दुआ बनकर और कभी किसी मधुर से गीत की धुन बनकर हमारे पास ही लौट आता है। इन्हीं भावनाओं के साथ अब आज की महफिल को यहीं विराम देते हैं। मैं विनीता बेदी आपसे अनुमति चाहती हूँ आज का आपकी याद आती रही कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: We will be right back. Here we go.
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: There we go. That was the German hard rock band Scorpions, and with their powerful ballad of the track Still Loving You. And yes, it's right now time for us to take a quick break over here, and don't go anywhere. We'll be right back after these messages.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: Alrighty, we guys are back again on the show Weekender with me, Dave, and hope you guys are enjoying the show. We're here right now, and yes, time right now for us to listen to a nice foot tapping number, and let's see as to who can do a nice foot tapping at the moment. Presenting to you guys at this hour, at this minute, Blondie with Heart of Glass.

नमस्कार, लीजिए पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को भी रवाना किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने आज सीरिया, कुवैत और ओमान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। फिल्म रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो के बड़े ही खूबसूरत कार्यक्रम रंग महफिल में बड़े अदब के साथ आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विनीता बेदी और अगले एक घंटे तक हम साथ मिलकर सजाएंगे गजलों, शेर व शायरी और जज्बात की एक ऐसी महफिल जहां हर अल्फाज दिल की धड़कनों से रूबरू होगा। कहा गया है ना कि मोहब्बत लफ्जों से नहीं एहसासों से बयां होती है। मोहब्बत लफ्जों से नहीं एहसासों से बयां होती है और जो दिल में उतर जाए वही गजल कहलाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली पेशकश से दिनेश प्रभाकर की पुरजोर आवाज में। कभी कभी रिश्ते वही रहते हैं, लोग भी वही होते हैं, बस नजर और नजरिया बदल जाते हैं। और नजर बदलते ही ना दोस्तों दुनिया भी बदल जाती है। इन्हीं एहसासों को आवाज देती है दिनेश प्रभाकर की ये बड़ी ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाली गजल।

रंग महफिल में हैं आप विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, एक शायर ने क्या खूब कहा है, नजर बदले तो मौसम भी बदल जाते हैं, वरना चांद तो हर रात यही निकलता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस एहसास की तरफ जहां मोहब्बत दिल में तो रहती है मगर जुबान तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कुछ रिश्ते ना खामोशियों में ही मुकम्मल होते हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना भी होता है, लेकिन अल्फाज ही साथ नहीं देते।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम रंग महफिल में। दोस्तों, मोहब्बत की दुनिया में हर कहानी एक जैसी नहीं होती। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर सच को बयां करना जरूरी तो नहीं, कुछ दर्द मुस्कुराकर भी जी लिए जाते हैं। तो लीजिए, इसी बात पर अब पेश है पंकज उदास की खूबसूरत आवाज में एक ऐसी गजल जो रिश्तों की सच्चाइयों को बहुत ही सलीके से बयां करती है।

क्या बात है, ये अलग बात है साकी। वैसे दोस्तों, जिंदगी में कई बार हालात और दिल की ख्वाहिशें एक दूसरे से मेल नहीं खाते। फासले सिर्फ रास्तों में ही नहीं होते, कभी कभी आपको लगा ऐसा कि एक मुस्कान भी बहुत दूर होती है। अपने अपने दिल के हालात हैं, कभी कुछ महसूस होता है और कभी कुछ महसूस होना ही बंद हो जाता है। चलिए, इसी बात पे पेश खिदमत है वो गजल जो यादों और संगीत का एक ऐसा संगम है जिसे सुनकर बीते लम्हे फिर से दस्तक देने लगते हैं। बताइए आपको कैसी लगी?

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल अपनी दोस्त विनीता बेदी के साथ। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे कई दोस्त हैं जो हमारी महफिल में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी न्यू दिल्ली से, हमारे साथ सुदर्शन मुखी भी हैं और अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया से जोया मेलबोर्ने भी जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। गोवा से हमारे साथ हैं, सॉरी आपका नाम पढ़ तो ज़रूर दूंगी, एक बार बस मिल जाए ओके, नवलू वरक फ्रॉम गांव मलपण जिला उत्तर गोवा से आप हमारे साथ हैं। और अनूप जलोटा की गज़ल को आपने बहुत पसंद किया है। कस्बा गुन्नौर यूपी से हमारे साथ फारूक अली खां, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा हैं। तो आप सभी न सिर्फ इन गज़लों को सराह रहे हैं बल्कि इस वक्त आप जो अपने बहुत मोहब्बत से संदेश भेज रहे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज हैं। और एक और हमारे साथी जो हमारे साथ हैं वो हैं मोहम्मद सरफराज आलम जौकीहाट दर्शना बाजार ज़िला अररिया बिहार से। आप सभी का तहे दिल से स्वागत। और ये भी कहना चाहती हूँ कि जब भी कभी यादों की बरसात आती है आप लोगों का नाम सबसे पहले नज़र आता है। और जब बात की है यादों की तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यादें भी ना बड़ी अजीब होती हैं, पर कुछ नगमे जो होते हैं वो उम्र भर साथ चलते हैं क्योंकि उनमें किसी अपने की खुशबू बसती है। यादें ये आप सभी के लिए दोस्तों, यादें जो हैं ये कभी भी शोर नहीं करती और इंतज़ार कभी शिकायत नहीं करता, बस खामोशी से उम्र भर साथ चलता है। तो चलिए गज़ल की दुनिया के बादशाह जगजीत सिंह की आवाज़ में सुनिए रंगे महफिल की ये अगली पेशकश। भाई मुझे तो जगजीत सिंह बहुत ही पसंद है और उनकी आवाज़ का जो मखमली अंदाज है ना वो दिल को छू लेने वाला है। आप बताएंगे आपको कौन पसंद है? गज़ल गायकी

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में तुम्पा पॉल हैं रेलवे कॉलोनी एमके रोड न्यू दिल्ली से, और साथ के साथ गुड्डू धाकर मध्य प्रदेश उज्जैन ज़िले के बेडावन गांव से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी और साथ में संदेश भेजकर ये बताने के लिए भी कि आप हमारे साथ हैं हमेशा हमेशा के लिए, है ना। तो सो अगली गज़ल, इनफैक्ट इस प्रोग्राम की आखिरी गज़ल, रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती बताती है, और सबसे बड़ी खूबसूरती रिश्तों की है यही कि वह हर मुश्किल सफ़र को आसान बना देते हैं। सफ़र चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, अगर दोस्तों का साथ होना तो हर मंजिल बहुत सुहानी लगने शुरू हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि साथ चलने वाला कोई अपना होना चाहिए, है ना। तो अब आज की महफिल की आखिरी पेशकश, क्योंकि मोहब्बत में कई बार फैसले दिल करता है और कई बार वक्त। आपकी ज़िंदगी का फैसला कौन करता है, कभी बताइएगा ज़रूर। लेकिन हरिहरन की इस गज़ल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, ये कहते हुए कि आज की रंगे महफिल यहीं सिमटती है। रुखसत होने से पहले एक शेर ज़रूर अर्ज करूँगी कि महफिलें ख़त्म नहीं होती, बस लोग उठ जाते हैं। दोस्तों महफिलें ख़त्म नहीं होती, बस लोग उठ जाते हैं, यादों के चराग फिर भी देर तक जलते रहते हैं। मैं विनीता बेदी अब चाहूंगी आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी गजलों और जज्बातों की एक नई महफिल में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि फिर से वही बात दोहराऊंगी कि जब मोहब्बत होती है ना, वो भी सच्ची वाली, तो कई फैसले दिल करता है, और सही फैसले ही करता है, लेकिन कई फैसले वक्त करता है। तो इसी वक्त की नज़ाकत को भी समझें और इसकी मोहब्बत को भी। चलती हूँ, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

जगजीत सिंह की आवाज ना दोस्तों हमेशा दिल के सबसे खामोश कोनों को छू जाती है ना। और एक जो बात मन में उभर कर आती है वो ये कि अगर इंतजार मोहब्बत से हो तो हर गुजरता लम्हा भी इबादत बन जाता है ना।

12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री हरजीत सिंह रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, माहे ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने स्पाइसजेट लिमिटेड पर अपने फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भ्रामक डिजाइन पद्धतियों के लिए 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। बुदापेस्ट रैंकिंग सीरीज में महिलाओं के 55 किलोग्राम भार वर्ग में हंसिका लांबा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:02 और 37 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम सब चोर हैं फिल्म के इस गीत के साथ, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं रंग फिल्म का गीत, आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की।

कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। एक इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म अनजाने का ये खूबसूरत सा गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जमीन फिल्म का गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, आवाजें अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो के।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीरो आर शो, मेरे यानी अर्चना बिजारिया के साथ। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म अनकही का ये गीत, जिसे गाया है केके ने।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आयुष्मान खुराना की आवाज में ये आप सुनते हैं

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये हैं

0: जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: जीरो आर शो में आइए अब आपको सुनवाते हैं तारा रमपम फिल्म का गीत, जिसे गाया है शान और सुनिधि चौहान ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जमाने को दिखाना है, आइए सुनते हैं सुन का गीत जिसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत

0: जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G, डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं को कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। डॉक्टर मांडविया कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मेरा युवा भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के स्वर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास स्कूल वैन और यात्री ट्रेन के टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 1:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक और मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल है। 2 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भारत जापान के बीच चल रही बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 138 किलोमीटर से लंबी 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का संयुक्त रूप से भूमि पूजन

करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देश में चुनाव संविधान, चुनावी कानूनों और समय समय पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:48 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने, नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: है?
1: तेरी तेरी ची नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

3 बजे हैं, आइए सुनते हैं एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भारत जापान के बीच चल रही बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर देर रात सिलीगुड़ी पहुंचे। श्री शाह आज जुमागाछ में BSF की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 138 किलोमीटर से लंबी 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 3:45 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं मिडनाइट मेलोडीज नॉनस्टॉप।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार

प्रति के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर देर रात सिलीगुड़ी पहुंचे। श्री शाह आज जुमागाच में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, माहे, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष तेज हो गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। गजा में इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 22 अन्य घायल हो गए। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। कुश्ती में पूर्व अंडर 17 विश्व चैंपियन नेहा ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में महिला वर्ग के 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 62 किलोग्राम वर्ग में मानसी ने, रजत और सविता ने कांस्य पदक जीता। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन के से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर देर रात सिलीगुड़ी पहुंचे। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने युवाओं को कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्रप्रथम की भावना से प्रेरित होकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 138 किलोमीटर से लंबी 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां की प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना पर भारत जापान के बीच चल रही बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।